सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज है मंगलवार, शक सम्मत 1948, ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026, 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव

0: सरकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है सब्जी फसलों को कीड़ों से बचाएं। जानकारी दे रही है अनीता तिर्की।
2: सब्जी फसलों में बैंगन, गोभी जाति की फसलें, टमाटर, मटर, फ्रेंच बीन, सेम, शिमला मिर्च, कद्दू इत्यादि प्रमुख सब्जियां हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े का प्रकोप होता है। अधिक उपज और अच्छी सब्जियों के लिए इन कीड़ों का नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। फसलों में लगने वाले कीड़े मकोड़े पौधों को विभिन्न प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। इन कीड़ों का वर्गीकरण क्षति के आधार पर इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे मिट्टी में रहकर क्षति पहुंचाने वाले कीड़े जिसमें दीमक आता है, धड़ एवं फल छेदक कीड़े जिसमें शीर्ष एवं फल छेदक कीड़े, तना छेदक कीड़े या फली छेदक कीड़े आते हैं, रस चूसने वाले कीड़े में मधुआ, लाही, सफ़ेद मक्खी, लाल मकड़ी, माइट इत्यादि आती है, पत्तियों के बीचों बीच रहकर नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े जैसे पर्ण सुरंगक, शीर्ष और फल छेदक कीड़े का आक्रमण ज्यादातर बैगन के पौधों पर होता है। नवजात पिल्लू कोमल शीर्ष भाग, फूल के बाह्य दल, पुंज और छोटे छोटे फलों में प्रवेश कर जाते हैं और उसे अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। फल बनने के समय पिल्लू फल में प्रवेश कर जाते हैं, फलता फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। फल छेदक का आक्रमण भिंडी में भी होता है। मधुआ कीट का शिशु और व्यस्क दोनों ही पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां भूरी हो जाती है, बाद में सूख जाती हैं। इसका आक्रमण बैगन, भिंडी, फ्रेंच बीन इत्यादि फसलों पर होता है। इसी तरह लाही शिशु और व्यस्क दोनों ही पत्तियों, फूलों, कलियों, नवजात फलियों का रस चूसते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है। इसका आक्रमण भी बैगन, भिंडी, सेम, गोभी इत्यादि फसलों पर होता है। लाल मकड़ी माइट जो है यह मकड़ी जाति का जीव है। ये मकड़ियां पत्तियों के निचले सतहों पर जाला बनाकर रहते हैं और पत्तियों की कोशिकाओं से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं, बाद में लाल भूरापन रंग में बदल जाती हैं। इसका आक्रमण भी बैगन, भिंडी इत्यादि पर होता है। श्वेत मक्खी के जो व्यस्क मक्खी और पंख सफ़ेद और चमकीले होते हैं, थोड़ी सी आहट पाकर वे शीघ्र उड़ने लगते हैं। इसके आक्रमण के कारण पौधों का आकार छोटा रह जाता है, फूलों और फलों की संख्या कम हो जाती है। यह कीट भिंडी में शिरा मोजाइक रोग फैलाता है। इसी तरह गोभी का पतंगा है, इसका शिशु पीलापन लिए हुए हरे रंग का होता है। नवजात पिल्लू कोमल पत्तियों में सुरंग बनाकर हरियाली चाट जाते हैं। थोड़ा बड़ा होने पर पिल्लू पत्तियों में छोटे छोटे छेद करके हानि पहुँचाते हैं। फली छेदक कीट का पिल्लू टमाटर की फलियों में छेद कर गुदा को खाने लग जाता है। कीट के मलमूत्र के कारण उसमें सड़न पैदा हो जाती है। इसका आक्रमण शिमला मिर्च के फलों, मटर, फ्रेंच

0: बीन इत्यादि में होता है। किसी भी फसल में अधिक उपज लेने के लिए कृषि कार्य पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। साफ सुथरी खेती पर जोर देना आवश्यक है। कीड़ों द्वारा ग्रसित भाग पत्ती टहनियाँ फल और फलियों को चुनकर नष्ट कर दे। शीर्ष या फल छेदक जो है इसके लिए फल बनते समय नीमयुक्त कीटनाशी जैसे नीम सीट करनाल एस्ट्रैक्ट या अचूक या निमेरिन इस दवा का प्रयोग आप 5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। बैक्टीरिया निर्मित कीटनाशी जैसे हॉल्ट डेल्फिन बायोलोप या डायपेल इसका 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बनाकर व्यवहार करें। नीम से निर्मित दवा कीटनाशी या बैक्टीरिया निर्मित कीटनाशी द्वारा फली छेदक या गोभी में लगने वाले कीड़ों का नियंत्रण किया जा सकता है। रस चूसने वाले जो कीड़े हैं उसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट या इमिडाक्लोरपीड 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। इसी तरह लाल मकड़ी जो माइट है इसके नियंत्रण के लिए नीम युक्त कीटनाशी का व्यवहार करने से लाभदायक होता है।
1: सब्जी फसलों को कीड़ों से बचाएं, इस विषय पर अभी आप चर्चा सुन रहे थे। जानकारी दे रही थी अनीता तिर्की। अब आज का खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर है दिनेश कुमार लाल का।

0: सच्चिदानंद परब्रह्म हर प्रकार से पूर्ण है। ये जगत उसी परब्रह्म से परिपूर्ण है एवं उसी से उत्पन्न हुआ है। परब्रह्म से परिपूर्ण होने के कारण ये संसार स्वयं में पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। अतः हम सब ईश्वर की पूर्ण संतानें हैं। जब तक शिशु माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसे कोई कष्ट नहीं रहता। ऐसी स्थिति में वो स्वयं को पूर्ण ही समझता है। हालांकि जैसे ही वो जन्म लेता है वैसे ही उसे अपनी अपूर्णताओं का आभास होने लगता है। उसे भूख लगती है तो वो रोता है, उसे माँ से तनिक भी दूर रहना पड़े तो रोता है। यहाँ से अपूर्णताओं का जो सिलसिला आरंभ होता है वो मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। ईश्वर की संतान होते हुए भी स्वयं को अपूर्ण समझना किसी अपराध से कम नहीं है। कुछ अपूर्णताएं हमारी अपनी मानसिक स्थिति की देन होती हैं, जैसे स्वयं को धन बल पद और शरीर आदि में अन्य किसी से हीन समझना। आपके भीतर कथित अपूर्णताओं को गिनाने में संसार भी पीछे नहीं रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम दूसरों के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते और वे हमारी त्रुटियां गिनाने में पीछे नहीं रहते। माता पिता गुरु और सच्चा मित्र यदि किसी कमी की ओर इंगित कर रहा है तो उनका उद्देश्य हमें ऊपर उठाना है। परंतु इनसे इतर यदि कोई ईर्ष्यालु या अभिमानी या दमनकारी व्यक्ति हमारी कमियां गिना रहा है तो हमें सचेत रहना होगा कि कहीं हम बिना वजह हीन भावना के शिकार तो नहीं होते जा रहे हैं। स्वयं को परब्रह्म का अंश समझना अपनी पूर्णता पर विश्वास करने का सबसे सरल तरीका है। पूर्ण से पूर्ण का जन्म हुआ तो वो किसी भी स्थिति में अपूर्ण नहीं हो सकता। जिस भी स्तर पर आप हैं उसकी पूर्णता की ओर अपनी परिधियां होती हैं। पशु पक्षी कभी भी स्वयं को अपूर्ण नहीं समझते। अपूर्णता सिर्फ मन में है, बाहर कहीं भी नहीं। हमें पूर्णता के वास्तविक मर्म को समझना चाहिए।
1: 1 संकलन और वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम

अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में आपने देशभक्ति रचना सुनी और अब आपको सुनवा रही हैं लता मंगेशकर की गाई भक्ति रचनाएं। ये रचनाएं पंडित नरेंद्र शर्मा की हैं, संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

लता मंगेशकर और साथियों की गाई इस रचना के साथ ही आज का आराधना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस कान।

विवाह के अवसर पर बारातियों के साथ व्यंग्य विनोद की प्रथा प्रायः पूरे देश में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। अवध तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में तो बारातियों के भोजन करते समय महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास में मधुर गालियां तथा ताने देने की भी प्रथा प्रचलित है। रामचरितमानस के प्रस्तुत प्रसंग में इसी लोक रीति की मधुर मंगलमय झांकी मिलती है। चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर ग्रहण करने लायक भोज्य सामग्री के चार प्रकार बताए गए हैं। चतुर रसोइये अयोध्या से आए बारातियों के सामने नाना प्रकार के व्यंजन परोस रहे हैं। राजा जनक की रसोई में एक एक विधि के इतने प्रकार बने हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाराती मुदित मन भोजन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में स्त्रियां अतिथि पुरुषों तथा उनसे जुड़ी महिलाओं के नाम ले लेकर मधुर गाली दे रही हैं। भोजन के बाद राजा जनक ने पान तांबूल देकर राजा दशरथ का समाज सहित पूजन किया। इस मंगल अवसर पर मुनियों का समूह भी आमंत्रित था, जिसे यथा योग्य भेंट उपहार देकर राजा जनक ने उनका आशीष प्राप्त किया। याचकों ने भी भांति भांति के उपहार प्राप्त कर दाता की जयकार तथा मंगल कामना की।

ये आकाशवाणी रांची है। अपने सुनने वालों को बता दें आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में चर्चा का विषय होगा बढ़ता पारिवारिक तनाव कारण और निदान। भेंट का वार्ताकार होंगे डॉक्टर पवन कुमार बर्नवाल, इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने। सात बजकर 7:45 पर खुला आकाश में सुनिएगा श्री पंकज मित्र की वार्ता काजी नजरुल इस्लाम एक विद्रोही कवि। नौ बजकर 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे श्री पंडित मोर मुकुट केडिया का बजाया सितार पर राग अहीर भैरव।

आज है मंगलवार, 10 बजे आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा गृहलक्ष्मी दिन के 12 बजे। एक बजकर 20 मिनट पर अनुरंजनी में सुनिएगा शोभा गुरटू से ठुमरी और दादरा।

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण किया जाएगा शाम 4:02 से। हमारे युवा साथियों के लिए होगा कार्यक्रम युवा वाणी शाम 5:02 से। हमारे कामगार साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम श्रमिक लोक शाम 5:30।

0: हमारे किसान भाई सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम शाम 6:02 से। इसमें फलदार पौधों की नर्सरी के विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर महबूब आलम। हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम हमारी दुनिया शाम 6:32 से। आदिवासी अखड़ा में आज है खड़िया भाषा में कार्यक्रम, सुनिएगा ये कार्यक्रम शाम 7:15 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे 66 प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव 58 विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्म विभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम अपि पद्म विभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटॉक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नगर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्रि दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थिति अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेहि देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु तथा च पारम्परिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है।

0: के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी रांची है। स्वास्थ्य चर्चा में आज की चर्चा का विषय है बढ़ता पारिवारिक तनाव कारण और निदान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पवन कुमार बर्नवाल, इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।
2: मित्रों जोहार, नमस्कार। मित्रों, इस बदलते आर्थिक परिवेश के दौर में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने निकल कर आ रही हैं और खासकर देखा जाए तो परिवार में बहुत सारी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। परिवार में शादी विवाह होते हैं और उसके उपरांत बहुत सारी कठिनाइयां आ जाती है, लोगों में तालमेल नहीं बैठ पाता है और फिर परिवार विघटन के कगार पर पहुंच जाता है, जिसके कारण परिवार में तनाव, परिवार में अलगाववाद, बहुत सारी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और परिवार और समाज का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आखिर पारिवारिक तनाव क्यों हो रहा है, क्यों पति पत्नी में तनाव हो जा रहा है, बहुत सारी विवाद उत्पन्न हो जा रहे हैं और बहुत सारी समस्याएं को ये खड़ा कर देती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि पारिवारिक तनाव होने का कारण क्या है, लोग अलग क्यों हो जा रहे हैं तुरंत, और इसमें कौन कौन से कारक तत्व जिम्मेदार है, क्योंकि जब परिवार स्वस्थ होगा तभी हम एक अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। तो इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं रांची के प्रसिद्ध और वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार बर्नवाल। सर, सर आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। आजकल तनाव देखा जाए तो यत्र तत्र सर्वत्र तनाव व्याप्त है और तनाव की जो प्रकृति है वो अलग अलग है, लेकिन जब परिवार में तनाव होता है तो फिर समस्याएं विकराल रूप धारण कर लेती है। आखिर परिवार में तनाव होने का कारण क्या है?
3: भारतीय सर्वे के अनुसार से 30-35% फैमिली किसी न किसी पारिवारिक तनाव के कारण से, मानसिक तनाव से ग्रसित होता है। और WHO की अगर डेटा दें तो पारिवारिक तनाव के कारण से एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन है, और क्राइम रिपोर्ट जो डेटा है उसको बताता है कि इस कारण से हमारे समाज में सुसाइड की भावना भी बहुत ज़्यादा आती है। परिवार एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से मुझे सुरक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा हो मिलती है, लेकिन यदि परिवार में खास करके हस्बैंड वाइफ के बीच अगर किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आ जाए, विवाद हो जाए, तो ठीक इसका विपरीत होता है, परिवार विघटन की ओर चली जाती है और धीरे धीरे धीरे धीरे इसका जो असर होता है वो बहुत विकराल रूप ले लेता है। पति पत्नी अपने आप में अलग होने लगते हैं, बिखराव होने लगता है, इसके कारण से मानसिक तनाव उत्पन्न होती है और इसका व्यापक असर हमारे बच्चों की ग्रोथ पर पड़ती है, विकास पर पड़ती है, और इसके साथ साथ पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है। क्यों इस तरह की समस्याएँ होती हैं? एक्चुअली जब हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं तो रहने के बाद दोनों में अच्छी प्रेम मोहब्बत होती है, प्यार होती है, लेकिन प्यार तो सही है, इसके साथ साथ एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को साथ देना और जिंदगी पर साथ रहने की जो कसमें खाई है उसको निभाना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस चीज़ों से लोग समझ नहीं पाते हैं तो इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं
2: जी।
3: लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपस में वार्तालाप की कमी, मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं। इसके साथ साथ और सा कारण है, जैसे कि अगर आर्थिक तंगी हो, जितना उसकी कमाई है उससे ज्यादा अपेक्षाएं खर्च करने की

0: हो। चौथी इसकी कारण है ईगो, हस्बैंड वाइफ के बीच ईगो, अहम होना। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, मतलब कंप्रोमाइज नहीं करना। मतलब मैं शब्द जहाँ पर आता है, ईगो आता है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आपस में पति पत्नी के बीच किसी तरह का विवाद होता है तो परिवार के और सदस्यों और या और इसके साथ साथ ससुराल वाले का इंटरफेरेंस, उसके द्वारा उसके बीच में लाना एक बहुत ही खतरनाक होता है। आप पति पत्नी के बीच विच्छेद होने का बहुत बड़ा कारण होता है, खास करके ऐसे व्यक्ति जो समझता नहीं है दोनों व्यक्ति को, इसका हास्य बहुत ही खतरनाक होता है। इसके साथ ही नशा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हस्बैंड वाइफ में विच्छेद लाने में, क्योंकि ऐसा डेटा बताता है कि 40-50% लोगों जो नशा करते हैं उनमें हस्बैंड वाइफ में किसी न किसी तरह का प्रॉब्लम, पारिवारिक विवाद होता है। और ये सब तो सारे फिजियोलॉजिकल रीजन है, लेकिन एक बहुत अहम पैथोलॉजिकल रीजन डिजॉर्डर की अगर बात करें, जिसको अक्सरहा समाज को दिखाई नहीं पड़ता है, उसे बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। मतलब ये होता है पति का पत्नी पर या पत्नी को पति के चरित्र पर शक की निगाह से देखना। उसे लगता है इसके जो स्पाउज हैं उसका रिलेशनशिप किसी और के साथ हो रहा है। अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं एक
1: जी
0: एग्जांपल देके मैं आपको ये समझा सकता हूँ।
1: जी
0: जैसे रांची में एक फैमिली है जिसमें एक हस्बैंड है रमेश, उसकी पत्नी है सुनीता। रमेश सुनीता के बीच में अच्छी प्रेम रही है, दोनों की खुशहाल जीवन व्यतीत होने लगा है। एकाएक कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगता है कि सुनीता रमेश के गतिविधियों को चेक करने लगता है, उसको देखने लगता है कि वो कहाँ जाता है, उसकी मोबाइल चेक करने लगता है, उसके हर चीज़ में इंटरफेरेंस करने लगता है, उसे चरित्र पर शक करता है, वो अगर किसी से बात करता है तो उसको शक की निगाह से देखने लगता है। इसके कारण से मनमुटाव होती है, मारपीट होने लगती है, और ये फिर इस तरह से चीज़ें होती है, दोनों में अलग होने की नौबत आ जाती है। जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे लेकर हमारे पास उन्होंने आया। जब मैंने देखा तो यहाँ पर विवाद का कारण एक ही होता है, वो है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी, यानी शक की बीमारी, जो एक मानसिक बीमारी है। और जब मैंने उसे बताया कि एक बीमारी है और आप दोनों 15 दिन से 1 महीने में काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, और उनको दवाइयाँ दिया, काउंसिलिंग हुआ, और आप यकीन माने कि 1 महीने में उनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम, जो उनकी सुनीता का मैक्सिमम प्रॉब्लम चली गई है, और आज पुनः वो खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इसे बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। ये एक बहुत बड़ी मानसिक समस्या है जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं, और इन कारणों से परिवार में काफ़ी संबंध विच्छेद, हस्बैंड वाइफ के बीच संबंध विच्छेद होते हैं।
1: जी, आर्थिक आज़ादी हर लोगों की हो गई है।
0: जी,
1: समृद्धि लोगों में बढ़ी है।
0: जी जी,
1: पैसे रुपये का आगमन लोगों में बढ़ गया है।
0: जी,
1: पति पत्नी दोनों आज कमाते हैं, और फिर मन में ये बात आ जाती है कि हम तो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आपकी क्या ज़रूरत है। तो ये बात भी कहीं नहीं कहीं सेपरेशन का, अलगाव का, विवाद का कारण बन जाता है।
0: बिल्कुल, अगर पति पत्नी के बीच में ईगो प्रॉब्लम आ जाए और ऐसे लगे कि हम खुद कमाते हैं, हम आप पर डिपेंडेंट नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कारण होती है आपस में विवाद होने का, बिखराव होने का बहुत बड़ी कारण होती है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों अगर ठीक रहेंगे तभी एक जो एक बट वृक्ष की तरह परिवार खड़ा होगा और सारा फल देगा, छाया देगा अपने परिवार के लेकर पूरा सोसाइटी को। ये कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे में इस ईगो की प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हम अलग से कमाते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं और हम ये कमाई मेरी है। ये अक्सर देखा जाता है। मेल और फीमेल की बात करें तो उसमें एक पर्सन की पूरी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन दूसरी पर्सन जो उसकी कमाई होती है तो वो ये सोचता है या सोचती है कि ये मेरा निजी कमाई है, इसको फैमिली को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, अपनी प्रॉब्लम चीज़ें हैं और अपने हिसाब से वो खर्च करते हैं, और ये भी परिवार का बहुत बिखराव का बहुत बड़ा कारण हो जाती है आपस में मनमुटाव का।
1: क्योंकि जब इस तरह की विवाद होती है तो तनाव से हम घिर जाते हैं, मानसिक अवसाद से हम घिर जाते हैं, और पूरा परिवार का विकास वहीं का वहीं रह जाता है। तो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे आया जाए, कैसे तालमेल बैठाया जाए?
0: सबसे पहली चीज़ है कि आपस में बातचीत होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समय देना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के इमोशन को समझने की ज़रूरत है। हर दिन, चाहे कोई भी पति पत्नी कितना ही व्यस्त क्यों नहीं हो, हर दिन उसे कम से कम 30 मिनट्स एक दूसरे के साथ रहना ही चाहिए, बातचीत करना ही चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। 30 मिनट अगर हम 24 घंटे में निकालते हैं बातचीत करने में, एक साथ खाना पीना खाना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को देखना चाहिए। पति पत्नी के बीच में ईगो कभी नहीं होना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी कमाई है, वो तुम्हारी कमाई है, मैं हूँ। हर समय हम कहना चाहिए कि हम सारे लोग हैं, ये परिवार के लोग हैं, जो हमारा है वो आपका है। कभी कभी ईगो के कारण से छोटी चीज़ें बड़ी हो जाती है। लोग को सुनना चाहिए। परिवार में जनरली बिकटन का एक और कारण होता है कि लोग बोलना पसंद करते हैं लेकिन सुनना पसंद नहीं करते हैं। बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। अगर घर में नशे का अगर सेवन हो किसी ने कर रहे हैं तो उसे हमारे जैसे मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए लाना चाहिए, क्योंकि नशा का प्रॉपर इलाज है, चाहे अल्कोहल हो या दुनिया का जितना भी नशा है। क्योंकि जब नशा करेगा तो उससे तो पूरा आपस में विवाद होता रहेगा, तो नशे का अगर इलाज कर ले उससे परिवार विवाद से हम बच सकते हैं। जहाँ तक आर्थिक तंगी है तो एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमारी कमाई कितना है और खर्च कितना है, उतना ही खर्च करें जितना मेरी कमाई है, या उसमें भी दो पैसा अगर बचा के खर्च करें तो इसके कारण से आपसी डिस्प्यूट नहीं होगा। अगर थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस है तो उसे रोकना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का बिकटन का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उसके ससुराल वाले का इंटरफेयर होना, ये बहुत बड़ा एक रीजन होता है। सिंगल नहीं बोल रहे हैं कि सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन होता है। थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। आपस में बातें करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट की सहायता लेना चाहिए। जहाँ तक डिलूजन ऑफ इनफिडेलिटी का सवाल है, जिसमें कि पति पत्नी को एक दूसरे पर के चरित्र पर शक होती है, ये गंभीर मानसिक बीमारी है। इसके लिए डॉक्टर के पास, मनोचिकित्सक के पास आना चाहिए, उसकी इलाज करवाना चाहिए। और यदि इस सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखते हैं तो नो डाउट परिवार एक बड वायरस की तरह रहेगा, खुशहाल रहेगा, जिसकी छाया सारे लोग पर पड़ेगी और इससे हमारा समाज और हमारा देश विकसित और बहुत आगे निकलेगा।
1: छोटी छोटी बातों को यदि हम इग्नोर कर दें, भूल जाएं और नए रास्ते हम तलाशने की कोशिश करें, और छोटे विवाद होते हैं तो जैसा आपने बताया समय दीजिए, बातें कीजिए, और यदि कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो उसको भी सुनिए, लेकिन आप तीसरे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आए। अपना समझ खुद विकसित करें और एक स्वस्थ परिवार का निर्माण करें, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया एक वट वृक्ष की तरह है, और उसकी छांव, उसकी शीतलता हम सभी को मिलेगी तो परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, और घर में जो बच्चे हैं वो भी अच्छी तरह से पलित और पुष्पित होंगे और एक अच्छा समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। अंत में डॉक्टर साहब, आपका लंबा अनुभव है, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, क्या कहेंगे आपको कि सभी लोग खुश रहें, तनाव मुक्त रहें?
0: अपने सारे मित्रों, सारे श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ, बल्कि इसे कहीं ज़्यादा है, साथ निभाना, एक दूसरे को समझना। और जो हम कसमें खाए हैं कि हम एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, जो प्रॉब्लम होगा उसको हम मिलकर सॉल्व करेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार के साथ साथ विश्वास, भरोसा और साथ निभाना, कभी अलग नहीं होना, एक दूसरे को साथ देना, ये अगर ठान ले तो हमारा परिवार बहुत अच्छा होगा, पूरे परिवार की विकास होगी, नेक्स्ट जनरेशन पर इसका अच्छा असर पड़ेगा और इसी से हमारे समाज और देश की तरक्की होगी।
1: तो मित्रों, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे विवाद को मिल बैठकर सुलझाया जा सकता है। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर पवन कुमार बर्णवाल, वरिष्ठ एवं प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ, बड़ी अच्छी आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: बढ़ता पारिवारिक तनाव, कारण और निदान। स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप इसी विषय पर चर्चा सुन रहे थे। भेंट वार्ताकार थे डॉक्टर पवन कुमार बर्णवाल, भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। ये आकाशवाणी रांची है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गानों का प्रोग्राम सुबह सुरीली।
3: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: सुबह सुरीली कार्यक्रम का पहला गाना सुनिए। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है। विजय अकेला का लिखा यह गाना है, राजेश रोशन का संगीत है। सुनते हैं ये गाना।

आशिकी 2। इस फिल्म का गाना अब आप सुनेंगे अंकित तिवारी की आवाज़ में। संदीप नाथ का लिखा ये गाना है जिसे संगीत से संवारा है अंकित तिवारी ने।

बजरंगी भाईजान, इसी फिल्म का गाना अब आप सुनेंगे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। नीलेश मिश्रा का लिखा ये गाना है, तर्ज बनाई है प्रीतम ने।

इस गाने के साथ ही आज का सुबह सुरीली कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, खुला आकाश। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्री पंकज मित्र की वार्ता काशी।

भक्ति और विद्रोह को एक ही स्वर में साधना बड़ी सफलता तो है ही, रचनात्मक तौर पर विलक्षण भी है। इस लिहाज से काजी नजरुल इस्लाम एक बड़ा और निर्विवादित नाम है। नजरुल भक्त कवि थे, पर यह भक्ति तब मुखर विरोध और हस्तक्षेप में बदल गई जब उन्हें लगा कि सांप्रदायिक कट्टरता से देश और समाज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। नजरुल का जन्म 24 मई 1899 को बंगाल के आसनसोल के पास चुरुलिया गांव में एक मुस्लिम तालुकदार घराने में हुआ। घर का माहौल पूरी तरह मजहबी था। उनके पिता काजी फकीर अहमद इमाम थे। नजरुल बचपन में सामान्य बच्चों से थोड़े अलग थे। वे हमेशा कुछ खोए खोए रहते थे, इस कारण लोग उन्हें दुखू मियां पुकारने लगे थे। उनकी शुरुआती तालीम मदरसे में हुई। जब 10 साल के थे तो पिता की मौत हो गई। इसके बाद नजरुल पिता की जगह मस्जिद की देखभाल का काम करने लगे। ये वो दौर था जब उनकी जिंदगी का हर सिरा इस्लामी परिवेश से जुड़ा था, पर इसी दौरान ईमान की तालीम के बाद बारी आई संगीत और साहित्य की। उनके चाचा फजले करीम की संगीत मंडली थी। ये कार्यक्रमों के सिलसिले में पूरे बंगाल में घूमती रहती थी। नजरुल ने मंडली के लिए गाने लिखे। इस दौरान बांग्ला भाषा लिखनी सीखी, संस्कृत भी सीखी। उसके बाद कभी बांग्ला तो कभी संस्कृत में पुराण तक पढ़ने लगे। इसका असर हुआ, उन्होंने कई नाटक लिखे जो हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित थे। कुछ ही सालों में उनकी जिंदगी ने एक और करवट ली। 1917 में वे ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए। कराची कैंट में उनकी तैनाती थी। पढ़ना लिखना उनका जारी रहा। जहां रविन्द्रनाथ और शरद को उन्होंने बांग्ला में पढ़ा, वहीं रूमी और खयाम को फारसी में पढ़ा। 1919 में उनकी पहली किताब आई, एक आवारा की जिंदगी। इसके कुछ ही बाद पहली कविता मुक्ति छपी। 1922 में उनकी एक कविता ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। कविता थी विद्रोही। जाहिर है इसमें उनके तेवर बागी थे। देखते देखते यह कविता अंग्रेजी राज का विरोध कर रहे क्रांतिकारियों का प्रेरक गीत बन गई और नजरुल विद्रोही कवि के नाम से मशहूर हो गए। नजरुल को प्रोमिला नाम की हिंदू लड़की से प्रेम था। दोनों धर्मों के कट्टर लोगों के भारी विरोध के बावजूद उन्होंने शादी की। दिलचस्प है कि नजरुल ने भक्ति साहित्य को जहां कई इस्लामिक मान्यताओं वाली रचना दी, वहीं देवी दुर्गा की भक्ति में गाया जाने वाला श्यामा संगीत और कृष्ण गीत भजन की दुनिया को भी उन्होंने समृद्ध किया। बाद में उनकी सेहत खराब रहने लगी। 1972 में बांग्लादेश ने अपना राष्ट्र कवि घोषित किया। रविन्द्र संगीत की तरह नजरुल संगीत की ख्याति उन्हें लोगों की श्रद्धा और स्मृति से आज भी जुड़े हुए है, और उनकी लोकप्रियता और उनकी कविता में गहराई को इस बात से भी जाना जा सकता है कि रविंद्रनाथ उनकी रचनाओं को बहुत पसंद करते थे और दोनों के बीच एक परस्पर बहुत ही सौहार्द का भाव था। तो आइए आज हम सुनते हैं उनकी वो मशहूर कविता विद्रोही। विद्रोही कविता का हिंदी में भावानुवाद किया है राजेश करमहे ने और संगीत संयोजन भी राजेश करमहे का है, पाठ पंकज मित्र का। आइए सुनते हैं नजरुल की वो मशहूर कविता विद्रोही।

बोलो वीर, बोलो चिर उन्नत मेरा शीश, मेरा मस्तक निहार झुका पड़ा है हिमाद्रि शिखर। बोलो वीर, बोलो महाविश्व महाकाश ची, सूर्य चंद्र से आगे धरती पाताल स्वर्ग भेद, ईश्वर का सिंहासन छेद उठा हूँ मैं धरती का एकमात्र शाश्वत विस्मय। देखो मेरे नेत्रों में दीप्ति रुद्र, जय का दिव्य तिलक ललाट पर चिर स्थिर। बोलो वीर, बोलो चिर उन्नत मेरा शीश, मैं दायित्व।

क्रूर निशंस महाप्रलय का नटराज, मैं चक्रवात विध्वंस, मैं महाभय, मैं पृथ्वी का विताप, मैं निर्दयी, सब कुछ तोड़ फोड़ मैं नहीं करता विला, मैं अनियम श्रृंखल कुचल चलू, मैं नियम कानून श्रृंखल नहीं मानता कोई प्रभुदा, मैं अंधड़ मैं बारूदी विस्फोट, शीश बनकर उठा मैं धुरजटी शिव, काल वैशाखी का परम अंधड़ विद्रोही, मैं विश्व विधात्री का विद्रोही पुत्र नंग धड़ंग लंबड़, बोलो वीर बोलो चिरोन्नत मेरा शीश, मैं बवंडर मैं तूफान, मैं उजाड़ चलता पथ के विषय तमाम, मैं नृत्य पागल छंद अपने ताल पर नाचता, मैं मुक्त जीवन आनंद, मैं हम्मी मैं छाया नट हिंडोल, मैं चिर चंचल उछल कूद, मैं नृत्योन्माद हिलको करता, मैं अपने मन की नहीं मुझे कोई लज्जा, मैं शत्रु से करूं आलिंगन चाहे मृत्यु से लड़ाऊं पंजा, मैं उन्मत्त मैं झंझा, मैं महामारी धरती की बेचैनी, शासन का खौफ संहार, मैं प्रचंड चिर अधीर, बोलो भी बोलो चिर उन्नत मेरा शीश, मैं चिर दुरंत दुर्मति मैं दुर्गम, भर प्राणों का प्याला पीता भरपूर मद हरदम, मैं होम शिखा मैं जमदग्नि, मैं यक्ष पुरोहित अग्नि, मैं लोकालय मैं स्मशान, मैं अवसान निशावसान, मैं इंद्राणी पुत्र हाथों में चांद ललाट पर सूर्य युगल, एक हाथ में स्नेह वंशी दूजे में रण विगल, मैं नीलकंठ मंथन विष पीकर, मैं व्योम केश गंगोत्री का पागल पीर, बोलो भी बोलो चिरोन्नत मेरा शीश, मैं सन्यासी मैं सैनिक मैं युवराज बैरागी, मैं बेदविन मैं चंगेज मैं बागी, सलाम ठोकता केवल खुद को मैं वज्र, मैं ब्रह्मा का हुंकार, मैं इस्राफील की तुरही, मैं पिनाक पानी डमरू त्रिशूल ओंकार, मैं धर्मराज का दंड, मैं चक्र महाशंख प्रणव नाद प्रचंड, मैं आग बबूला दुर्वासा का शिष्य, जलाकर रख दूंगा विश्व, मैं प्राण भरा उल्लास, मैं सृष्टि का शत्रु मैं महात्रास, मैं महाप्रलय का अग्रदूत राहु का ग्रास, मैं कभी प्रशांत कभी अशांत बावला स्वेच्छाचारी, मैं सूर्य के रक्त से सिंची एक नई चिंकारी, मैं महासागर की गरज, मैं अपगामी मैं अचरज, मैं बंधन मुक्त कन्या कुमारी नैनों की चिंगारी, 16 वर्ष का युवक मैं प्रेमी अविचारी, मैं हृदय में अटका हुआ प्रेम रोग की हूक, मैं हर्ष असीम अनंत और मैं बंध्या का दुख, मैं विधि का ग्रास मैं अभागे का दीर्घ श्वास, मैं वंचित व्यथित पथवासी, मैं निराश्रय पथिकों का संताप, अपमानितों का परिताप, अस्वीकृत प्रेमी की उत्तेजना, मैं विधवा की जटिल वेदना, मैं अभिमानी मैं चित चुम्बन मैं चिर कुमारी कन्या के थरथर हाथों का प्रथम स्पर्श, मैं झुकी नैनों का खेल कसे आलिंगन का हर्ष, मैं यौवन चंचल नारी का प्रेम चूड़ियों की खनखन, मैं सनातन शिशु नित्य किशोर मैं तनाव, मैं यौवन से सहमी बाला के आंचल का खिंचाव, मैं उत्तर वायु अनिल शामक उदास पूर्वी हवा, मैं पथिक कवि की गभीर रागिनी मैं गीत मैं दवा, मैं आग में जलता निरंतर अमित प्यास, मैं रुद्र रौद्र रवि मैं घृणा अविश्वास, मैं रेगिस्तान में झरझर झरता एक झरना, मैं श्यामा मैं शांत धुंधला एक सपना मैं सपना, मैं तीव्र आनंद में दौड़ रहा ये क्या उन्माद, मैं उन्माद, मैं जान लिया है मैंने खुद को आज खुल गए हैं सब बात, मैं उत्थान मैं पतन मैं अचेतन में भी चेतन, मैं विश्व द्वार पर वैजयंती मानव विजय केतन, जय उल्लास में ताली पीट मेरा अश्व बुर्राक, स्वर्ग मर्द रौंदता नशे में धुत मैं उसे हाँ,
व्यवस्था पर उतरा अग्निगिरी जंगल में फैलता तावानल मैं पाताल पतित पागल अग्नि का दूत मैं कलरव मैं कोलाहल मैं दामिनी के पंख पर चरोड़ता प्रकृति का दंभ मैं धरती धरती के हृदय में सहसा भूकंप मैं वासुकी का फन स्वर्गदूत जिब्राइल का जलता अंजन मैं विश्व मैं अमृत मैं समुद्र मंथन मैं देव शिशु मैं चंचल मैं दांतों से नोच डालता विश्व माँ का अंचल और फियस की बांसुरी बजाता जरग्रस्त संसार को मैं बड़ी ममता से सुलाता मैं शाम की बंशी नदी से उछल छू लेता महाकाश मेरे भय से धूमिल स्वर्ग का निखिल प्रकाश मैं बगावत का अखिल दूत मैं उबकाई नरक का प्राचीन भूत प्रबल जल प्रलय बन्या कभी धरती को सींच कभी उजाड़ मैं छीन लूंगा विष्णु के वक्ष से युगल कन्या मैं अन्याय मैं उल्का मैं शनि मैं धूम केतु में जलता विषधर काल फणि मैं छिन्न मस्ता चंडी मैं सर्वनाश का दस्ता मैं नरक की आग में बैठ बच्चे सा हंसता मैं चिन्मय मैं चिन्मय मैं अजय मैं रक्षय मैं अव्यय मैं मानव दानव देवताओं का भय मैं विश्व का चिर दुर्जय जगदीश्वर ईश्वर मैं पुरुषोत्तम सत्य मैं रौंदता फिरता स्वर्ग नरक मृत्य अश्वत्थामा कृत मैं नटराज का नृत्य मैं उन्माद मैंने जान लिया है खुद को आज खुल गए सब बात मैं परशुराम का कठोर कुठार निश्चय करूंगा विश्व लाऊंगा शांति शांत उदार मैं बलराम का हल यज्ञ कुंड में होगा दाहक दृश्य मैं महाविद्रोही अक्लांत उस दिन होऊंगा शांत जब उत्पीड़ितों का क्रंदन शोक आकाश वायु में नहीं गूंजेगा जब अत्याचारी का खड्ग सुनीर निरीह के रक्त से नहीं रंजेगा मैं विद्रोही रणक्रांत मैं उस दिन होऊंगा शांत पर तब तक मैं विद्रोही भगवान भगवान के वक्ष को भी लातों से देता रहूंगा तब तक मैं विद्रोही वीर पीकर जगत का विश्व बनकर विजय ध्वजा भीख विश्व रणभूमि के बीचों बीच खड़ा रहूंगा अकेला चिरुन्नत शीश मैं विद्रोही वीर।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटॉक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटॉक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटॉक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
3: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे।

0: नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम

0: वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है, जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत, क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देशभर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति

0: including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. The Directorate General of Civil Aviation, DGCA, has issued a standard operating procedure for airlines following the World Health Organization's declaration of the Ebola disease outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda as a public health emergency of international concern. The DGCA said airlines operating connectivity with Uganda and Congo are required to ensure mandatory filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. More in this report.
1: DGCA has made it compulsory for airlines to broadcast specific health announcements during flights to help identify possible Ebola cases early and prevent the spread of the disease. Passengers have been asked to immediately report symptoms such as fever, weakness, muscle pain, headache, sore throat, vomiting, diarrhea or bleeding to the airline crew members as well as immigration or medical authorities upon arrival. The DGCA further stated that if symptoms develop within 21 days of arrival in India, travelers should seek medical assistance from designated hospitals and inform the airport health office. For suspected cases on board an aircraft, the SOP directs that the passenger should be relocated to the rear of the aircraft and, if possible, three rows in front and adjacent seats should be kept vacant. Airlines have also been instructed to maintain adequate stock of triple layer masks, disposable gloves, PPE kits, hand sanitizers and biohazard disposal bags. With Anand Kumar, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: Compressed natural gas CNG prices in Delhi have been increased by 2 rupees per kilogram in Delhi. With the latest revision effective from 6 a.m. today, CNG in Delhi now costs 83 rupees 9 paise per kilogram. In Punjab, polling has begun for municipal elections. Voting is taking place for 8 municipal corporations, 75 municipal councils and 20 Nagar Panchayats. More from our correspondent.
2: These civic polls are being closely watched as a key political indicator ahead of the upcoming Punjab Assembly elections in 2027. There is a multi-cornered contest as all major political parties, including the ruling Aam Aadmi Party, Indian National Congress, Shiromani Akali Dal and Bharatiya Janata Party, have fielded their candidates. According to the State Election Commission, 7,555 candidates are in the fray from a total of 1,896 wards across the state, where the voting is presently going on under a heavy police bandobast with a deployment of 32,000 police personnel. The modal code of conduct is already in force across all civic bodies, as IAS and senior PCS officers have also been deputed as general observers to ensure a free and fair elections. To encourage voter participation, the Punjab government has declared a public holiday today for all, along with paid leave provision for eligible workers in industrial and commercial establishments. Counting of votes will take place on Friday, May 29th. Rajesh Bali, Akashwani News, Jalandhar.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. The India Meteorological Department has issued a yellow alert for heat wave conditions today in Delhi. Severe heat wave conditions are also likely today in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. Similar weather conditions will persist during the day in parts of Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha, Telangana, Uttarakhand and West Madhya Pradesh. Gangetic West Bengal, Konkan and Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal are expected to experience hot and humid weather today. According to the weather agency, parts of northeast India, Bihar, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Mahe are likely to witness heavy rainfall today. In Uttar Pradesh, there is no respite from heat wave as the temperature is oscillating between 43 to 47 degrees at many places. Bundelkhand region is the worst hit, where temperature in almost every district has crossed the barrier of 45 degrees Celsius. Banda recorded one of the hottest places in the country with 47.6 degrees. Meanwhile, southwest monsoon is expected to reach Keralam today. The arrival of the monsoon is very critical to the Indian agricultural economy, and daily life. More from our correspondent.
3: The southwest monsoon, which usually reaches Keralam on June 1st, may advance and is expected to arrive in Keralam today. The meteorological department has declared an yellow alert, indicating isolated heavy rain in 4 of the 14 districts in Keralam today. The onset of the monsoon will be officially declared if 2.5 mm of rainfall is recorded for 2 consecutive days in 60% of the 14 designated weather stations in Keralam and Lakshadweep. Wind and inset data will also be considered for the same. In the meantime, about 5 mm of rain was recorded in the southern districts of Keralam by 7 a.m. today. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: The U.S. military carried out self-defense strikes targeting Iranian missile launch sites and boats near the Strait of Hormuz amid an ongoing ceasefire between the two countries. CENTCOM spokesperson Timothy Hawkins said the strikes targeted missile launch sites and Iranian boats attempting to deploy mines, adding that U.S. forces were acting with restraint while defending the troops during the ceasefire. Iranian President Masoud Pezeshkian has ordered the restoration of internet access across the country. Iranian authorities had imposed a near-total internet blackout across the country for more than 87 days. The restrictions reportedly hampered civilians' access to information during the U.S.-Iran conflict, while also severely affecting businesses dependent on internet connectivity. On to sports. In football, India thrashed the Maldives 11-0 in their opening Group B match of the SAF Women's Championship in Margao, Goa yesterday. Avika Singh starred for the hosts with 4 goals, while Priyanka Nauram and Karishma scored a brace each. India will now face Bangladesh in their next match on Sunday. In IPL playoff cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru will take on Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala today. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will advance directly to the IPL 2026 final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. India's top shuttlers Lakshya Sen and PV Sindhu will spearhead the country's challenge at the Singapore Open Super 750 tournament, kicking off today. Other Indian players including Ayush Shetty, Kidambi Srikanth and H.S. Pranoy are also set to feature in the tournament. In women's singles, PV Sindhu will begin her campaign against Indonesia's Putri Kusuma Vardhani, while Unnati Huda will face Japanese shuttler Tomoka Miyazaki, and Malvika Bansol will be up against Chinese Taipei's Lin Xiang Ti. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
4: Thank you, Anuja. Hindustan Times and all the dailies have covered the Quad ministers' meet in the national capital amid trade and energy concerns, aiming to keep the Indo-Pacific free, open and secure. The price rise of fuel again grabs the headlines in all the dailies today. Oil shock, petrol crosses 102 rupee is a top front page headline in the Pioneer. Defending the Prime Minister's austerity push, Finance Minister is quoted by the Statesman saying, Indian economy is resilient, but West Asia crisis exerting pressure on Forex. The Hindu writes about a two-judge bench issuing notice to the Union Ministry of Education, NTA and others on pleas to replace on or fundamentally restructure the exam body and make it answerable to Parliament. The editorial in the Tribune talks about renewable energy generation growing up by leaps and bounds and accounting for about a quarter of electricity production. Under the headline, Time to Stop Slipping on Oil, the paper says how renewable energy can make India resilient to oil price shocks. The Indian Express states, live-in rules, polygamy ban as Assam introduces uniform civil code bill. With Trump administration's new policy, 7 lakh green card seekers left U.S. in state of anxiety, writes Economic Times. City swelters, warmest May night in 14 years, says the Times of India. And finally, the Tribune cites Chhattisgarh government turns former Naxal-hit areas into tourist hubs, with tribal culture helping the communities develop a sense of ownership while generating income. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a three-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग विकसित भारत के लक्ष्य पर कर रहा कार्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिनिवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ, कहा रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। धनबाद सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश भर में मिला तीसरा स्थान। राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी, राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में आज और कल लू की चेतावनी। और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि उनका मंत्रालय वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के एजेंडे पर कार्य कर रहा है। गिरिडीह परिसदन में अपने 3 दिवसीय दौरे के बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर बच्चों के शारीरिक और समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रहा है।
6: अगर महिला बाल विकास विभाग की हम करें, सबसे पहले तो उन्होंने इसकी शुरुआत की कि महिलाओं का सशक्तिकरण, सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.2, इस कार्यक्रम के माध्यम से कैसे बच्चों को स्वस्थ कर कुपोषण मुक्त किया जाए, बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए।
5: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित ऑड्रे हाउस में आदिनिवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप देशभर के आदिवासी समुदाय को एक मंच पर जोड़ने के साथ साथ उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा और जीवन शैली के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिनिवास ऐप रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को बढ़ावा देगा।
7: एक सोच हमारे सामने फेस हुआ है कि ऐप पूरे दुनिया भर में सभी लोगों को जोड़ पाए और जो विचारों का आदान प्रदान है, हो सकता है कि हम यहाँ कुछ सोच रहे हैं, कहीं किसी दूसरे देश में या किसी राज्य किसी कोने में कोई एक नौजवान अपनी बात कह रहा हो तो उसे समझने का भी आज एक कनेक्टिविटी भी इसको कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा कदम आदिनिवास ऐप के माध्यम से यहाँ शुरू की गई है।
5: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऐप के संस्थापक नितिन कुजूर और उनकी पूरी टीम को बधाई देते हुए इसे आदिवासी समाज के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कल वित्त और जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। राज्यभर में आज से एक महीने तक विशेष महाअभियान चलाकर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापामारी कर नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना तथा बाजार में अनियमितताओं पर रोक लगाना है। रांची के कई वार्डों के पार्षदों ने उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात कर शहर की मूलभूत समस्याओं, स्वच्छता व्यवस्था तथा सरकारी योजनाओं को लागू करने की चर्चा की। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से आम लोगों तक योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है। बैठक में महिला सुरक्षा, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त ने सभी पार्षदों को प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। धनबाद के सदर अस्पताल के युवा मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान युवाओं को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर परामर्श और सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। सदर अस्पताल को किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवा, साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम, मासिक धर्म स्वच्छता योजना समेत अन्य सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए यह उपलब्धि हासिल हुई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यह बात कही।
8: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
5: जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी SP ललित मीणा ने बताया कि पुलिस ने इन अपराधियों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।
9: शमशाद ने जो बाइक चोरी की वो अरुण मुखर्जी को जाकर ये देता था। अब वो उसको किस तरीके से आगे या तो उसको बिकवाता था या फिर कई बार डिसमेंटल करता था, रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर से छेड़छाड़ भी करता था। इस प्रकार की चीजें अभी तक की प्रारंभिक जांच में सामने आई है, हो सकता है कुछ और भी तथ्य सामने आएंगे। तो कुल मिला के 5 मोटरसाइकिल और 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
5: राज्य भर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पलामू, गढ़वा, चतरा समेत राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में आज और कल लू की चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा में वज्रपात और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि रांची, खूंटी, गुमला और रामगढ़ में वज्रपात का पूर्वानुमान है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट।
10: महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में रिलायंस के स्टार एथलीट सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामा सबसे आगे रहे। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर, जबकि पुरुषों में अनिमेश कुजूर जो हमारे स्टार धावक हैं उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल में तमिलनाडु की R रिताया रामराज ने बाजी मारी, जबकि महिलाओं के हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। देव कुमार को स्वर्ण और कुलदीप को रजत पदक मिला और दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।
11: आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
5: राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने पेट्रोल डीजल में हुई मूल्य वृद्धि की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है 11 दिन में पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये हुआ महंगा। दैनिक भास्कर ने राज्य में बालू की किल्लत की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है NTA ने गलतियों से नहीं ली कोई सबक। दैनिक जागरण ने राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार उतारने के निर्णय की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, महिला एवं बाल विकास विभाग विकसित भारत के लक्ष्य पर कर रहा कार्य, महिला सशक्तिकरण और बच्चों के समग्र विकास पर जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिनिवास डिजिटल ऐप का किया शुभारंभ, कहा रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसरों को मिलेगा बढ़ावा। धनबाद सदर अस्पताल के युवा

मैत्री केंद्र को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में देश भर में मिला तीसरा स्थान। राज्य भर में पड़ रही है भीषण गर्मी, राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में आज और कल लू की चेतावनी। और रांची में आयोजित 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में एक दर्जन से अधिक खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया क्वालिफाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी रांची है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:42:30 में है। आकाशवाणी रांची के प्रसारण में फिलहाल आपके साथ है ओली मिंज। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए आप सुनिए लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उरांव लोक गीत। कलाकार हैं हुसे उरांव और साथी।
1: में एक बहन अपने भैया से कह रही है, भैया

जब तक हम अपने घर में साथ हैं, हमारा घर सरसों साग के खेत की तरह हरा भरा रहेगा। मेरी शादी कर दोगे भैया तो भाभी आपको नमक के साथ भात देगी। आगे वह कहती है, मेरे प्रेमी के पास तिरियो और बांसुरी है। वो बांसुरी बजाता अपने घर में है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरे घर में बजा रहा हो। आइए सुने इसी भाव पर आधारित ये उरांव लोकगीत, स्वर है हुसे उरांव और साथियों का।

ये जतरा गीत है। इसमें एक बहन अपने भाई से दुखड़ा सुनाते हुए कह रही है, भैया मेरे ससुराल में कोई मुझे प्यार नहीं करता, देखिए ना सुबह सुबह मेरी पिटाई कर रहे हैं, ऐसे में मैं वहाँ कैसे रह पाऊंगी। भाई अपनी बहन से कहता है, ऐसी बात है बहन तो तुम यहाँ आ जाओ, हम सभी साथ रहेंगे। इसी प्रसंग पर आइए सुनते हैं ये उरांव लोकगीत, जिसे स्वर दिया है हुसे उरांव और साथियों ने।

0: होसे उराव और साथियों के स्वर में सुनिए एक और उराव लोकगीत।
1: एक राही रास्ते में चलते हुए गाना गा रहा है, उसका गाना इतना मधुर है कि इमली के पेड़ में नए पत्ते निकल आए। इस लोकगीत में आगे एक बहन अपने भैया से बोल रही है, हम अपने छोटे भाई की शादी इस साल नहीं कर सके। फिर अपने छोटे भाई से कहती है, धीरज रखो भाई, इस साल नहीं अगले साल तुम्हारी शादी कर देंगे। इसी प्रसंग को प्रकट करता लीजिए सुनिए ये उराव लोकगीत हुसे उराव और साथियों के स्वर में।

0: लोक रंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उरांव लोकगीत। कलाकार थे हुसे उरांव और साथी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गानों का प्रोग्राम रस रंजन।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
1: चले
2: ले आ गया नया किडबैक।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
6: नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: रसरंजन प्रोग्राम का पहला गाना है बॉडीगार्ड फिल्म से। इस गाने को राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल ने गाया है।

अगला गाना है जावेद बशीर की आवाज में, फिल्म का नाम है कॉकटेल।

अगलगाना साजिद वाजिद और श्रेया घोषाल का गाया हुआ है। फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

इस गाने के साथ ही आज का रसरंजन प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत।
1: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित मोर मुकुट केडिया का बजाया सितार पर राग अहीर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। तबले पर संगत करने वाले कलाकार हैं श्री श्रीजीत चैटर्जी।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित मोर मुकुट केडिया का बजाया सितार पर राग अहीर भैरव। तबले पर संगत करने वाले कलाकार थे श्री श्रीजीत चैटर्जी।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं क्रीड़ा जगत कार्यक्रम में जानकारी। आज परिचर्चा होगी रांची में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बारे में, खास होगा आईपीएल और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द वीक में विराट कोहली और वैभव गुरविंदर सिंह के बारे में बातचीत होगी। रिपोर्ट संकलन और प्रस्तुति स्वर है अमित अखौरी का, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण का।

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, रांची में एथलेटिक्स का महाकुंभ शुरू हुआ, यानी रांची एक बार फिर बड़े आयोजन का गवाह बना है। रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता शुरू हुई है। पर्सनालिटी में बात करेंगे विराट कोहली, वैभव की, खास खास में बात करेंगे टीम इंडिया की, अफगानिस्तान के साथ भारत की सीरीज शुरू होने वाली है और उस टीम इंडिया की हम बात करेंगे। इसके अलावा खेल खबरें तो होंगी ही। तो सबसे पहले बातचीत रांची में आयोजित होने वाली 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता की। राजधानी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुक्रवार से 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, खेल विभाग झारखंड और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रतियोगिता 25 मई तक चली। देश भर से करीब 750 से ज़्यादा एथलीट रांची आए और इस प्रतियोगिता में ट्रैक और फील्ड दोनों स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। पहले दिन 7 स्पर्धाओं के फाइनल हुए। इसमें लॉन्ग जंप 1000 मीटर दौड़ पुरुष, 10000 मीटर दौड़ महिला, डिस्कस थ्रो महिला, हैमर थ्रो पुरुष, 3000 मीटर स्टीपल चेज महिला और 3000 पुरुष की प्रतियोगिताएं शामिल हुई। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजन और साहली सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। उनके बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला और आखिर में एनसी ने 6.7 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और साहली सिंह ने पिछले साल बने 6.64 मीटर के मीट रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। पुरुषों के 10,000 मीटर में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने गोल्ड हासिल किया। पुरुषों के हैमर थ्रो में सेना के आशीष जाखड़ ने 68.52 मीटर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरे दिन भारतीय एथलेटिक्स ने एक ऐसा ऐतिहासिक पल देखा जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। पंजाब के तेज धावक गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही हुआ 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बन गए। गुरिंदर वीर ने फाइनल में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अनिमेश कुजूर को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अनिमेश से 0.11 सेकंड तेज दौड़ लगाई और करीब 2 फीट आगे रहते हुए फिनिश लाइन पार की। इस मुकाबले ने भारतीय एथलेटिक्स को रोमांच से भर दिया। गुरिंदर वीर ने 10.07 के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन महज 5 मिनट बाद उड़ीसा के अनिमेश ने 10.15 सेकंड का समय निकालकर रिकॉर्ड फिर अपने नाम कर लिया था। हालांकि फाइनल में गुरिंदर वीर ने जोरदार वापसी करते हुए इतिहास रच डाला। उनका 10.09 सेकंड का समय इस सीजन में एशिया का दूसरा सबसे तेज समय भी है और इस सूची में केवल जापान के युवा धावक फुकुतु कोमुरु उनसे आगे हैं। इस नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बाद पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर ने फिनिश लाइन पार करने के बाद अपना बेब उतारा और उसके पीछे लिखा संदेश कैमरे में दिखाया। संदेश में लिखा था, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम दिन लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने 8.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफाइंग स्तर पर 8.05 मीटर से बेहतर प्रदर्शन किया। ऊंची कूद में महाराष्ट्र के सर्वेश अनिल कुसारे का दबदबा रहा। उनकी 2.28 मीटर की छलांग ने उन्हें स्वर्ण पदक हासिल कराया, जो राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफाइंग मार्क 2.22

1.61 सेकंड का सुधार किया, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग समय 13.39 सेकंड से वो चूक गए। इससे पहले सुबह के सत्र में हरियाणा की रवीना ने महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल में 44:29.66 सेकंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक जीता। उनका प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग समय 44:44.58 सेकंड से बेहतर रहा। तो दोस्तों, ये तो सारे रिकॉर्ड रांची में बने और रांची में इस प्रतिस्पर्धा में 750 से ज़्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया। और अब हम चर्चा में बात करने जा रहे हैं आईपीएल की। मुंबई को 30 रन से हरा राजस्थान की टीम ने क्वालिफाई किया। और हम आपको विस्तार से बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने 2022 सीजन के बाद पहली बार आईपीएल के अंतिम चार में जगह बनाई है। रविवार को मौजूदा सीजन के अपने आखिरी करो या मरो मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से शिकस्त दी। इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल्स ने 206 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन मेजबान मुंबई की टीम 175 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान ने 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई किया। वहीं पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें इस नतीजे के साथ समाप्त हो गई। दोनों टीमें राजस्थान की हार पर निर्भर थी। अब बुधवार को मुल्लापुर में एलिमिनेटर मैच में रॉयल्स का सामना तीसरे स्थान पर रही सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वहीं मुंबई ने यह सीजन 9वें स्थान पर फिनिश किया। बानखेड़े में रॉयल्स का गजब साझा प्रयास दिखा। टीम बिना किसी अर्धशतक के 205 रनों के स्कोर तक पहुंच गई और यह आईपीएल के इतिहास में इस तरह का 5वां सबसे बड़ा स्कोर रहा। वहीं पारी में बिना किसी 50 से अधिक रन के साझेदारी के तो यह तीसरा बड़ा स्कोर रहा। यशस्वी जायसवाल ने 27, दुर्जुरेल 38, शनाका 29, आर्चर 32 का योगदान दिया, जबकि यंग स्टार वैभव सूर्यवंशी नहीं चले और मात्र 4 रन उन्होंने बनाए। रॉयल्स के लिए 7 अलग अलग बैटर्स ने कम से कम एक छक्का लगाया, जो उसकी ओर से लीग इतिहास में सबसे ज़्यादा है। जवाब में मुंबई की टीम खराब शुरुआत के साथ बिखर गई। सूर्या 60, विल जैक्स ने 33, हार्दिक 34 ने अच्छे प्रयास किए, लेकिन रोहित शर्मा नहीं चले, वो शून्य पर आउट हुए। नमन देर ने 6 रन बनाया, रिकल्टन ने 12 रनों का योगदान दिया और इन लोगों का फ्लॉप होना टीम के लिए महंगा पड़ा। रॉयल्स की ओर से आर्चर ने सबसे ज़्यादा 3 और ब्रजेश शर्मा ने 2 विकेट लिए। अब टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मुकाबले में राजस्थान की जीत की कहानी जोफ्रा आर्चर के इर्द गिर्द रही। आर्चर ने 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 15 गेंद में 32 रन ठोके, जो आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ और टी20 में दूसरा सबसे अच्छा स्कोर रहा। इस पारी में 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। आर्चर ने यह पारी ऐसे समय में खेली जब रॉयल्स की टीम 16वें ओवर में 139 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी और 200 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। इसके बाद गेंदबाजी में आर्चर ने रोहित शर्मा को 0 पे, नमन देर को 6 पे और हार्दिक पांड्या को भी सस्ते में निपट दिया। और ये आर्चर ही थे जिनके दम पर रॉयल्स ने शुरुआती 6 ओवर में 49 रन तक मुंबई के 4 विकेट झटक लिए थे और ये दबाव बनाने के लिए काफ़ी थे। हालांकि इसके बावजूद मुंबई एक समय 15.3 ओवर में 149 के स्कोर पर थी। हार्दिक और सूर्या 25 गेंद में 48 रन जोड़ चुके थे, लेकिन आर्चर ने वापसी कराई। उन्होंने हार्दिक को बर्गर के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई को पीछे कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हराया और मामला फिनिश कर दिया। 7 मैच में 6 जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में रहने के बाद भी कोलकाता नाइट राइडर्स की हार के साथ विदाई हुई। रविवार को दिन के दूसरे मैच में उसे दिल्ली कैपिटल्स ने 40 रन से हराया। हालांकि यह मैच शुरू होने के साथ ही डेड रबर बन गया था, क्योंकि राजस्थान ने मुंबई को हराकर कोलकाता को पहले ही बाहर कर दिया था, जबकि दिल्ली एक दिन पहले एलिमिनेट हो गई थी। इस तरह कोलकाता ने 7वें स्थान पर रहकर सीजन खत्म किया। वहीं दिल्ली ने 6ठे स्थान पर रहकर 14 अंक के साथ सीजन खत्म किया।
सीजन के अंतिम लीग मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 203

रन बनाए, केएल राहुल ने 60 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 39, मिलर ने 38। अच्छी पारी खेली। जवाब में कोलकाता की टीम घरेलू ईडन गार्डन्स पर कुलदीप यादव के 29 रनों पर 3 विकेट लेने से फंस गई। ओपनर और कप्तान रहाणे को छोड़कर कोई भी बैटर लंबा नहीं टिक सका। रहाणे ने 63 रन बनाए और टीम 163 पर ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, अब आईपीएल का दूसरा दौर शुरू होगा और देखना है कि अब 4 टीमें किस तरह से अपना दमखम दिखाती हैं। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पर्सनालिटी में विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर स्पोर्ट्स लीगों में शामिल होती जा रही है। इसी बढ़ते बाजार का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज 18 साल पुराने आईपीएल इतिहास के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कोहली अब तक आईपीएल में 230 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और इस बार इसका 19वां सीजन है। कोहली 2008 से लगातार आरसीबी के लिए खेल रहे हैं और लीग के सबसे बड़े ब्रांड हैं। मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 227.2 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं चेन्नई के महेंद्र सिंह धोनी 200 करोड़ रुपये कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं। धोनी आज भी आईपीएल और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े कमर्शियल आइकन में गिने जाते हैं। आईपीएल में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो हमने आपको बता ही दिया, सबसे ज़्यादा विराट कोहली की कमाई है 230 करोड़, रोहित शर्मा 227.2 करोड़, महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की तरफ से खेलते हैं 200 करोड़। देश की अगर सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी की बात करें तो इसमें पहला नंबर आता है केकेआर का, जिसका वैल्यूएशन अगर किया जाए तो 19,200 करोड़ रुपये हैं। एमआई का वैल्यूएशन है 18,400 करोड़ और सीएसके का 18,400 करोड़। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी कमाई सिर्फ 78 लाख रुपए है। इसके बाद अभिषेक नैन हैं 72 लाख और हार्दिक सिंह हैं 70 लाख, और ये दिखाता है कि भारतीय स्पोर्ट्स मार्केट में क्रिकेट का दबदबा कितना है। यानी एक आईपीएल लीग में जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी सरीखे खिलाड़ी 200 करोड़ से ऊपर के कमाई के रेंज में हैं, वहीं भारतीय हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनकी कमाई 60 से 80 के बीच है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और अब हम बात करने जा रहे हैं सिक्सर किंग वैभव की। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में इतिहास रच चुके हैं। वैभव आईपीएल के एक सीजन में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रेयस का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वैभव के अब तक 53 छक्के हो गए हैं और वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उनका अगला निशाना T20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले क्रिस गेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ना है। लखनऊ के खिलाफ वैभव ने 10 गगनचुंबी छक्के लगाए और इस सीजन में अपने कुल छक्कों की संख्या 53 पहुंचा दी। रसेल ने आईपीएल 2019 में 52 छक्के लगाए थे, जबकि वैभव उनसे आगे निकल गए हैं। आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 59 छक्के जड़े थे। वैभव जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए रिकॉर्ड भी खतरे में नजर आ रहा है। अब हम पर्सनालिटी में बात करने जा रहे हैं
भारत के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है और इनका नाम है गुरिंदर वीर सिंह। साल 2008 में मशहूर धावक उसैन बोल्ट ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, और तब 7 साल के गुरिंदर वीर सिंह ने टीवी पर यह देखा था और उन्होंने बोल्ट को रिकॉर्ड बनाते हुए देखा तो काफ़ी प्रेरित हुए और तभी उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वह भी भारत के सबसे तेज धावक बनेंगे। उन्हें प्रेरित करने के लिए कांस्टेबल पिता कमलजीत सिंह अक्सर बोल्ट के किस्से उन्हें सुनाते थे और अब पंजाब के 25 साल के गुरिंदर वीर ने रांची में फेडरेशन कप में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया और अपने बचपन का सपना पूरा किया। जब गुरिंदर वीर ने दौड़ शुरू की थी तब धारणा थी कि पंजाबी धावक 100 मीटर में सफल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे कहते थे, इस सोच को गलत साबित करके ही दम लूंगा, और अब नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर उस सोच को उन्होंने ख़त्म किया। कोविड में जब ट्रैक और जिम बंद थे तब जालंधर में गुरिंदर वीर कोच सरबजीत सिंह के साथ चोरी छिपे स्थानीय पार्कों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ते थे और उन्हें सुरक्षा कर्मियों की नज़रों से बचकर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। 2017 की एशियन यूथ चैंपियनशिप से पहले गुरिंदर वीर ने 6 महीने तक स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी, लेकिन बैंकॉक में 100 मीटर हीट में वे आखिरी रहे तो रूममेट कहने लगे कि फाइनल भी पूरा नहीं कर पाओगे। गुरिंदर वीर ने पिता को फोन किया और कहा कि दूसरा तीसरा रैंक शायद मिल जाए। यह सुनकर पिता बोले, अगर सोच ही यही है तो कभी नहीं जीतोगे, और यही डांट जो है आगे के लिए प्रेरणा बनी और गुरिंदर वीर ने अगले ही दिन गोल्ड जीत लिया। तो दोस्तों, एक बात तो है कि अगर आप ठान लेंगे कि आपको कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम खास में बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट सीरीज की। अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की टेस्ट और वनडे टीमें घोषित की जा चुकी हैं। राहुल को टेस्ट और श्रेयस को वनडे टीम की उपकप्तानी मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल की अगुवाई में टीम 1 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी। यह सीरीज 6 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगी। इस चयन में सबसे बड़ा नुकसान स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत को हुआ है। पंत से टेस्ट टीम की उपकप्तानी वापस ले ली गई है और उनकी जगह अब KL राहुल यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा पंत को वनडे टीम से पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वनडे फॉर्मेट में उपकप्तानी का जिम्मा श्रेयस अय्यर को मिला है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली समिति ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है। बुमराह जुलाई में सीधे इंग्लैंड दौरे पर वापसी करेंगे। वहीं रविंद्र जडेजा IPL के अंतिम चरण में लगी मामूली चोट के कारण टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। वापसी करने वालों में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का नाम अहम है, जो पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद टेस्ट टीम में लौटे हैं। इसके बाद वनडे टीम में ईशान किशन को बतौर बैकअप विकेट कीपर चुना गया है। ईशान ने आखिरी वनडे अक्टूबर 2023 में खेला था। टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित और विराट वनडे के हिस्सा बने हुए हैं। सेलेक्टर्स ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए दोनों सीनियर खिलाड़ियों को सीरीज के लिए चुना है। 4 युवाओं को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। इस सिलेक्शन में लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुधार और हर्ष दुबे के साथ साथ तेज गेंदबाज गुरनूर बराट को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। गुरनूर और हर्ष दुबे वनडे टीम का हिस्सा हैं। वनडे में पेसर प्रिंस यादव भी एक नया चेहरा है और इस बीच अनुभवी ऑलराउंडर और T20 के उपकप्तान अक्षर पटेल दोनों ही टीमों का हिस्सा नहीं है। जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है उसमें पहले खिलाड़ी का नाम है मानव सुधार, जो राजस्थान के 23 साल के
गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, 29 फर्स्ट क्लास मैचों में 129 विकेट लिए हैं, 945 रन बनाए हैं और इंडिया ए से खेलते हैं। हर्ष दुबे विदर्भ के 23 साल के गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, 27 फर्स्ट क्लास मैचों में 133 विकेट झटके हैं और 1026 रन उन्होंने बनाए हैं। गुरनूर बराट की बात करें तो पंजाब के 6.8 फीट लंबे 26 साल के पेसर बराट का नाम काफी है और 18 फर्स्ट क्लास मैचों में 52 विकेट दर्ज हैं। प्रिंस यादव दिल्ली के 24 साल के तेज गेंदबाज हैं, 14 लिस्ट ए मैचों में 29 विकेट लिए हैं और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा है। टेस्ट और वनडे सीरीज की शेड्यूल की बात करें तो पहला टेस्ट एकमात्र टेस्ट है जो 6 से 10 जून तक चंडीगढ़ में होगा। पहला वनडे 14 जून को धर्मशाला में, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में और तीसरा वनडे 20 जून को चेन्नई में होगा। भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक केवल एक ही टेस्ट मैच खेला गया है, 2018 में बेंगलुरु में हुए उस मुकाबले में भारत 2 दिन में ही एक पारी से जीत गया था। तो दोस्तों अब देखना है कि नए खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और अब अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं और खेल जगत की खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सोमवार को यहां चुनी गई भारतीय महिला टीम में पहली बार फॉरवर्ड ललथावलु आंगी को मौका मिला है। पर्थ में 26 से 30 मई तक होने वाला यह दौरा FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 की तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 15 से 21 जून के बीच ऑकलैंड में आयोजित होगा। भारतीय टीम इस दौरे में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतर रही है और इसी वर्ष अर्जेंटीना दौरे पर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 मैचों के सीरीज में 2 मुकाबले अपने नाम किए थे। सलीमा टेटे के नेतृत्व में टीम को अनुभव और युवा जोश का संतुलित मिश्रण मिलेगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता सलीमा के साथ सबिता सुशीला चानू पुकराम बाम, लाल रेमसियामी और नवनीत कौर जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में मौजूद रहेंगे। स्टार स्ट्राइकर नेमार को उनके फिटनेस को लेकर संदेह के बावजूद ब्राजील की विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। यह फुटबॉलर इस तरह से अपना 4th विश्व कप खेलेगा। 34 साल के नेमार के नाम पर ब्राजील की तरफ से सबसे ज्यादा 79 गोल करने का रिकॉर्ड है, लेकिन वह अक्टूबर 2023 में बाएं ACL में चोट लगने के बाद से अपनी सर्वश्रेष्ठ फिटनेस हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ताइजुल इस्लाम के 6 विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रनों से जीता था। पाकिस्तान ने मैच के 5वें और अंतिम दिन सुबह अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 316 रन से आगे बढ़ाई, लेकिन उसने 11.2 ओवर में अपने बाकी बचे विकेट भी गंवा दिए। बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल ने 5वें दिन गिरे 3 विकेटों में से 2 विकेट लिए। BCCI ने 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इस सीजन में पुरुष और महिला वर्ग के विभिन्न आयु समूहों में कुल 1788 मुकाबले खेले जाएंगे। खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट रिकवरी और युवा प्रतिभाओं को ज्यादा मौका देने के उद्देश्य से कई अहम बदलाव किए गए हैं। रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी 2 चरणों में आयोजित होगी, जबकि कई जूनियर टूर्नामेंट अब T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। घरेलू सीजन की शुरुआत दलीप ट्रॉफी से होगी। यह टूर्नामेंट 6 जोनल टीमों के बीच खेला जाएगा और इसके बाद 1 अक्टूबर से पारंपरिक ईरानी कप का आयोजन किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2 चरणों में होगी। एलिएट ग्रुप में कुल 32 टीमें शामिल होंगी, इन्हें 4 ग्रुपों में बांटा गया है। प्लेट ग्रुप में 6 टीमें खेलेंगी। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी विनर्स बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया मुकाबले को फिर से कैलेंडर में शामिल किया गया है। यह मैच 1 से 4 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा। BCCI का मानना है कि इसे Under-23 खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। रायपुर में आयोजित सीनियर तथा जूनियर राष्ट्रीय वुड बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के बालक बालिका पुरुष और महिला टीम ने विभिन्न वर्गों में विजेता और उपविजेता बनकर झारखंड का नाम रोशन किया। सीनियर पुरुष स्ट्रोक में झारखंड विजेता, महिला
फेयरवे इवेंट में विजेता, जूनियर बालक स्ट्रोक इवेंट में उप विजेता, जूनियर बालिका फेयरवे इवेंट में उप विजेता और जूनियर बालक फेयरवे इवेंट में झारखंड उप विजेता बना। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित सेंट्रल एंड साउथ एशिया सीनियर मेंस रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सिल्वर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ी डेविड मुंडा का रांची में भव्य स्वागत किया गया। झारखंड के रग्बी खिलाड़ियों ने उनका अभिनंदन किया। डेविड ने उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 10-10 स्कोर कर कुल 20

0: बनाए और टीम को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन डिफेंस किया। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके में 19 से 21 मई तक आयोजित 3 दिवसीय समर कैंप संपन्न हो गया और कैंप में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से खेल, योग, चित्रांकन एवं विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रांची जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज थे। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ वॉलीबॉल खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया। तो दोस्तों, ये तो थे खेल समाचार और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप क्रीड़ा जगत कार्यक्रम में परिचर्चा सुन रहे थे रांची में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बारे में और खास था आज का आईपीएल। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द वीक में विराट कोहली और वैभव गुरविंदर सिंह थे और ये संकलन थी अमित अखौरी की और प्रस्तुति और संयोजन था प्रभु शरण का। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे जोहार रांची थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, चलिए समय हो चला है आपके प्यारे से प्रोग्राम का, जिसका नाम है जोहर रांची। और आपने अपने रेडियो सेट को ट्यून कर लिया होगा, और मुझे पता है इतनी सारी जानकारी और मनोरंजन का खजाना जो हम लेकर आपके लिए आते हैं। और इसके साथ है आज आपकी दोस्त उषा जायसवाल। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार। आप सभी अच्छे होंगे इस गर्मी के मौसम में, और अपना अपना और अपनों का ख्याल तो ज़रूर रख रहे होंगे, क्योंकि इस समय बस ज़रूरत है अपनों के साथ में ख़ास ख्याल रखने की और एक दूसरे के बारे में अच्छे विश्वास की, अच्छे प्यार की, अच्छे सद्भावना की। क्योंकि अपनों का साथ हो और अपने पर विश्वास हो तो हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं और मंजिल पाने की राह को आसान बना सकते हैं। और खुश रहने की जो आदत है हमें अपनों से जोड़े रखती है, तब चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए हौसला बुलंद रहता है और उम्मीदों का सहारा भी मजबूत हो जाता है। और कहते हैं ना कि पेन में जिस रंग की स्याही होती है उसकी लिखावट भी उसी रंग की हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आदमी के मन के विचार जैसे उत्पन्न होंगे उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों का, अपने व्यवहार पर ख़ास ध्यान रखना है, ताकि हमारे कारण किसी और को कोई भी तकलीफ ना हो, बल्कि हमारे कारण अगर किसी के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। और कहते हैं ना, जब तक जिंदगी पटरी पर दौड़ती है तो हमें लगता है हम कुशल चालक हैं, लेकिन जब हमारी जिंदगी पटरी से उतरती है तो एहसास होता है कि जिंदगी कोई और चला रहा है, और हमें इस बात का एहसास हमेशा होता है।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ESNR。
1: जी हाँ, हमारी भारतीय सेना हर संघर्ष में हमेशा जीत हासिल करने की उम्मीद और उसे बनाए रखने की ताकत हमारी भारतीय सेना में। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि कभी ये मत सोचो कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे। ये जीवन जब तक रहेगा, संघर्ष हर रोज रूप बदल बदल कर आएंगे। इसलिए अच्छे परिणाम के लिए मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है और हर दिन अपने ज़िंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे पूरा ना हो पर आवाज़ तो दो। एक पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ एक नई शुरुआत तो दो। जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। और इतनी अच्छी हौसला अफजाई वाली बात हम आपसे जब करते हैं तो हमें लगता है हर किसी के ज़िंदगी में एक नए मुकाम आती है और उसे सफलता मिलती है ज़रूर। किसी भी काम को करने के लिए किसी का साथ ज़रूरी होता है ताकि मिल बांट कर उसे हम पूरा कर सकें। और ये हो सकता है कि उसमें कोई परेशानी आए, लेकिन हंसते गाते उस परेशानियों को हमें दूर करना है। और कहते हैं ना, इस संसार में साथ रहते हैं हम क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। अपनी भागीदारी तो हम हमेशा देना ही चाहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन औरों का भी साथ उसमें उसी दम से होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अगर अपने ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे का साथ लेते हैं और देते हैं, तो फिर इस दुनिया की दी हुई प्यारी सी नेमत पर्यावरण को, अपने आसपास की दुनिया को संवारने में भी हम अपना साथ क्यों ना दें। क्योंकि इस पर्यावरण के संरक्षण में जितनी भागीदारी हम देंगे, उतना ही इसका सुख हमें मिलेगा। और मौसम, प्रकृति, इन सभी बातों को हम अगर अपने ज़िंदगी से जोड़ लेते हैं, यानी उसे दरकिनार नहीं करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, तो फिर इसका नतीजा आज हम सबके सामने है। इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ बारिश और हमेशा हर मौसम का बदलाव हम झेलते हैं, तो इसमें से बस एक ही काम हमें करना है। हम अगर लाख लोगों के बीच में अपनी बातों को रखते हैं, तो उसमें से ज़रूर कोई 10 आदमी ऐसे मिलेंगे जो प्रकृति को बचाने से उन्हें सरोकार होगा। और हम सभी की पूर्ण भागीदारी नहीं भी होती है, लेकिन थोड़ी तो भागीदारी हम अपनी निभाएं इस पर्यावरण को बचाने के लिए। इस प्रकृति में जो प्यारे सुंदर पेड़ और फूल पौधे हमारे भगवान ने हमें दिए हैं, उसे बचाने के लिए, तो फिर आने वाले दिन में थोड़े से कष्ट कम हो सकते हैं। और मौसम, इसका तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। देखिए ना, कभी इतनी तेज़ गर्मी होती है और अचानक आकाश में इतने बादल छाए रहते हैं कि आशाएं उगने लगती है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए और मौसम थोड़ा सा बदल जाए। लेकिन मौसम का क्या है, वो तो आएगा जाएगा।

मौसम की हम जितनी भी बातें करें अभी राहत देने वाली नहीं लगती है, क्योंकि भारत मौसम विभाग के मुताबिक अगले 7 दिनों तक मध्य भारत में भीषण गर्मी की लहर जारी रहने की आशंका है। पूर्वी और उससे सटे प्रायद्वीपीय भारत में 26 मई तक भीषण गर्मी रहेगी, उत्तर पश्चिमी भारत में 29 मई तक, और ये और भी बढ़ सकती है। बिहार और झारखंड में भी कुछ ज़िले अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की चपेट में रहेंगे, जबकि कुछ में आंधी बारिश होने के आसार भी हैं और जिससे तापमान में कुछ गिरावट भी हो सकती है। लेकिन आकाश में बादल तो दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में लुका छिपी का खेल होकर धूप फिर से अपने पंख फैलाने लगता है और ठंडी हवा का जो आनंद है वो हमें नहीं मिल पाता है। और यही हम कहते हैं कि जानकारी जैसी है मई के अंत तक लू चलने की संभावना है। शहर के स्तर तक अगले 5 से 7 दिनों में मौसम का अनुमान और चेतावनी जारी कर रहा है, जिससे निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन एजेंसियां हीट एक्शन प्लान के तहत ज़रूरी कदम भी उठा रही है, ताकि लोग लू की चपेट में ना आए। और अगर कोई परेशानी होती है तो फिर मानसून में भी दिखेगा अलनीनो का असर। ये मई की लू है, इसका कारण अलनीनो नहीं है, लेकिन अलनीनो एक वैश्विक जलवायु पैटर्न है जिसका सीधा असर दुनिया भर के मौसम पर पड़ता है। अलनीनो एक न्यूट्रल कंडीशन है। IMD का अनुमान है कि मानसून सीजन यानी जून, जुलाई और अगस्त में अलनीनो डेवलप हो सकता है, और इसका संबंध भीषण गर्मी और कमज़ोर मानसून से होता है। और समय समय पर रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम अपने श्रोताओं को देना चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्र जिनमें रेड कैटेगरी की चेतावनी जारी होती है, वहाँ सभी उम्र के लोगों में लू लगने और हीट स्ट्रोक होने की आशंका बढ़ सकती है। संवेदनशील लोगों को ज़्यादा सतर्क रहना होता है। और ऑरेंज अलर्ट का मतलब है भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने वाला है, जो विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए जब भी रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट की जानकारी दी जाए तो इन लोगों को सचेत रहना चाहिए। और इसके लिए बस गर्मी से बचने का एक ही उपाय है, हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें, जहाँ भी खड़े रहें छांव में रहें, यानी सीधी धूप से बचें, अपने सर पर छाता रखें, मोटे तौलिए, सूती तौलिए को रख सकते हैं, और हो सके तो दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर जाने से बचें। अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो बाहर जाने से बचना चाहिए। और अगर ही हल्के ढीले और सूती वस्त्र आप पहनते हैं तो उससे भी पसीने अगर शरीर से सूख जाते हैं तो परेशानी कम होगी। और समय हो तो घर पर है तो पंखे और कूलर का उपयोग करें। अपने घर को ठंडा रखने का हर तरह से उपाय आप कर सकते हैं, और अगर थोड़ी भी परेशानी होती है तो डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे घर को ठंडा रखना ही नहीं, अपने आस पास को भी थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश कीजिए। और ये कोशिश तभी हो सकती है जब हम अपने आसपास हरियाली बिखेरेंगे, हरे भरे पौधों को लगाएंगे, ताकि उनसे जो हवा आएगी वो हमें ठंडी हवा दे सकती है और परेशानी से हम थोड़ा सा बच सकते हैं। और जहाँ तक बात होती है परेशानी की और गर्मी की, तो हम ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि कई ज़िलों में आंधी बारिश के भी आसार हैं आज और कल, रांची समेत। इसलिए थोड़ा सा हमें इतना सुनने के बाद तो थोड़ा सुकून तो मिलता ही है। और येलो अलर्ट भी है 27 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा में, और जहां की लू का प्रकोप रह सकता है। और 25 मई को रांची में अधिकतम तापमान रहा 39.8 डिग्री सेल्सियस, और 24 घंटों में 8 डिग्री सेल्सियस की जो वृद्धि हुई है। और मेदिनीनगर में 45.7 डिग्री सेल्सियस है, जो 24 घंटे में 1.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होकर बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हम अपने आसपास जो गर्मी बढ़ रही है और जहाँ जहाँ पर पानी की किल्लत हो रही है, इन सभी का समाधान अगर ढूंढें जितना जल्दी हो सके, तो फिर इस गर्मी की जो मौसम का जो परेशानी है, जितनी भी परेशानियाँ हैं, उससे हम बच सकते हैं। और थोड़ा हो सके
अगर आपके यहाँ कुआं है या फिर हैंडपम्प है जहाँ पर पानी अच्छी तरह से आता है, तो अपने आसपास जिन ज़रूरतमंदों को भी थोड़ी पानी की दे सकते हैं, उन्हें दान कर सकते हैं या फिर उन्हें ज़रूरत को उनको पूरा कर सकते हैं, ताकि इस गर्मी में अगर आप जल दान करते हैं तो ये आपके लिए भी पुण्य का भी काम होगा और औरों के लिए ये बहुत ही जीवन दान हो जाएगा। इसलिए हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बहुत कुछ दान देते हैं, अगर ज़रूरत हो सके तो गरीब लोगों के बीच में, मज़दूरों के बीच में पानी की बोतलें भी आप बांट सकते हैं, जिससे उन्हें तो सुकून मिलेगा ही, आपको भी आत्मिक सुकून मिल सकता है।

श्रोताओं, अपने ज़िंदगी का नाम तो चलने का है, अगर हम सही में रुक जाएं तो फिर ये ज़िंदगी बेकार है। और लेकिन ये ज़िंदगी को चलाने के लिए जो रेलगाड़ी होती है ना, वो भी अगर रुक जाए तो हमारी ज़िंदगी थम जाती है। जी हाँ, लेकिन हम ये भी जानकारी आपको देते हैं कि जून माह में हटिया और रांची स्टेशन से रवाना होने वाली या उनसे होकर गुजरने वाली 20 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में चल रहे विकास कार्यों के कारण रेलवे प्रशासन ने 10 से 15 जून 14 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रांची मंडल में विकास कार्य के कारण 4 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी, जबकि चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत राउरकेला क्षेत्र में चल रहे कार्य की वजह से 1 जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई हैं। इससे खामियाजा भुगतना पड़ेगा हम सभी अधिक यात्रियों को, जो 40,000 से ज़्यादा होंगे। और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो रद्द हो गई हैं, और कई ट्रेनों लंबी दूरी की जो ट्रेन हैं उनमें नो रूम रिग्रेट की स्थिति है, कंफर्म सीट भी उनके लिए नहीं मिल रही है। तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं इन्हीं विकास कार्यों के कारण है, इसलिए आप इसकी पूरी जानकारी कर लें तभी ट्रेन के टिकट कटाएं या फिर अपनी यात्रा को अंजाम दें। और इसके लिए आपको गर्मी का मौसम जो है इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी रखकर ही कहीं यात्रा करनी चाहिए, तभी आप आनंद ले सकते हैं अपनी यात्रा का, अपनी छुट्टियों का। और ये भी एक अच्छी सी जानकारी है कि झारखंड डाक परिमंडल और JSLPS की बैठक में आम की बेहतर मार्केटिंग और परिवहन व्यवस्था पर चर्चा हुई, और समझौते में के तहत डाक विभाग अपनी लॉजिस्टिक सेवाओं से झारखंड के आम को राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करेगा। यानी कि यहाँ के जो रसीले और बहुत ही प्रसिद्ध आम हैं वो अब कहीं भी देश में आप इसे पा सकते हैं हमारी डाक विभाग के द्वारा। इसकी जानकारी आपको हम दिए हैं ताकि इस मौसम में आप आम का आनंद उठा सकें। एक और अच्छी जानकारी है सेहत के लिए। डेंटिस्ट की कुर्सी, जहाँ पर सुइयां और दांतों को छेद करने वाले ड्रिल मशीन की आवाज़, इससे हर कोई बचना चाहता है, लेकिन दांतों के इलाज का तरीका बदलने वाला है। अब ऐसा अब नैनो रोबोट के कारण हुआ है, जो पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में रोबोट तैयार किए गए हैं। वो मुंह के अंदर जाकर बिना किसी दर्द के ख़राब दांतों की खुद मरम्मत कर देंगे। और वैज्ञानिकों का कहना है कि नैनो का मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ये रोबोट इतने बारीक हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। इन सूक्ष्म रोबोट को इस तरह तैयार किया जाता है कि ये दांतों के अंदरूनी हिस्से में जाकर उस खराब हिस्से को ठीक कर सकते हैं। और जब दांतों में कीड़ा या कैविटी लगता है तो डॉक्टर इसे साफ करके उसमें फिलिंग भरते हैं, लेकिन ये नैनो रोबोट दांत के भीतर जाकर प्राकृतिक रूप से दांत की ऊपरी परत एनामेल और डेंटिन को दोबारा से बनाने में मदद करेंगे। और दांतों में झंझनाहट जब होती है, दांतों की परत घिस जाती है, बारीक नसें खुल जाती हैं, ये सारे काम ये नैनो रोबोट करेंगे।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से,
1: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: श्रोताओं, इतनी सारी जानकारियां हम आपको देते हैं और उसके साथ ही साथ कुछ मनोरंजन भी होता है, लेकिन मनोरंजन हम करेंगे थोड़ी सी और जानकारी के बाद। मौसम कितनी भी करवटें बदले, हमारा जीवन तो चलेगा।

इतिहास में बना रहता है। तो चलिए अब इतिहास के पन्ने हम भी पलटते हैं कि आज के दिन यानी 26 मई को क्या क्या हुआ था। आज के दिन राष्ट्रीय क्षमा दिवस मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, स्वदेशी आदिवासियों और टोरिस स्ट्रेट आइलैंडर्स के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय के लिए क्षमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्विट्जरलैंड में 26 मई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। जॉर्जिया और गुयाना में 26 मई को उनके राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन अमेरिका में कई जगहों पर यह दिवस मनाया जाता है, जहां सैली राइड दिवस, राष्ट्रीय कागजी हवाई जहाज़ दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि जो हमारे पुराने यादें हैं उन्हें ताज़ा किया जाता है आज के दिन को मनाकर। हम ये भी बता दें कि भारत की राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं अरुणा रॉय। इन्होंने 1968 से 1975 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य किया और इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 1946 ईस्वी में। इनके योगदान के लिए उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार और मेवाड़ सेवाश्री आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। वे राजस्थान के निर्धन लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। भारत में सूचना का अधिकार लागू करने के लिए 6 अप्रैल 1995 को अजमेर के ब्यावर में आंदोलन की शुरुआत की। उनके प्रयत्न और योगदान उल्लेखनीय हैं। वे मेवाड़ के राजसमंद जिले में स्थित देवडोंगरी गांव में संपूर्ण देश में संचालित मजदूर किसान शक्ति संगठन की संस्थापिका और अध्यक्ष भी हैं। इनके जन्मदिन पर हम इन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। और आज के दिन ही भारत में प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बजाज का जन्म हुआ था 1906 ईस्वी में। 1912 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी में से एक हैं छगन राज चौपासनी, इनका जन्म हुआ था। 1926 में लेबनान ने संविधान बनाया था। दक्षिण भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध हास्य अभिनेत्री मनोरमा का जन्म हुआ था 1937 में। अपोलो 10 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर उतरा था 1969 में। बीजिंग ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार का जन्म 1983 ईस्वी में हुआ था। और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, लेखक, समीक्षक और साहित्यकार वर्मा का निधन हुआ था 1986 ईस्वी में। इसरो ने भारत, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के 3 उपग्रहों की अंतरिक्ष कक्षा में स्थापना की आज ही के दिन 1999 में। और आज ही के दिन 2006 में विज्ञान जगत में एक शोध के अनुसार एड्स के विषाणु कैमरून में पाए जाने वाले चैंपियन में पता चला था इसका। 1969 में नासा का एक महत्वपूर्ण मिशन था अपोलो 10 मिशन पृथ्वी पर वापसी का, जो चांद पर इंसानियत को उतारने की अंतिम तैयारी का हिस्सा था। यह मिशन 18 मई 1969 को लॉन्च हुआ और 26 मई यानी आज ही के दिन 1969 को पृथ्वी पर वापस लौटा। 8 दिन के इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की कक्षा में विक्रेता लूनर पैनर की झलकियां थीं, ताकि अगले मिशन अपोलो 11 को चांद पर उतारा जा सके। और अपोलो 10 का चंद्रमा की सतह से केवल 15.6 किलोमीटर की दूरी तक गया था, जो अब तक की सबसे करीबी उड़ान थी। इस मिशन में 3 क्रू मेंबर थे। थॉमस स्टैनफोर्ड कमांडर थे, जॉन यंग और यूजीन सरनान। ये यान धरती पर प्रशांत महासागर में उतरा था। और 1999 में इसरो ने एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च की थी आज ही के दिन। पहली बार एक साथ 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, इनमें से भारत, कोरिया और जर्मनी के एक एक उपग्रह थे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्टेशन से सुबह 11 बजे
11:52 पर 294 टन वजनी PSLV ने भारी उड़ान भरी और

प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। वैलेरी खूंटी श्री हरिकोटा लॉन्च स्टेशन पर उपस्थित थे। इसरो ने पहली बार किसी दूसरे देश के तहत कॉमर्शियल एग्रीमेंट लॉन्च किया और इस चुनौती के लिए भारत की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज ही के दिन 1946 में भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर अरुण नेत्रावली का जन्म हुआ था। 1946 में जिन्हें HDTV सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी में योगदान का श्रेय दिया गया था। 1961 में भारतीय निर्देशक तरसेम सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने फिल्मों, संगीत वीडियो और विज्ञापनों में अपने योगदान दिए थे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता दिलीप जोशी का जन्म भी आज ही के दिन 1968 में हुआ था। हमारे भारतीय राजनेता कलिकेश नारायण सिंह देव का भी जन्म आज ही के दिन 1974 में हुआ था, जो बोलनगीर से लोकसभा में सांसद थे। और 2013 को 26 मई को मुंबई इंडियंस ने इंडियन 2020 प्रीमियर लीग जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था। ये थे हमारे आज के इतिहास के बारे में। और इतनी सारी जानकारियाँ होती है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और उसके बाद हम बहुत अच्छी जानकारी लेते हैं तो अपने मन को थोड़ा सुकून भी देते हैं प्यारे से संगीत के साथ।

श्रोताओं, जब बातें होती हैं ना तो सबसे पहले अपने ज़िंदगी की बातें होती हैं, खुद की बातें होती हैं, और जब खुद की बातें होती हैं तो हमारे साथ हमारा पूरा परिवार जुड़ा है। और कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, किसी भी परिस्थिति में हम अपने साथ में सभी को लेकर चलते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति हमेशा हमारे हाथ में होती है। हम अपने जीवन के किसी विशेष पहलू को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने परिवार को साथ लेकर चलते हैं। इसके लिए कई सारी बातें होती हैं जो आजकल हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अपने जीवन में सकारात्मकता लाना है तो सिर्फ ये सोचने से नहीं होता, अपने रोज़मर्रा की आदतों में इसे ढालना पड़ता है। जैसे अपनों की शिकायत करना हमेशा छोड़िए, और अगर हम अपनों की अच्छी चीज़ों को देखते हैं बल्कि शिकायत नहीं करते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है और आपसी प्यार बढ़ता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और बात बात में जो कमियां निकालते हैं उनसे आप दूरी बना सकते हैं। खुद से बात करते समय कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये सीखने की कोशिश करूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, इस तरह की बातें अपने अंदर ना भरें। अपने अंदर ब्रह्मांड की जितनी सारी शक्तियां हैं उन्हें धन्यवाद देकर आप हमेशा ये कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, इसे करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस तरह की बातें अपने अंदर आप भरिए। असफलता एक सीख होती है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप अयोग्य होते हैं, इसका सीधा मतलब होता है आपकी कोशिश में कुछ कमी है, इसे आप सुधार लीजिए और सीधे मंजिल की ओर बढ़ने की तैयारी कर सकते हैं। और एक और बात होती है कल की चिंता। कल की चिंता में आज का सुकून न खोएं। आज का जो पल है वो हमेशा सुपल होता है, बहुत ही खुशगवार होता है। इस आज के वर्तमान के पल को जीने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बदलिए, और अपनी तुलना दूसरों से कभी न कीजिए, क्योंकि हमारे ज़िंदगी की जो यात्रा है इसे हम खुद ही निभाएंगे, खुद ही इसे पूरा करेंगे। तो दूसरे के जीवन की परिस्थिति, दूसरे की मानसिक स्थिति अलग होती है, उनसे अपनी बराबरी ना करें, अपनी तुलना ना करें, औरों के साथ बराबरी ना करें, जिससे हमारे दिल को ठेस नहीं पहुँचेगी और हमारे जीवन में सकारात्मक पहलू आएंगे। और ये प्रकृति का मतलब है बदलाव। समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, आज बुरा है तो कल ये गुजर के अच्छा भी हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन को सही दिशा देने, मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सकारात्मक सोच, जो हमें सही मार्गदर्शन दिखाती है अपने जीवन को चलने के लिए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आए दिन हम हर तरफ समाचारों में भी ये पढ़ते हैं कि मानसिक तनाव के कारण, कुछ अपने नियंत्रण को खो देने के कारण हम किसी के लिए हानि पहुंचाते हैं, किसी की ज़िंदगी ले लेते हैं, या फिर किसी को कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जिनसे उन्हें दुख हो जाता है और हमारे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को एक तरफ लाने का मतलब ये होता है कि हम परिस्थितियों में भी अपने आप को, अपने मानसिक स्थिति को इतना संभाल कर रखें कि हमें तनाव ही ना हो। तनाव होने से कई सारी परेशानियां होती हैं, कितनी बीमारियां होती हैं, और हम खुद तो परेशान होते हैं औरों को भी परेशान करते हैं। और अपने ज़िंदगी में जब खुशियां लाने की जब हम बातें करते हैं तो बस एक ही बात होना चाहिए, आपको मन करे आप कहीं घूम आएं, और घूमने के लिए अभी का मौसम सही नहीं है। घूमने की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन सही इसलिए नहीं है क्योंकि मौसम सही नहीं है। गर्मियां छुट्टी हैं, गर्मी की छुट्टियों में हम घूमने जाने की बातें हमेशा करते हैं, लेकिन सभी बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा समय है। हो सकता है प्रकृति ने हमें ये समय दिया है कि
अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ में साझा करें, उनसे कुछ बातें करें, उनके जीवन में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो तनाव है, उसे समेटने के लिए, उसे बांटने के लिए, उसे हल करने के लिए बहुत ही अच्छा समय मिला है। आप गर्मी के मौसम में एक जगह, एक रूम में ठंडक बनाकर अपने अपने दिमाग को ठंडक में लाइए और परिवार में इतना प्यार भर दीजिए कि फिर आने वाला समय हमें खुशगवार लगे और उसके बाद लगे कि बस कितनी प्यारी है ये ज़िंदगी।

श्रोताओं, हमने बातें तो बहुत सारी की और अपने ज़िंदगी को संवारने की कोशिश अब आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं। और अपने चलते चलते अब अपने श्रोताओं से बस यही कहना चाहेंगे कि अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार और अच्छे विचार जिसके पास होते हैं उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। बस ज़रूरत है उन्हें समेट कर रखने की। इसी के साथ अब सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस मौसम का आनंद लेते रहें। और हमें दीजिए इजाज़त, यानी अपनी दोस्त उषा जायसवाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे हैं। चलिए अगला कार्यक्रम हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद। आप अपने फरमाइशी गीत इस कार्यक्रम में सुनेंगे, तो चलिए सबसे पहले आपको बेमिसाल फिल्म का ये प्यारा सा नगमा सुनवाते हैं। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं चेपाकला बड़का गांव से श्री बाबूलाल ठाकुर, श्रीमती साबिया ठाकुर, तिलेश्वरी श्री भरत ठाकुर, मंजू संतोष, विकास कुमार, प्रभात कुमार, जीतेश आदर्श, अनुराधा रुक्मिणी और प्रियंका दीपिका, तेनुघाट बोकारो से भगवान प्रसाद ठाकुर और उनका पूरा परिवार, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में बेमिसाल फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद का अगला गीत छाया फिल्म से। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह डबुलउल्लाह और परवीन आसमा। बुलंदशहर से बदरुवली फर्जुवली और फर्जीवली अंसारी।

यशोदास बनश्री गुप्ता और हेमलता की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का। और अब आइए अगला गीत आप ही के पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं। लोफर फिल्म का ये गीत है, आवाज़ है लता मंगेशकर की। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, ग्राम पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, महसूल सीतामढ़ी से हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अमन, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा। आप सभी हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा ततरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। लीजिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपकी पसंद कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आइए हम आपको सुनवा देते हैं अलका याग्निक की आवाज़ में, दिल क्या।

करीब फिल्म का गीत है। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बाबा बैद्यनाथ धाम से मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और रोशनी केसरी, राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतीक केसरी, थाना रोड बक्सर से ओमानंद, धनानंद और विनोद केसरी, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अक्रम आसमा, उल्लाह आसमा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन सरफुद्दीन, कुमारी वली, कुमारी डब्लू और सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा और रेशमा थापा। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आपकी पसंद का ये कार्यक्रम अब समाप्त करने की दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त उषा जायसवाल को। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। और गृहलक्ष्मी में आपकी दोनों सखियां हैं रानी शुक्ला और महजबीन परवीन।

0: नमस्कार बहनों, स्वागत अभिनंदन। रोजाना की तरह हम फिर से हाजिर हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी को लेकर। मैं महजबी और हमारे साथ एक और प्यारी सी सखी है।
1: बहनों, मैं हूँ रानी। स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। और जिस तरह से आपको इंतजार रहता है कि कब दोपहर के 12 बजे और गृह लक्ष्मी शुरू हो, रोज की तरह आज भी कार्यक्रम में है बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और जानकारी भी, और साथ में होगी मेहमान से मुलाकात भी।
0: वो तो ठीक है रानी। हम ये भी बता दें कि आपके मनोरंजन का भी हमने ख्याल रखा है, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहनों, गर्मी तेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज, और इस मौसम में अक्सर शरीर में कुछ न कुछ दिक्कत पेश आती है।
1: हाँ बहनों, इस मौसम में आज हम आपको त्वचा और बालों में होने वाली परेशानी और समाधान बताएंगे। सबसे पहले तो बहनों, आपको अपनी साफ सफाई का ध्यान पूरी तरह से रखना चाहिए।
0: गर्मियों में तेज धूप, पसीना और धूल से त्वचा और बालों को ज़रूर बचाएं। और अगर आप किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल करती हैं तो सही चुनाव करें। फेस के लिए सनस्क्रीन, और अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं तो सनस्क्रीन फेस पर और हाथों पर ज़रूर लगाएं। और शैम्पू जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, या फिर हल्के शैम्पू जिसका मतलब हल्का, जिसमें केमिकल कम हो, कहीं
1: हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल करें,
0: ज़्यादा अच्छा रहेगा कि
1: बिल्कुल
0: हर्बल शैम्पू इस्तेमाल।
1: और जिस तरह से मैं जबीन ने बताया कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, SPF 30 या 50 ही लगाएं। और अगर ज़्यादा देर घर से बाहर हैं तो 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं, और घर आएँ तो अपना चेहरा अच्छे से साफ करें।
0: हाँ रानी, पसीने और चिपचिपाहट से बचने के लिए जेल बेस्ड फेस वॉश से चेहरा धोएं, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर का उपयोग करें बहनों, और साथ ही साथ इस गर्मी के मौसम में पानी खूब पिएं ताकि आपकी त्वचा में जो चमक है, जो शाइन है, वो बरकरार रहे।
1: बिल्कुल बहनों, इसके अलावा बाजार में उपलब्ध हर्बल फेस पैक भी जरूर लगाएं। त्वचा को ठंडक देने के लिए एलोवेरा जेल या गुलाब जल भी आप लगा सकते हैं। बहनों, दही भी एक अच्छा फेस पैक हो सकता है गर्मी में। और गर्मी में पसीने से बचने के लिए बचने का ध्यान रखने के लिए सबसे ज्यादा है पानी पीना जरूरी। और इसमें बहुत ज्यादा परेशानी भी होती है गर्मी में पसीने के कारण, फेस को ठंडे पानी से धोते रहें।
0: ठंडे पानी से तो जैसे कि अगर हम पीते हैं तो भी तो राहत मिलती है, और चेहरे के को धोते हैं तो उससे भी राहत मिलती है।
1: बिल्कुल
0: बहनों, इसके अलावा आप सूती और ढीले कपड़े, यानी अगर आप कपड़े पहन रहे हैं तो उसका भी चुनाव सही से करें। दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप से बचें, क्योंकि उस वक्त धूप में तेजी रहती है। बहनों, ये भी जानकारी त्वचा में, और आपको ये भी दे देते हैं कि जिस तरह से हमने जो जानकारी दी आगे त्वचा की और बालों के लिए, तो त्वचा में तो आपने समझ लिया कि आपको किस तरह से काम करना है, और अब बालों की बारी है तो हम आपको आगे बताएंगे कि बालों का किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, अभी तो हमने आपको कुछ उपाय बताया है बहनों, जिससे आप इस्तेमाल कर सकती हैं, और अपने खान पान का भी खास ध्यान रखें। बहनों, जिस तरह त्वचा की देखभाल हम कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार बालों का भी खास ख्याल रखें। बालों की नियमित सफाई करें, पसीने और धूल को हटाने के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार माइल्ड शैम्पू से बाल धोएं।
0: और अगर बाहर निकलें तो बालों में है स्कार्फ या टोपी ज़रूर लगाएं ताकि यूवी किरने से बचा जा सके, और सुरक्षा, बालों की सुरक्षा हो। और बालों में नमी बनाए रखने के लिए शैम्पू के बाद ध्यान रहे कि जो इसमें जो साफ कंडीशनिंग करने का जो तरीका है उसे ज़रूर अपनाएं। जिस तरह एलोवेरा त्वचा के लिए फ़ायदेमंद है, उसी तरह बालों के लिए भी ये ठंडा रखता, बालों को भी अच्छा पोषण देता है और नमी देता है। तेल की मालिश सप्ताह में एक बार जरूर करें।
1: बिल्कुल बहनों, एक बात का ख्याल और रखें कि स्ट्रेटनर या कोई भी मशीन का उपयोग गर्मियों में ना करें। साथ ही साथ दही और शहद का मास्क पूरे बालों में लगा सकती हैं अगर आपको ये सूट करता है। बहनों, चाहे त्वचा की बात हो या फिर बालों की, दोनों में पानी खूब पिएं।
0: पानी तो रानी, जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं अपनी बहनों को कि पानी खूब पिए, पानी खूब पिए, बिल्कुल पानी बहुत ज़्यादा ही पिए। और इस तरह से हम एक बात और ये बता देते हैं कि जो त्वचा के जिस तरह चमक को बरकरार रखने के लिए हम ऐसे भी हर मौसम के हिसाब से खान पान रखते हैं, मौसमी फल लेते हैं, मौसमी सब्जियाँ लेते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हम अक्सर देखे हैं कि महिलाएँ, जो हमारी घरेलू महिलाएँ हैं, वो थोड़ा देखभाल से दूर रहती है, तो बालों और त्वचा की देखभाल के लिए आप इसका ख्याल ज़रूर रखें।
1: बिल्कुल, कम तला भुना, कम मसालेदार खाना खाएं और सलाद को अपने खाने में शामिल करें, और ये सारा कुछ करेंगी और खुश रहे बहनों, आप खुश रहेंगी तो आपका त्वचा खुद ही बहुत खुश खुश लगेगा और आपको देखकर फिर सभी लोग यही कहेंगे।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी।
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
1: मेरी गुड़िया के नाम। दादी आपके नाम।
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
0: शुभ शुभ बोलो।
1: क्या
2: आरबीआई कहता है।
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार।
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं।
6: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
6: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: बनो एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और महजबी, आप आगे क्या है खास?
4: अब अपनी बहनों को हम ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बहुत सारी जानकारियां देंगी। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर रश्मि मिश्रा और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला।
5: बहनों, प्रकृति हमें जीवन देती है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज बढ़ता प्रदूषण, घटते जंगल और तेजी से खत्म होते ऊर्जा संसाधन हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या हम सचमुच अपने पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हैं? बहनों, आज बढ़ता प्रदूषण और तेजी से घटते प्राकृतिक संसाधन हम सभी के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। ऐसे में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा केवल जरूरत ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि, DSPMU के पर्यावरण विज्ञान विभाग की विभाग प्रभारी डॉक्टर रश्मि मिश्रा। नमस्कार रश्मि जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
6: नमस्कार रानी जी।
5: रश्मि जी, आज के समय में ऊर्जा संरक्षण एक गंभीर मुद्दा बन गया है, इसका क्या अर्थ है?
6: आज के आधुनिक युग में ऊर्जा मानव जीवन का तो आधार बन चुकी है, जिसमें उद्योग, परिवहन, कृषि, शिक्षा, संचार तथा घरेलू कार्यों में ऊर्जा का व्यापक उपयोग होता है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगीकरण के कारण ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। इन्हीं कारणों से ऊर्जा संरक्षण आज एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय बन गया है।
5: बिल्कुल, निश्चित रूप से।
6: ऊर्जा संरक्षण का अर्थ ही है ऊर्जा का विवेकपूर्ण, संतुलित एवं आवश्यकता अनुसार उपयोग करना, ताकि ऊर्जा की अनावश्यक बर्बादी को रोका जा सके।
5: बिल्कुल, और ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आखिर हमें ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है?
6: हमें ऊर्जा संरक्षण की काफी आवश्यकता है, इसके कई कारण हैं। जैसे पहला कारण है प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत अब सीमित मात्रा में उपलब्ध रह गए हैं। इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। यदि हम इनका अति उपयोग करते रहे तो ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे और इनके अत्यधिक उपयोग से भविष्य में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। दूसरा कारण है पर्यावरण का संरक्षण, क्योंकि जीवाश्म ईंधन के दहन से वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तीसरा कारण है आर्थिक बचत। ऊर्जा संरक्षण से बिजली और ईंधन की बचत होती है, जिससे आर्थिक लाभ भी होता है। चौथा कारण है ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा की बचत से आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।
5: बिल्कुल।
6: पांचवा और अंतिम कारण है इसका सतत विकास, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के बीच संसाधनों को संतुलित बनाए रखने में सहायक है। इसका निष्कर्ष ये है कि ऊर्जा संरक्षण केवल ऊर्जा बचाने का उपाय ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और मानव जीवन के सुरक्षित भविष्य का आधार भी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऊर्जा का सावधानी पूर्वक उपयोग करे और ऊर्जा संरक्षण को अपनी दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाए।
5: जी बिल्कुल सही कहा, ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग केवल संसाधनों को ही नहीं प्रभावित करता बल्कि प्रकृति पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। और इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है कि पारंपरिक ऊर्जा के अत्यधिक प्रयोग से

0: पर्यावरण को क्या क्षति पहुंच रही है?
1: पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है। इनके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का कारण बनती हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रहे हैं तथा बाढ़, सुरक्षा और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा अतिरिक्त खनन और तेल उत्खनन से वनों की कटाई, भूमिक्षरण और जैव विविधता को हानि भी हो रही है। जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे हैं, जिससे मानव और जलीय जीवों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के लिए ऊर्जा संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। रानी जी,
0: बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में तो हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
1: जी बिल्कुल,
0: ऐसे में हम किस प्रकार ऊर्जा संरक्षण द्वारा पर्यावरण की रक्षा में योगदान कर सकते हैं?
1: हाँ, हम ऊर्जा संरक्षण द्वारा पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। ऊर्जा का विवेकपूर्ण एवं सीमित उपयोग करने से जीवाश्म ईंधनों की भी खपत कम होती है, जिससे वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं में कमी आती है। हम कुछ उपायों द्वारा ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, जैसे अनावश्यक बिजली उपकरणों को बंद रखना। हमें बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि अनावश्यक बिजली उपकरण यदि कार्य हो जाए तो उसे बंद कर दें। एलईडी बल्ब एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों का उपयोग करना। ऊर्जा दक्ष मीन्स 5-स्टार रेटिंग वाले उपकरणों का ही उपयोग करें, हालांकि वे थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन फिर भी उनका उपयोग करना इस कुछ हद तक इसमें कमी ला सकता है। सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलने को बढ़ावा देना। सौर एवं पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना। जल और ईंधन की बर्बादी रोकना। वृक्षारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता फैलाना। इन सब द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की बचत हम कर सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक बचत ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
0: बिल्कुल, और यदि हम सब मिलकर थोड़ी सावधानी बरते तो बड़ा परिवर्तन संभव है।
1: बहुत बड़ा परिवर्तन भी संभव है।
0: हाँ बिल्कुल, और रश्मि जी, अब दुनिया पारंपरिक ऊर्जा के साथ नए विकल्पों की ओर भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैकल्पिक ऊर्जा किसे कहते हैं, इससे ऊर्जा संकट को दूर करने में कैसे मदद मिल सकती है?
1: वैकल्पिक ऊर्जा तो वो ऊर्जा होती है जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्थान पर उपयोग की जाती है। यह मुख्यतः नवीकरणीय एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वर्तमान समय में पारंपरिक ऊर्जा स्रोत तेजी से समाप्त हो रहे हैं, जिनके कारण ऊर्जा संकट की समस्या उत्पन्न हो रही है। वैकल्पिक ऊर्जा इस संकट को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह ऊर्जा के असीम एवं नवीकरणीय स्रोत प्रदान करती है, जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता को कम करती है, प्रदूषण एवं ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाती है, ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भी ऊर्जा उपलब्ध कराती है, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देती है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण करती है। इस प्रकार वैकल्पिक ऊर्जा न केवल ऊर्जा संकट का समाधान प्रदान करती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन जागरूकता के बिना किसी भी बदलाव की कल्पना अधूरी है। विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में सही सोच विकसित करना समय की मांग है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों और युवाओं में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए।

0: जाने चाहिए।
1: बच्चे और युवा किसी भी राष्ट्र का भविष्य होते हैं। यदि उनमें प्रारंभ से ही ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूकता विकसित की जाए, तो एक जिम्मेदार और पर्यावरण सचेत समाज का निर्माण संभव है। इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पहला कदम है शिक्षा में पर्यावरण विषय का समावेश। विद्यालयों और महाविद्यालयों में ऊर्जा संरक्षण, वायु परिवर्तन तथा पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित विषयों को व्यवहारिक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है जागरूकता अभियान लाना, जैसे सेमिनार, रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन, भाषण, क्विज प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: तीसरा उपाय है व्यवहारिक प्रशिक्षण, जैसे बच्चों को बिजली और जल की बचत करना सिखाना, वृक्षारोपण करना, कचरा प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए। और डिजिटल एवं सोशल मीडिया का उपयोग, सोशल मीडिया, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री तथा ऑनलाइन अभियानों द्वारा भी युवाओं तक पर्यावरण संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। रानी जी, परिवार की भी काफी भूमिका होती है, क्योंकि अभिभावकों और समाज को स्वयं ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चे व्यवहार से सीख सके।
0: जी बिल्कुल।
1: यानी ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चों और युवाओं में जागरूकता विकसित करे और हम भविष्य में एक स्वच्छ, सुरक्षित और सतत पर्यावरण का निर्माण करें।
0: बिल्कुल, बच्चों को छोटी उम्र से ही ऊर्जा बचाने की आदत सिखानी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी रश्मि जी आपने। और अंत में एक ऐसा सवाल जो हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा बचाना क्यों आवश्यक है?
1: देखिए रानी जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा बचाना काफी आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा मानव जीवन, औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति का आधार है। वर्तमान समय में उपयोग होने वाले अधिकांश ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सीमित एवं गैर नवीकरणीय है, क्योंकि इनका रिसाइकल नहीं हो सकता। इनके अत्यधिक उपयोग से ये संसाधन तेजी से समाप्त हो रहे हैं। यदि आज ऊर्जा का संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य की पीढ़ियों को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऊर्जा बचाने से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है तथा पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं में भी कमी आती है। इससे पृथ्वी का पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण सतत विकास को बढ़ावा देती है, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखा जा सकता है। इसलिए आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल और स्वस्थ भविष्य के लिए ऊर्जा बचाना काफी आवश्यक है।
0: बिल्कुल बहनों, ऊर्जा संरक्षण केवल बिजली बचाने तक सीमित नहीं, बल्कि ये पर्यावरण और भविष्य को सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कदम है। रश्मि जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम में दिया, इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी बातें की, इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा। हमारी आज की मेहमान थी डॉक्टर रश्मि मिश्रा और इनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला। आइए बहनों, अब सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: बहनों, जैसा कि आप सब गर्मी से अभी बहुत परेशान होंगी, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है। हम अक्सर बड़े बुज़ुर्ग के लिए उचित खान पान का ख्याल रखते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार शिशुओं को भी तो सही खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी है।
1: तो गर्मियों के सर्वोत्तम जो आहार है उसके लिए विकल्प है तो ये है कि जो 6 माह के छोटे बच्चे हैं उनको केवल स्तनपान करें, बाकी बच्चों को आप तरल पदार्थ दे सकते हैं, यानी कि 6 माह के से जो ऊपर के बच्चों को आप तरल पदार्थ दे सकते हैं। नारियल का पानी दे सकते हैं, नींबू पानी और ताज़े फलों का रस, और साथ ही साथ कोशिश करें कि चीनी मतलब कम दें या ना दें तो वो बेहतर होगा।
0: जी बिल्कुल, और इसके अलावा मौसमी फल को ज़रूर दें, मतलब उनका जूस दें, छाछ पेट को ठंडा रखता है। दाल का पानी उनके लिए बहुत सही होगा बहनों। हल्का भोजन में मूंग दाल की खिचड़ी आप दे सकती हैं बच्चों को। बहनों, बच्चों को ज़्यादा फास्ट फूड और पैकेट फूड पसंद होते हैं, उन्हें बाहर के खाने पर रोक लगाएं, इन सारी चीज़ों को देना बंद करें।
1: बहनों, अब समय है आपसे इजाज़त लेने का। बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति थी नूतन प्रसाद की। अब दे महजबीन
0: और रानी को दे जाने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक हैं NCERT।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी।
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।

0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी, सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी, मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
1: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
1: जी,
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
0: जी,
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं
1: जी।
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है
0: जी।
1: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
0: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
1: जी।
0: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
1: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
1: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
0: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम्स

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,
3: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
4: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
2: वीर जोरावर की जय। वीर जोरावर की जय। जय जेरापुर जय भारत।
3: जय जेरापुर जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
5: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
5: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
6: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
6: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
6: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
6: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
6: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
2: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
7: जोरावर सिंह महाराज आ रहे थे। महाराज जोरावर सिंह,
8: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
0: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
8: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
0: देखिए निजाम साहब।
8: जी फरमाइए।
0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
8: जी।
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
8: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
8: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
9: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
5: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
9: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
7: बिल्कुल।
9: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
10: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
9: लेकिन जरा होशियारी से।
10: जो हुकुम सरकार।

0: चुके हो।
1: ये क्या है?
0: You are under arrest।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को संजीश से।
2: जी।
3: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सालार जंग, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
4: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियों, ले चलो इसको।
3: छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे।
5: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
6: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
7: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
7: देखो देखो, तो मैं हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
7: Why?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे।
7: yeah.
1: अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
7: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा,
1: अप्पा साहब, हमारी बस

0: एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। प्रायोजक थे NCERT, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today, I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
1: India and the U.S. today signed a key bilateral framework aimed at securing the supply, mining and processing of critical minerals and rare earth elements. The landmark agreement was exchanged between External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio in Delhi. The External Affairs Minister said the framework will strengthen resilient and diversified supply chains, help both nations collaborate on financing and also help with effective management of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah today visited the Sandhu border outpost along the India-Pakistan international border in Rajasthan. He interacted with Border Security Force personnel deployed in the area and lauded their dedication in safeguarding the nation's borders. During the visit, the Home Minister dedicated the Vibrant Villages Programme 2 to border regions of the state. Former BJD Rajya Sabha MP Debashish Samantarai has joined the Bharatiya Janata Party, BJP. He was inducted into the party in the presence of senior party leaders, including BJP General Secretary Arun Singh and Odisha BJP President Manmohan Samal at the party headquarters in New Delhi. Tensions between the United States and Iran have escalated after U.S. forces carried out what Washington described as self-defense strikes in southern Iran, even as top Iranian officials held ceasefire talks in Doha. U.S. Central Command said the strikes targeted missile launch sites and Iranian boats allegedly attempting to lay mines near Bandar Abbas, which hosts Iran's main naval base. Benchmark domestic equity indices were trading with losses in the afternoon session today. The Sensex fell 162 points to 76,327, while the Nifty dipped 19 points to 24,013 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
2: Akashwani Ranchi se prastut hai Pradeshik Samachar. नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा, श्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा आगे। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने का निर्णय। झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेज विशेष निगरानी की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मरीजों को मिलेगी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं। और झारखंड में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आज से एक महीने तक चलेगा विशेष महाअभियान। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर 12 वर्ष पूरे होने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, आत्मनिर्भरता, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव देखे हैं। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति से राष्ट्र शक्ति के संकल्प के साथ देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर हजारीबाग के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों ने योजनाओं और अन्य सुविधाओं को लेकर सरकार के कार्यों की सराहना की है।
3: समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्तियों को क्या जरूरत है, क्या समस्या है, आम आदमी को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए 12 वर्षों से हमारी सरकार के मुखिया मोदी जी लगे हुए हैं।
4: 12 वर्ष मोदी जी का राज हुआ, आज तक अपने जीवन में कभी हमने नहीं पाया है। हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह की व्यवस्था, रोड को देखिए, जहाज को देखिए, माने सब तरह की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं मोदी सरकार से बहुत खुश हूँ।
2: साहिबगंज।

0: जिले में आदिम जनजाति समुदाय के समग्र विकास के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कुल 336 गांवों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। समेकित जनजातीय विकास अभिकरण साहिबगंज के परियोजना निदेशक संजय कुमार दास ने बताया कि अभियान का उद्देश्य आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को योजनाओं से जोड़ना है।
1: जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं या अन्य तरह के कार्य करने हैं, जैसे वहाँ आंगनबाड़ी नहीं चल रहे हैं तो भवन में आंगनबाड़ी चलाया जा सकता है या NM वगैरह आती है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो अपना किसी भी तरह का बैठक हो, ग्राम सभा करना हो, उस मल्टीपर्पज बिल्डिंग में बैठ करके अपने उन कार्यो को संपादित कर सकते हैं। इसके अलावा धरती आवा योजना के तहत हमारे कई पीवीटी विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण स्वीकृति प्राप्त हुआ है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में आगामी राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। बैठक में आगामी 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारत निर्वाचन आयोग से राज्यसभा चुनाव के दौरान विशेष निगरानी की मांग की है। झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने झामुमो के हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ओर से ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उनके पास 56 विधायक हैं?
2: उन लोगों को खुद ही अपने में एक सहमति नहीं है। जो 56 के वो दावे कर रहे हैं, वो 56 में 56 है क्या? आज उनके अंदर ही अंतरकला है। और जो बात एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं, वो उस मत के अब खिलाड़ी हो गए हैं जिन्होंने झारखंड को बेचने का और खरीदने का जिनका पुराना अनुभव है, और दूसरे को ज्ञान ना दे तो अच्छा है। हॉर्स ट्रेडिंग उन्हीं लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और राज्यसभा में यहाँ क्या हुआ, कलंकित हुआ, ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का पुराना इतिहास रहा है।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित सहर घाटी पंचायत में बड़े पैमाने पर अवैध बालू कारोबार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक संरक्षण में प्रतिदिन 50 से 60 ट्रैक्टरों के जरिए अवैध बालू का उठाव और भंडारण किया जा रहा है। उन्होंने दुमका पुलिस और जिला प्रशासन से मामले में FIR दर्ज कर माफियाओं तथा संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा साक्षरता और महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विभाग के कार्यों का मूल्यांकन और योजनाओं को लागू करने में आ रही परेशानियों को दूर करने पर भी चर्चा होगी। भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद हजारीबाग, खूंटी, गुमला, गिरिडीह समेत कई जिलों के थानों के बाहर और आम लोगों के लिए प्याऊ की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक विमल कुमार ने बताया कि मुफस्सिल और पचम्बा थाना परिसर के बाहर प्याऊ की व्यवस्था की गई है।
3: गर्मी बढ़ गया है, इसको लेकर गिरिडीह जिले में जितने भी थाना है सभी जगह शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। जो मुफस्सिल पचम्बा में ये आज से व्यवस्था लागू की गई है, और हम लोग का ये प्रयास है कि आने वाले एक दो दिनों के अंदर में सभी थाना में ये व्यवस्था रहेगी।
0: रांची में प्रस्तावित RIMS-2 अस्पताल परियोजना पर 4200 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक करीब 2600 करोड़ रुपए का लोन देगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एडीबी टीम के साथ बैठक में निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। रिम्स 2 को सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं, आधुनिक चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि झारखंड के लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। सरकार का लक्ष्य 6 महीने में लोन प्रक्रिया पूरी कर दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 से निर्माण शुरू कर 2 वर्षों में अस्पताल चालू करना है। झारखंड सरकार ने राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों के खिलाफ आज से विशेष महाअभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री, भंडारण और अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए छापेमारी की जाएगी। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 रुपये प्रति किलो है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। आगामी ईद उल जुहा बकरीद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए। डीजीपी ने संवेदनशील और हॉटस्पॉट इलाकों को चिन्हित कर विशेष सतर्कता बरतने, धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी, वीडियोग्राफी और ड्रोन से निगरानी और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी रोकने, अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट पर निगरानी और शांति समितियों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दी बधाई। कहा, श्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा आगे। भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में राज्यसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी उतारने का निर्णय। झामुमो ने निर्वाचन आयोग को पत्र भेज विशेष निगरानी की मांग की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की करेंगे समीक्षा। रांची में प्रस्तावित रिम्स 2 अस्पताल परियोजना पर 4,200 करोड़ रुपए होंगे खर्च, मरीजों को मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं। और झारखंड में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए आज से 1 महीने तक चलेगा विशेष महाअभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं अनुरंजनी कार्यक्रम में उपशास्त्रीय संगीत। हमारे आज के कलाकार हैं शोभा गुट्टू, इनसे आप सुनेंगे मिस्र पहाड़ी में ठुमरी और दादरा। तबले पर संगत दे रहे हैं अनीश प्रधान और सारंगी पर ध्रुव ज्योति घोष, हारमोनियम पर पी वालावलकर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दादरा श्रीमती शोभा गुरटू से। तबले पर संगत दे रहे थे अनीस प्रधान, सारंगी पर ध्रुव ज्योति घोष, हारमोनियम पर पी वालावलकर। और इसी के साथ आज का अनुरंजनी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे सुगम संगीत थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह। लीजिए सुनिए जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

0: 2.5 millimeters of rainfall for two consecutive days after May 10. Wind speed and inset satellite data will also be considered before confirming the onset of the monsoon. While districts from Thrissur northwards have not received significant rainfall since this morning, several southern regions continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning.
1: On sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sanchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL Qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: Economic resilience should be promoted.
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
3: Undertake more exchange

0: as we intend to do.
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है.
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया. हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है. आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है. स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं. बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया. आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाए.
0: Will become even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा. उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी. श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा. श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं.
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं. इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं. क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं. क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं.
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया. ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है. भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए. यह ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ. आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं. गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया. उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की. इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की. श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे. उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई. पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई. एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई. ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई. पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया. मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है. सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है. सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण

0: पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका

0: मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वरकला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाएंगे जय भारती कार्यक्रम। हमारे सभी फौजी भाइयों को हमारा दिल से सलाम। आइए सुनते हैं आपके लिए ये प्यारा सा नगमा।

हमारे सभी फौजी भाई हमेशा खुश रहें, उनकी सेहत अच्छी रहे और उनमें हमेशा अजेय साहस भरा रहे। आप हमारे सरहद पर देश की रक्षा करते हैं और हम सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित चैन से सो पाते हैं। आपके इस सर्वोच्च बलिदान और समर्पण को हम हमेशा सलाम करते हैं।

हमारे फौजी भाइयों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उनका हौसला, जो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। उनके और उनके परिवार को हमेशा भगवान नई ऊर्जा, शक्ति और सफलता दे।

हम अपने देश की सेवा में रत सभी फौजी भाइयों के बारे में बातें करते हैं तो बस ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार से दूर रहकर भी कितने पास हैं, क्योंकि आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है और वो उनसे रोज़ मिलते होंगे, तो फिर हम यही चाहते हैं कि वो उनसे रोज़ इसी तरह से मिलते रहें जब तक सरहद पर डटे रहें और अपने परिवार के साथ खुशियां बांटें। और वो जो त्याग करते हैं उन पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। वो हमेशा मुस्कुराते रहें और देश की सेवा में तत्पर रहें।

हमारे सभी फौजी भाई जो सरफरोशी की तमन्ना दिल में लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंड कितनी भी हो, उनका हौसला हमेशा देश को सबसे ज़्यादा गर्माहट देता है। वो सरहद पर खड़े हैं इसलिए पूरा हिंदुस्तान महफूज है और चैन की नींद सोता है। चाहे नया साल हो या कोई भी त्यौहार, उनका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ हमारा देश ही है और इसीलिए हम अपने सभी फौजी भाइयों का दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि उनकी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि 144 करोड़ भारतीयों के गर्व का प्रतीक है। आप भले अपने घर से दूर हैं लेकिन आपका हर भारतीय के दिल में धड़कन में बसते हैं और इससे ज़्यादा हम अपने भारतीय सेनाओं के लिए जितना भी कहें वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम अपने फौजी भाइयों का फिर से एक बार दिल से स्वागत करते हैं और सम्मान करते हैं और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आज दूसरे दिन भी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। वे आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न सरकारी विभागों के काम का लेखा जोखा लेंगे और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी देंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है।
1: मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना, और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। हमारे देश की जनता उनके रोम रोम में रमी है, उनकी हर एक सांस में बसी है।
0: झारखंड रेल पुलिस के आईजी माइकल राज एस और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने चांडल रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने थाने के कागजात, मालखाना और हाजत को देखा। उन्होंने पुराने मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। अफसरों ने जवानों से बात कर उनके रहने और खाने की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया। सिमडेगा में आज हजारों राम भक्तों ने सड़कों पर उतरकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। लोग प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री राम रेखा धाम को पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष कौशल राज सिंहदेव ने कहा कि पर्यटन स्थल बनने से धाम की पवित्रता भंग होगी, इसे सिर्फ धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: केंद्र सरकार के 12 वर्षों के काम से सिमडेगा की महिलाओं के जीवन में बड़ा सुधार आया है। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनी है। मुफ्त गैस मिलने से महिलाओं को चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली है। इससे उनके स्वास्थ्य और समय दोनों की बचत हो रही है। सिमडेगा की रहने वाली रेणु देवी ने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।
1: पहले जैसे तैसे कर करके लकड़ी लाते थे, खाना बनाते थे, बच्चा लोगों का स्कूल लेट भी हो जाता था। अभी तो गैस आया है, तब से समय भी बचता है, कुछ और काम भी कर लेते हैं। हम तो उनका धन्यवाद करना चाहेंगे।
0: रामगढ़ पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 7 कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया है। एसपी मुकेश कुमार लोनायत ने बताया कि ये अपराधी पतरातु इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक लोडेड पिस्तौल, 34 जिंदा कारतूस और 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिज्जान की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं, ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन अराफात में अपना पूरा दिन नमाज और दुआओं में बिता रहे हैं। और अब मौसम का हाल। राज्य में मौसम का दोहरा रूप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू और चतरा में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो और रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और आसपास के मध्य भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हालांकि गढ़वा और पलामू में लू का असर बरकरार रह सकता है। इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं अगला कार्यक्रम, नॉन स्टॉप अंताक्षरी। जी हाँ, इसका इंतज़ार तो आप ठीक 3 बजते ही करने लगते होंगे, मुझे जैसा लगता है। और अपने साथ में इन गर्मियों की छुट्टी में कितने लोगों के साथ आपने टोलियां बनाई होंगी और अपने मनपसंद कार्यक्रम यानी कि नॉन स्टॉप अंताक्षरी का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलिए, अब ये इंतज़ार अब ख़त्म और शुरू करते हैं म अक्षर से ये प्यारा सा गीत।

0: आपको मिला है यह अक्षर। यह अक्षर का गीत हम आपको सुनवाएंगे इस संदेश के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद आपको हमने छोड़ा था य अक्षर पर। य अक्षर पर आप अंताक्षरी सुन रहे थे, तो चलिए हम सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची से नॉन स्टॉप अंताक्षरी, और अभी आपको मिला है न अक्षर, जाने तो या जाने ना। तो चलिए न अक्षर से हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ आज का अंताक्षरी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आइए हम आपको अगला कार्यक्रम सुनाते हैं कुछ ही पलों में, रांची मेलोडीज़।

श्रोताओं, रांची मेलोडी इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और चलिए इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ प्यारे प्यारे गीत। लीजिए सबसे पहले सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत, उसने कहा था फिल्म से, लोफर फिल्म से ये गीत है।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे लोफर फिल्म से। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज लता मंगेशकर की। और अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म से। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। आवाज है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से रांची मेलोडीज कार्यक्रम, और इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ पुराने गीत। लीजिए अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर की ही आवाज़ में, फिल्म खामोशी का। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं हेमंत कुमार।

धूल का फूल, लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। एन दत्ता का लिखा, साहिल लुधियानवी का लिखा ये गीत है और एन दत्ता का संगीत।

आन मिलो सजना। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाज लता मंगेशकर की।

मधुमति लीजिस फिल्म का ये आखिरी गीत सुनिए रांची मेलोडीज कार्यक्रम में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलिल चौधरी। आवाज लता मंगेशकर की है।

0: श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का रांची मेलोडीज कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब आइए इस समय हम आपको सुनवाते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में आज दूसरे दिन भी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। वे आज स्कूली शिक्षा, साक्षरता और महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न सरकारी विभागों के काम का लेखा जोखा भी लेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में नया रिकॉर्ड बनाया है। आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में खादी का कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा ने आज गढ़वा जिले के 35वें उपायुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। पदभार लेने के बाद उन्होंने कहा कि जिले का विकास और सुशासन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। विहिप के महामंत्री वीरेंद्र साहू के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपकर राज्य में गौवंश की हत्या पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में साल 2025 से ही इस पर प्रतिबंध लागू है। झारखंड रेल पुलिस के आईजी माइकल राज एस और डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने चांडल रेल थाने का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने थाने के कागजात, मालखाना और हाजत को देखा। उन्होंने पुराने मामलों को जल्दी निपटाने के निर्देश दिए। रांची में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। संगठन ने झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। मौसम विभाग ने आज गढ़वा, पलामू और चतरा में भीषण लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, बोकारो और रांची समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं क्रीड़ा जगत कार्यक्रम में परिचर्चा। रांची में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बारे में, आईपीएल के बारे में भी खास जानकारी होगी और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द वीक में विराट कोहली, वैभव और गुरविंदर सिंह होंगे। रिपोर्ट और संकलन है अमिता खौरी का, प्रस्तुति और संयोजन प्रभु शरण की।

दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज सबसे पहले हम बातचीत करेंगे, रांची में एथलेटिक्स का महाकुंभ शुरू हुआ, यानी रांची एक बार फिर बड़े आयोजन का गवाह बना है। रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता शुरू हुई है। पर्सनालिटी में बात करेंगे विराट कोहली, वैभव की, खास खास में बात करेंगे टीम इंडिया की। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीरीज शुरू होने वाली है और उस टीम इंडिया की हम बात करेंगे। इसके अलावा खेल खबरें तो होंगी ही। तो सबसे पहले बातचीत रांची में आयोजित होने वाली 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता की। राजधानी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में शुक्रवार से 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, खेल विभाग झारखंड और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में यह प्रतियोगिता 25 मई तक चली। देश भर से करीब 750 से ज़्यादा एथलीट रांची आए और इस प्रतियोगिता में ट्रैक और फील्ड दोनों स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। पहले दिन 7 स्पर्धाओं के फाइनल हुए। इसमें लॉन्ग जंप 1000 मीटर दौड़ पुरुष, 10000 मीटर दौड़ महिला, डिस्कस थ्रो महिला, हैमर थ्रो पुरुष, 3000 मीटर स्टीपल चेज महिला और 3000 पुरुष की प्रतियोगिताएं शामिल हुई। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजन और साहली सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया, उनके बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला और आखिर में एनसी ने 6.7 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और साहली सिंह ने पिछले साल बने 6.64 मीटर के मीट रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। पुरुषों के 10000 मीटर में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने गोल्ड हासिल किया। पुरुषों के हैमर थ्रो में सेना के आशीष जाखड़ ने 68.52 मीटर के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। दूसरे दिन भारतीय एथलेटिक्स ने एक ऐसा ऐतिहासिक पल देखा जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। पंजाब के तेज धावक गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही हुआ 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट भी बन गए। गुरिंदर वीर ने फाइनल में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अनिमेश कुजूर को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत दर्ज की। उन्होंने अनिमेश से 0.11 सेकंड तेज दौड़ लगाई और करीब 2 फीट आगे रहते हुए फिनिश लाइन पार की। इस मुकाबले ने भारतीय एथलेटिक्स को रोमांच से भर दिया। गुरिंदर वीर ने 10.01 के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन महज 5 मिनट बाद उड़ीसा के अनिमेश ने 10.15 सेकंड का समय निकालकर रिकॉर्ड फिर अपने नाम कर लिया था। हालांकि फाइनल में गुरिंदर वीर ने जोरदार वापसी करते हुए इतिहास रच डाला। उनका 10.09 सेकंड का समय इस सीजन में एशिया का दूसरा सबसे तेज समय भी है और इस सूची में केवल जापान के युवा धावक फुकुतु कोमुरु उनसे आगे हैं। इस नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के बाद पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर ने फिनिश लाइन पार करने के बाद अपना बेब उतारा और उसके पीछे लिखा संदेश कैमरे में दिखाया। संदेश में लिखा था, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के तीसरे और अंतिम दिन लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने 8.08 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफाइंग स्तर पर 8.05 मीटर से बेहतर प्रदर्शन किया। ऊंची कूद में महाराष्ट्र के सर्वेश अनिल कुसारे का दबदबा रहा। उनकी 2.28 मीटर की छलांग ने उन्हें स्वर्ण पदक हासिल कराया, जो राष्ट्रमंडल खेलों में क्वालिफाइंग मार्क 2.22 मीटर से
बेहतर रही। कुशारे ने तेजस्विन शंकर द्वारा बनाए गए मीट रिकॉर्ड की बराबरी भी की। उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड 2.29 मीटर को बेहतर करने के लिए 2.30 मीटर की छलांग लगाने का प्रयास किया, लेकिन उनके तीनों प्रयास असफल रहे। रजत पदक विजेता आदर्श राम 2.22 मीटर ने राष्ट्रमंडल खेलों का क्वालिफाइंग मार्क हासिल कर लिया। पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में रजत सिरसे ने 13.50 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने ही मीट रिकॉर्ड 13.61 सेकंड का सुधार किया, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग समय 13.39 सेकंड से वो चूक गए। इससे पहले सुबह के सत्र में हरियाणा की रवीना ने महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल में 44:29.66 सेकंड का समय निकाल कर स्वर्ण पदक जीता। उनका प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग समय 44:44.58 सेकंड से बेहतर रहा।

बता दें कि राजस्थान रॉयल्स ने 2022 सीजन के बाद पहली बार आईपीएल के अंतिम चार में जगह बनाई है। रविवार को मौजूदा सीजन के अपने आखिरी करो या मरो मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से शिकस्त दी। इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल्स ने 206 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन मेजबान मुंबई की टीम 175 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान ने 16 अंकों के साथ चौथी टीम के रूप में क्वालिफाई किया। वहीं पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की उम्मीदें इस नतीजे के साथ समाप्त हो गई। दोनों टीमें राजस्थान की हार पर निर्भर थी। अब बुधवार को मुल्लापुर में एलिमिनेटर मैच में रॉयल्स का सामना तीसरे स्थान पर रही सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वहीं मुंबई ने यह सीजन 9वें स्थान पर फिनिश किया। बानखेड़े में रॉयल्स का गजब साझा प्रयास दिखा। टीम बिना किसी अर्धशतक के 205 रनों के स्कोर तक पहुंच गई और यह आईपीएल के इतिहास में इस तरह का पांचवां सबसे बड़ा स्कोर रहा। वहीं पारी में बिना किसी 50 से अधिक रन के साझेदारी के तो यह तीसरा बड़ा स्कोर रहा। यशस्वी जायसवाल ने 27, दुर्जुरेल 38, शनाका 29, आर्चर 32 का योगदान दिया, जबकि यंग स्टार वैभव सूर्यवंशी नहीं चले और मात्र 4 रन उन्होंने बनाए। रॉयल्स के लिए 7 अलग अलग बैटर्स ने कम से कम एक छक्का लगाया, जो उसकी ओर से लीग इतिहास में सबसे ज़्यादा है। जवाब में मुंबई की टीम खराब शुरुआत के साथ बिखर गई। सूर्या 60, विल जैक्स ने 33, हार्दिक 34 ने अच्छे प्रयास किए, लेकिन रोहित शर्मा नहीं चले, वो शून्य पर आउट हुए। नमन देर ने 6 रन बनाया, रिकल्टन ने 12 रनों का योगदान दिया और इन लोगों का फ्लॉप होना टीम के लिए महंगा पड़ा। रॉयल्स की ओर से आर्चर ने सबसे ज़्यादा 3 और ब्रजेश शर्मा ने 2 विकेट लिए। अब टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मुकाबले में राजस्थान की जीत की कहानी जोफ्रा आर्चर के इर्द गिर्द रही। आर्चर ने 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 15 गेंद में 32 रन ठोके, जो आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ और टी20 में दूसरा सबसे अच्छा स्कोर रहा। इस पारी में 1 चौका और 3 छक्के शामिल थे। आर्चर ने यह पारी ऐसे समय में खेली जब रॉयल्स की टीम 16वें ओवर में 139 रन पर 6 विकेट खो चुकी थी और 200 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा था। इसके बाद गेंदबाजी में आर्चर ने रोहित शर्मा को 0 पे, नमन धीर को 6 पे और हार्दिक पांड्या को भी सस्ते में निपट दिया। और ये आर्चर ही थे जिनके दम पर रॉयल्स ने शुरुआती 6 ओवर में 49 रन तक मुंबई के 4 विकेट झटक लिए थे और ये दबाव बनाने के लिए काफ़ी थे। हालांकि इसके बावजूद मुंबई एक समय 15.3 ओवर में 149 के स्कोर पर थी। हार्दिक और सूर्या 25 गेंद में 48 रन जोड़ चुके थे, लेकिन आर्चर ने वापसी कराई। उन्होंने हार्दिक को बर्गर के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई को पीछे कर दिया। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रनों से हराया और मामला फिनिश कर दिया। 7 मैच में 6 जीत के साथ प्लेऑफ की रेस में रहने के बाद भी कोलकाता नाइट राइडर्स की हार के साथ विदाई हुई। रविवार को दिन के दूसरे मैच में उसे दिल्ली कैपिटल्स ने 40 रन से हराया। हालांकि यह मैच शुरू होने के साथ ही डेड रबर बन गया था, क्योंकि राजस्थान ने मुंबई को हराकर कोलकाता को पहले ही बाहर कर दिया था, जबकि दिल्ली एक दिन पहले एलिमिनेट हो गई थी। इस तरह कोलकाता ने 7वें स्थान पर रहकर सीजन खत्म किया। वहीं दिल्ली ने 6ठे स्थान पर रहकर 14 अंक के साथ सीजन खत्म किया। सीजन के अंतिम लीग मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 203 रन बनाए। केएल राहुल ने 60 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 39, मिलर ने 38 अच्छी पारी खेली। जवाब में कोलकाता की टीम घरेलू ईडन गार्डन्स पर कुलदीप यादव के 29 रनों पर 3 विकेट लेने से फंस गई। ओपनर और कप्तान रहाणे को छोड़कर कोई भी बैटर लंबा नहीं टिक सका। रहाणे ने 63 रन बनाए और टीम 163 पर ऑल आउट हो गई। तो दोस्तों, अब आईपीएल का दूसरा दौर शुरू होगा और देखना है कि अब 4 टीमें किस तरह से अपना दमखम दिखाती हैं। और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पर्सनालिटी में विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी की। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल अब सिर्फ क्रिकेट

0: टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर स्पोर्ट्स लीगों में शामिल होती जा रही है। इसी बढ़ते बाजार का सबसे बड़ा चेहरा बने हैं विराट कोहली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज 18 साल पुराने आईपीएल इतिहास के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो कोहली अब तक आईपीएल में 230 करोड़ रुपए कमा चुके हैं और उन्होंने इस मामले में रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और इस बार इसका 19वां सीजन है। कोहली 2008 से लगातार आरसीबी के लिए खेल रहे हैं और लीग के सबसे बड़े ब्रांड हैं। मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 227.2 करोड़ की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं चेन्नई के महेंद्र सिंह धोनी 200 करोड़ रुपये कमाई के साथ तीसरे स्थान पर हैं। धोनी आज भी आईपीएल और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े कमर्शियल आइकन में गिने जाते हैं। आईपीएल में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो हमने आपको बता ही दिया, सबसे ज़्यादा विराट कोहली की कमाई है 230 करोड़, रोहित शर्मा 227.2 करोड़, महेंद्र सिंह धोनी सीएसके की तरफ से खेलते हैं 200 करोड़। देश की अगर सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी की बात करें तो इसमें पहला नंबर आता है केकेआर का, जिसका वैल्यूएशन अगर किया जाए तो 19,200 करोड़ रुपये हैं। एमआई का वैल्यूएशन है 18,400 करोड़ और सीएसके का 18,400 करोड़। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हॉकी इंडिया लीग में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी कमाई सिर्फ 78 लाख रुपए है। इसके बाद अभिषेक नयन हैं 72 लाख और हार्दिक सिंह हैं 70 लाख, और ये दिखाता है कि भारतीय स्पोर्ट्स मार्केट में क्रिकेट का दबदबा कितना है। यानी एक आईपीएल लीग में जहां विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी सरीखे खिलाड़ी 200 करोड़ से ऊपर के कमाई के रेंज में हैं, वहीं भारतीय हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनकी कमाई 60 से 80 के बीच है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और अब हम बात करने जा रहे हैं सिक्सर किंग वैभव की। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में इतिहास रच चुके हैं। वैभव आईपीएल के एक सीजन में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रेयस का बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। वैभव के अब तक 53 छक्के हो गए हैं और वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। उनका अगला निशाना टी20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जाने वाले क्रिस गेल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ना है। लखनऊ खिलाफ वैभव ने 10 गगनचुंबी छक्के लगाए और इस सीजन में अपने कुल छक्कों की संख्या 53 पहुंचा दी। रसेल ने आईपीएल 2019 में 52 छक्के लगाए थे, जबकि वैभव उनसे आगे निकल गए हैं। आईपीएल के इतिहास में एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अभी क्रिस गेल के नाम है। गेल ने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए 59 छक्के जड़े थे। वैभव जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए रिकॉर्ड भी खतरे में नजर आ रहा है। अब हम पर्सनालिटी में बात करने जा रहे हैं भारत के सबसे तेज धावक बनने का रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया है और इनका नाम है गुरिंदर वीर सिंह। साल 2008 में मशहूर धावक उसैन बोल्ट ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, और तब 7 साल के गुरिंदर वीर सिंह ने टीवी पर यह देखा था और उन्होंने बोल्ट को रिकॉर्ड बनाते हुए देखा तो काफ़ी प्रेरित हुए और तभी उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन वह भी भारत के सबसे तेज धावक बनेंगे। उन्हें प्रेरित करने के लिए कांस्टेबल पिता कमलजीत सिंह अक्सर वोल्ट के किस्से उन्हें सुनाते थे और अब पंजाब के 25 साल के गुरिंदर वीर ने रांची में फेडरेशन कप में 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया और अपने बचपन का सपना पूरा किया। जब गुरिंदर वीर ने दौड़ शुरू की थी तब धारणा थी कि पंजाबी धावक 100 मीटर में सफल नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे कहते थे, इस सोच को गलत साबित करके ही दम लूंगा, और अपने नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर उस सोच को उन्होंने खत्म किया। कोविड में जब ट्रैक और जिम बंद थे तब जालंधर में गुरिंदर वीर कोच सरबजीत सिंह के साथ चोरी छिपे स्थानीय पार्कों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ते थे और उन्हें सुरक्षा कर्मियों की नजरों से बचकर ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। 2017 की एशियन यूथ चैंपियनशिप से पहले गुरिंदर वीर ने 6 महीने तक स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी, लेकिन बैंकॉक में 100 मीटर हीट में वे आखिरी रहे तो रूममेट कहने लगे कि फाइनल भी पूरा नहीं कर पाओगे। गुरिंदर वीर ने पिता को फोन किया और कहा कि दूसरा तीसरा रैंक शायद मिल जाए। यह सुनकर पिता बोले, अगर सोच ही यही है तो कभी नहीं जीतोगे, और यही डांट जो है आगे के लिए प्रेरणा बनी और गुरिंदर वीर ने अगले ही दिन गोल्ड जीत लिया। तो दोस्तों, एक बात तो है कि अगर आप ठान लेंगे कि आपको कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम खास में बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट सीरीज की। अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारत की टेस्ट और वनडे टीमें घोषित की जा चुकी हैं। राहुल को टेस्ट और श्रेयस को वनडे टीम की उपकप्तानी मिली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी है। शुभमन गिल की अगुवाई में टीम 1 टेस्ट और 3 वनडे खेलेगी। यह सीरीज 6 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगी। इस चयन में सबसे बड़ा नुकसान स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत को हुआ है। पंत से टेस्ट टीम की उपकप्तानी वापस ले ली गई और उनकी जगह अब KL राहुल यह जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा पंत को वनडे टीम से पूरी तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वनडे फॉर्मेट में उपकप्तानी का जिम्मा श्रेयस अय्यर को मिला है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली समिति ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया है। बुमराह जुलाई में सीधे इंग्लैंड दौरे पर वापसी करेंगे। वहीं रविंद्र जडेजा IPL के अंतिम चरण में लगी मामूली चोट के कारण टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। वापसी करने वालों में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का नाम अहम है, जो पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद टेस्ट टीम में लौटे हैं। इसके बाद वनडे टीम में ईशान किशन को बतौर बैकअप विकेट कीपर चुना गया है। ईशान ने आखिरी वनडे अक्टूबर 2023 में खेला था। टेस्ट से संन्यास ले चुके रोहित और विराट वनडे के हिस्सा बने हुए हैं। सेलेक्टर्स ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए दोनों सीनियर खिलाड़ियों को सीरीज के लिए चुना है। 4 युवाओं को घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है। इस सिलेक्शन में लेफ्ट आर्म स्पिनर मानव सुधार और हर्ष दुबे के साथ साथ तेज गेंदबाज गुरनूर बराट को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। गुरनूर और हर्ष दुबे वनडे टीम का हिस्सा हैं। वनडे में पेसर प्रिंस यादव भी एक नया चेहरा है और इस बीच अनुभवी ऑलराउंडर और T20 के उपकप्तान अक्षर पटेल दोनों ही टीमों का हिस्सा नहीं है। जिन खिलाड़ियों को मौका मिला है उसमें पहले खिलाड़ी का नाम है मानव सुधार, जो राजस्थान के 23 साल के गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। 29 फर्स्ट क्लास मैचों में 129 विकेट लिए हैं, 945 रन बनाए हैं और इंडिया ए से खेलते हैं। हर्ष दुबे विदर्भ के 23 साल के गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। 27 फर्स्ट क्लास मैचों में 133 विकेट झटके हैं और 1026 रन उन्होंने बनाए हैं। गुरनूर बराट की बात करें तो पंजाब के 6.8 फीट लंबे 26 साल के पेसर बराट का नाम काफी है और 18 फर्स्ट क्लास मैचों में 52 विकेट दर्ज हैं। प्रिंस यादव दिल्ली के 24 साल के तेज गेंदबाज हैं, 14 लिस्ट ए मैचों में 29 विकेट लिए हैं और IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा है। टेस्ट और वनडे सीरीज की शेड्यूल की बात करें तो पहला टेस्ट एकमात्र टेस्ट है जो 6 से 10 जून तक चंडीगढ़ में होगा। पहला वनडे 14 जून को धर्मशाला में, दूसरा वनडे 17 जून को लखनऊ में और तीसरा वनडे 20 जून को चेन्नई में होगा। भारत अफगानिस्तान के बीच अब तक केवल एक ही टेस्ट मैच खेला गया है। 2018 में बेंगलुरु में हुए उस मुकाबले में भारत 2 दिन में ही एक पारी से जीत गया था। तो दोस्तों, अब देखना है कि नए खिलाड़ी किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और अब अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं और खेल जगत की खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सोमवार को यहां चुनी गई भारतीय महिला टीम में पहली बार फॉरवर्ड ललथावलू आंगी को मौका मिला है। पर्थ में 26 से 30 मई तक होने वाला यह दौरा FIH महिला हॉकी नेशंस कप 2025-26 की तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 15 से 21 जून के बीच ऑकलैंड में आयोजित होगा। भारतीय टीम इस दौरे में पूरे आत्मविश्वास के साथ उतर रही है और इसी वर्ष अर्जेंटीना दौरे पर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 मैचों की सीरीज में 2 मुकाबले अपने नाम किए थे। सलीमा टेटे के नेतृत्व में टीम को अनुभव और युवा जोश का संतुलित मिश्रण मिलेगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता सलीमा के साथ सबिता सुशीला चानू पुकराम बाम लाल रेमसियामी और नवनीत कौर जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम में मौजूद रहेंगे। स्टार स्ट्राइकर नेमार को उनके फिटनेस को लेकर संदेह के बावजूद ब्राजील की विश्व कप टीम में शामिल किया गया है। यह फुटबॉलर इस तरह से अपना 4th विश्व कप खेलेगा। 34 साल के नेमार के नाम पर ब्राजील की तरफ से सबसे ज्यादा 79 गोल करने का रिकॉर्ड है, लेकिन वह अक्टूबर 2023 में बाएं ACL में चोट लगने के बाद से अपनी सर्वश्रेष्ठ फिटनेस हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ताइजुल इस्लाम के 6 विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रनों से जीता था। पाकिस्तान ने मैच के 5वें और अंतिम दिन सुबह अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 316 रन से आगे बढ़ाई, लेकिन उसने 11.2 ओवर में अपने बाकी बचे विकेट भी गंवा दिए। बाएं हाथ के स्पिनर ताइजुल ने 5वें दिन गिरे 3 विकेटों में से 2 विकेट लिए। BCCI ने 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इस सीजन में पुरुष और महिला वर्ग के विभिन्न आयु समूहों में कुल 1788 मुकाबले खेले जाएंगे। खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट रिकवरी और युवा प्रतिभाओं को ज्यादा मौका देने के उद्देश्य से कई अहम बदलाव किए गए हैं। रणजी ट्रॉफी और कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी 2 चरणों में आयोजित होगी, जबकि कई जूनियर टूर्नामेंट अब T20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। घरेलू सीजन की शुरुआत दलीप ट्रॉफी से होगी। यह टूर्नामेंट 6 जोनल टीमों के बीच खेला जाएगा और इसके बाद 1 अक्टूबर से पारंपरिक ईरानी कप का आयोजन किया जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2 चरणों में होगी। एलिट ग्रुप में कुल 32 टीमें शामिल होंगी। इन्हें 4 ग्रुपों में बांटा गया है। प्लेट ग्रुप में 6 टीमें खेलेंगी। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी विनर्स बनाम रेस ऑफ इंडिया मुकाबले को फिर से कैलेंडर में शामिल किया गया है। यह मैच 1 से 4 अक्टूबर 2026 तक खेला जाएगा। BCCI का मानना है कि इसे Under-23 खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और अब कुछ स्थानीय खेल खबरें। रायपुर में आयोजित सीनियर तथा जूनियर राष्ट्रीय वुड बॉल चैंपियनशिप में झारखंड के बालक बालिका पुरुष और महिला टीम ने विभिन्न वर्गों में विजेता और उपविजेता बनकर झारखंड का नाम रोशन किया। सीनियर पुरुष स्ट्रोक में झारखंड विजेता, महिला फेयरवे इवेंट में विजेता, जूनियर बालक स्ट्रोक इवेंट में उपविजेता, जूनियर बालिका फेयरवे इवेंट में उपविजेता और जूनियर बालक फेयरवे इवेंट में झारखंड उपविजेता बना। ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित सेंट्रल एंड साउथ एशिया सीनियर मेंस रग्बी चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर सिल्वर मेडल जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ी डेविड मुंडा का रांची में भव्य स्वागत किया गया। झारखंड के रग्बी खिलाड़ियों ने उनका अभिनंदन किया। डेविड ने उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 10-10 स्कोर कर कुल 20 अंक बनाए और टीम को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने बेहतरीन डिफेंस किया। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय कांके में 19 से 21 मई तक आयोजित 3 दिवसीय समर कैंप संपन्न हो गया और कैंप में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से खेल, योग, चित्रांकन एवं विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि रांची जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज थे। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ वॉलीबॉल खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया। तो दोस्तों ये तो थे खेल समाचार, और इसी के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: क्रीड़ा जगत, अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुति स्वर था अमित अखौरी का, प्रस्तुति व संयोजन थी प्रभु शरण की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दिए चलते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में, कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

अब से थोड़ी देर बाद 4:35 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे का वक्त होगा प्रादेशिक मुख्य समाचार का।

शाम 5:02 पर आप सुन पाएंगे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे, सूत्रधार होंगी तनिष्का और समृद्धि। पांच बजकर 30 मिनट पर कामगार बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक, सूत्रधार कुमारी आरती और आकांक्षा सिन्हा, प्रस्तुति है प्रशांत गौरव की।

शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर हम लेकर आएंगे किसान वाणी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत चर्चा होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आज की बात में आप सुनेंगे फलदार पौधों की नर्सरी के संदर्भ में जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर महबूब आलम, भेंटकर्ता होंगे मनोज कुमार। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 6:32 का वक्त होगा हमारी दुनिया कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा स्वयं सहायता समूह, साथ ही सूचना सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते कदम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप अपने पसंद के लोकगीत भी सुन पाएंगे। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। शाम 7:15 का वक्त होगा आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम का। ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे खड़िया भाषा में। इसके अंतर्गत चर्चा होगी घर या व्यवसायिक स्थल पर सोलर पैनल लगाने के फायदे। पीएम सूर्य घर सोलर स्कीम के बारे में भी आप जानकारी पाएंगे, साथ ही अपने पसंद के लोकगीत भी आप सुन पाएंगे। प्रस्तुत करता होंगे प्रदीप कुमार।

शाम 7:45 का वक्त होगा अंग्रेजी वार्ता कार्यक्रम का। इसके अंतर्गत वार्ता होगी सेव नेचर सिक्योर फ्यूचर। वार्ताकार होंगे शुमाइला तहजीब, प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। रात्रि 8 बजे का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में।

रात्रि 10:30 का वक्त होगा शास्त्रीय संगीत के आयोजन का। आज के इस आयोजन में आप सुनेंगे अभिराम पाठक से राग बहार में आलाप और धमार गायन। तबले पर संगत करेंगे संदीप चटर्जी, हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती।

मुकद्दर का सिकंदर, अभी आप ये गीत सुन रहे थे इस फिल्म का। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की। शब्दकार थे अनजान, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म बाजीगर का ये युगल गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू और सोनाली वाजपेयी की, शब्द हैं रानी मल्लिक के, संगीत अनु मल्लिक का।

ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से सांझ सरगम कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं सत्यमेव जयते 2 का ये गीत। आवाज़ें हैं रोचक कोहली, जुबिन नौटियाल और नितिन मोहन की। शब्द हैं मनोज मुंतशिर के और संगीत रोचक कोहली का है।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म माशूक का ये युगल गीत। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत की। गौहर कानपुरी के शब्दों को संगीतबद्ध किया है श्याम सुरेंद्र ने।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी शैक्षणिक योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और नए वर्ष 2026-27 की कार्य योजना पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने आज रांची में आदि निवास डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया। मौके पर उन्होंने कहा कि यह ऐप देश भर के आदिवासी समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगा। इससे आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, भूमि और परंपरा के संरक्षण के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉरपोरेशन में नियमों को ताक पर रखकर चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है। बकरीद त्यौहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पाकुड़ जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने शहर के मुख्य मार्ग और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। खूंटी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी ऋषभ गर्ग ने कुल 56 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे। जामताड़ा पुलिस ने लूट और छिनतई की घटनाओं में शामिल एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए अपराधी के पास से एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और लूटा गया सामान बरामद हुआ है। जमशेदपुर के गोविंदपुर इलाके में भीषण गर्मी के बीच पिछले 48 घंटे से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है। जलापूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों और महिलाओं ने जिला परिषद सदस्य डॉ. परितोष सिंह के नेतृत्व में पानी टंकी परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, इस खूबसूरत और सुकून भरी शाम में आप सुन रहे हैं युवानी। मैं हूं आपकी दोस्त समृद्धि।
1: और मैं हूं तनिष्का।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार। उम्मीद है आपका दिन अच्छा रहा होगा। आज हम बात करेंगे युवाओं और खेलों की। क्यों खेल हमारे जीवन में जरूरी है और कैसे ये युवाओं के लिए नए अवसर और उज्जवल भविष्य के दरवाजे खोल रहे हैं, और सुनेंगे कुछ प्यारे गीत।
0: दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब इतने बिजी हो चुके हैं कि हम अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखते। खास करके युवा वर्ग कभी पढ़ाई का दबाव, कभी करियर की चिंता, तो कभी मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों बिताना।
1: बिल्कुल समृद्धि, आजकल युवा घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। बाहर खेलना, दौड़ना या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। जब भी खेल की बात होती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फिटनेस आती है, और खेल हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका है।
1: सही कहा, खेल खेलने से शरीर एक्टिव रहता है, स्टैमिना बढ़ता है और कई बीमारियों से बचाता है। आजकल कम उम्र में ही थकान और जॉइंट पेन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसका एक बड़ा कारण है फिजिकल एक्टिविटी की कमी।
0: और यही वजह है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को रोज थोड़ा बहुत खेलना या एक्सरसाइज करना चाहिए। अपने मनपसंद खेल को रोज थोड़ा समय देना भी काफी होता है।
1: बिल्कुल।

0: क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी या फिर सिर्फ रनिंग या वॉकिंग, हर एक्टिविटी शरीर को फ़ायदा पहुंचाती है। और खेल सिर्फ शरीर को ही नहीं, दिमाग को भी स्वस्थ रखते हैं। जब हम एक्टिव रहते हैं तो तनाव कम होता है और मूड अच्छा होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। जब हम एक्टिव रहते हैं तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन और एड्रेनालिन रिलीज करता है। ये हमें खुशी और ऊर्जा महसूस कराने में हेल्प करती है। इसलिए कई बार जब हम परेशान होते हैं तो थोड़ी देर वॉकिंग या रनिंग करने से मन हल्का हो जाता है।
0: समृद्धि, मुझे लगता है कि खेल युवाओं को अनुशासन भी सिखाता है।
1: बिल्कुल, कोई भी खेल हो उसमें नियमों का पालन करना पड़ता है। समय पर प्रैक्टिस, मेहनत, टीम वर्क और हार जीत को एक्सेप्ट करना होता है। ये सारी बातें हमें जीवन में बहुत काम आती हैं।
0: सही कहा, खेल हमें ये सिखाते हैं कि हर बार जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करते रहना जरूरी होता है।
1: और शायद यही सीख जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है, क्योंकि असली जीवन में भी हमें कई बार असफलता मिलती है, लेकिन खेल हमें गिरकर दोबारा उठना सिखाते हैं।
0: मुझे याद है स्कूल के दिनों में स्पोर्ट्स डे का कितना इंतज़ार रहता था। पूरा माहौल ही अलग होता था, उत्साह, दोस्ती, हंसी मजाक और टीम स्पिरिट।
1: सच में, और यही चीज़ युवाओं के मानसिक विकास में मदद करती है। खेल लोगों को एक दूसरे के करीब लाते हैं, इससे दोस्ती बढ़ती है और आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।
0: हमारे देश में खेलों की कितनी बड़ी परंपरा रही है। कबड्डी, खो खो, हॉकी, क्रिकेट, हर खेल युवाओं को ऊर्जा और पहचान देता है।
1: आज भारतीय खिलाड़ी दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। जब हम किसी खिलाड़ी की सफलता देखते हैं तो उसके पीछे सालों की मेहनत और अनुशासन छुपा होता है।
0: और यही प्रेरणा युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत देती है। खेलों से जुड़कर युवा अपने अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच जरूर विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तनिष्का। जब हम खेलों की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ फिटनेस या मनोरंजन तक सीमित समझते हैं, लेकिन आज के समय में खेल युवाओं के लिए करियर और भविष्य के नए अवसर भी तो लेकर आया है।
0: अब खेलों में युवाओं के लिए बहुत सारे प्रोफेशनल अवसर मौजूद हैं। आज युवा सिर्फ खिलाड़ी बनकर ही नहीं, बल्कि कई अलग-अलग क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं।
1: सही कहा। अगर आज किसी युवा में प्रतिभा और मेहनत है तो खेल उसे पहचान, सम्मान और एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं।
0: और अब तो सरकार और कई संस्थाएं भी युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर अलग-अलग प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, जहां युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं।
1: हाँ, और कई खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से अच्छी शिक्षा और नौकरी के अवसर भी मिलते हैं। रेलवे, सेना, बैंक और कई सरकारी नौकरी विभाग खिलाड़ियों को विशेष अवसर प्रदान करते हैं।
0: इसके अलावा आज खेलों से जुड़े कई नए करियर ऑप्शंस भी सामने आए हैं, जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, फिटनेस ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी, कोचिंग और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस।
1: और सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के आने से तो युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक नया मंच भी मिला है। कई युवा अपने खेल को के वीडियोस और कंटेंट के जरिए लोगों को दिखा रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: तो दोस्तों, खेल सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं बनाता, बल्कि युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला भी देता है।
1: बिल्कुल, खेल युवाओं को एक नई दिशा, नई पहचान और उज्जवल भविष्य देने की ताकत रखते हैं। इसलिए खेलिए, आगे बढ़िए और अपने सपनों को उड़ान दीजिए। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना।
1: दोस्तों अब समय हो गया है इतिहास में आज के दिन के बारे में बात करने का। 1969 में आज ही के दिन अपोलो 10 मिशन सफल परीक्षण के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस लौटा। यह नासा के अपोलो प्रोग्राम का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण था।
2: बिल्कुल दोस्तों, साथ ही आज 1983 में जापान में भूकंप से 104 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
1: 1999 में IRS-P4 ओशियन सैट का PSLV से सफल प्रक्षेपण हुआ।
2: 2024 में दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता बनी।
1: खेल जगत में वर्ष 1999 में सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ ने क्रिकेट विश्व कप में 318 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी की थी, जो उस समय विश्व रिकॉर्ड बनी।
2: और साथ ही आज ही के दिन 1897 में ब्राम स्टोकर की फेमस नॉवेल ड्रैकुला पहली बार पब्लिश हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स की। दुनिया रहस्यों और सरप्राइजेस से भरी हुई है। कई बार कुछ फैक्ट्स इतने अमेजिंग होते हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है।
1: साइंस, नेचर और ह्यूमन बॉडी से जुड़े ऐसे ही कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स आज हम जानेंगे, जो आपको हैरान करेंगे और क्यूरियस भी करेंगे।
2: दोस्तों हनी कभी भी खराब नहीं होता है। हजारों साल पुराने हनी जार्स भी खाने लायक पाए गए हैं।
1: ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और जब वह तैरता है तो उसका एक दिल कुछ समय के लिए धड़कना बंद कर देता है।
2: क्लाउड्स बहुत भारी होते हैं। एक एवरेज क्लाउड का वजन लाखों किलो तक हो सकता है।
1: और ह्यूमन ब्रेन रात में ज़्यादा एक्टिव होता है, इसी वजह से कई बार हमें रात को ज़्यादा आइडियाज़ और थॉट्स आते हैं।
2: बिल्कुल दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्लॉथ्स एक हफ्ते में सिर्फ एक बार नीचे उतरते हैं, यानी वो पेड़ों से उतरकर सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए नीचे आते हैं।
1: और स्पेस में कोई आवाज़ नहीं होती क्योंकि वहाँ साउंड ट्रैवल करने के लिए हवा ही नहीं होती है।
2: बटरफ्लाइज अपने पैरों से टेस्ट करती हैं, उनके पैरों में टेस्ट सेंसर्स लगे होते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे करंट अफेयर्स की। भारत सरकार ने 2024 के लिए नए नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस रूल्स लागू किए हैं, जिनका उद्देश्य स्पोर्ट्स बॉडीज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स 2026 प्रदान किए हैं।
1: इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट 2026 से पहले भारत में टाइगर कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आयोजित किए जा रहे हैं।
2: इंडिया को ऑफिशियली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 होस्ट करने का अवसर मिला है, जिसे लेकर देश भर में सेलिब्रेशंस हो रहे हैं।
1: भारत में ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप और सस्टेनेबल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इकोप्रेन्योर अवार्ड्स 2026 आयोजित किए गए हैं।
2: नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 2026 हेल्थ केयर और नर्सिंग सर्विसेज में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को प्रदान किए गए हैं।
1: भारत में डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन और प्रिसिजन मेडिसिन जैसे क्षेत्रों में नई इनिशिएटिव्स पर जोर दिए गए हैं।
2: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI ने ओलंपिक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए नए रिस्ट्रक्चरिंग स्टेप्स उठाए हैं।
1: दोस्तों बातें हम और भी करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं एक गीत।

0: तो आएगी ना।
1: सुगंध, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
1: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जीवन में हर बार जीतना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी बात होती है हिम्मत करके मैदान में उतरना। खेल हमें सिर्फ कंपटीशन नहीं सिखाते बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और कभी हार ना मानने का जज्बा भी देते हैं।
4: और इसी भावना को दर्शाती है ये खूबसूरत पंक्ति, इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्पोर्ट्स इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। दोस्तों, खेल हमें सिर्फ जीतना नहीं सिखाते बल्कि जीवन की कई महत्वपूर्ण चीज सिखा देते हैं। असली मायने सिर्फ ट्रॉफी जीतने में नहीं है बल्कि पूरे उत्साह और ईमानदारी से भाग लेने में है।
3: जब हम किसी खेल में हिस्सा लेते हैं तो हम डिसिप्लिन, टीम वर्क, पेशेंस और हार्डवर्क जैसी क्वालिटीज सीखते हैं। हर जीत में खुशी देती है लेकिन हर हार हमें कुछ नया सिखाकर और मजबूत बना जाती है।
4: दोस्तों, खेल हमें ये भी सिखाते हैं कि कोशिश करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार जीत से ज्यादा जरूरी होता है खुद पर विश्वास रखना और मैदान में अपना बेस्ट देना।
3: और यही स्पिरिट सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहती बल्कि हमारी पढ़ाई, करियर और डेली लाइफ में भी काम आती है। तो आइए जीत हार से ऊपर उठकर खेलों की असली भावना को समझें, पार्टिसिपेशन, डेडिकेशन और स्पोर्ट्समैनशिप।
4: क्योंकि असली खिलाड़ी वही है जो हर बार गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, बातें तो और भी करनी थी पर समय हो चला आपसे विदा लेने का। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त समृद्धि
3: और तनिष्का को।
4: नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाणी, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए आप सुनते हैं कामगार बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी, माफ कीजिएगा श्रमिक लोक।

0: श्रमिक साथियों नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम श्रमिक लोक में, जिसे लेकर हाजिर है हम, मैं आरती और मेरे साथ आकांक्षा। आकांक्षा तुम्हें भी नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, और सभी श्रमिक साथियों को भी आकांक्षा का नमस्कार। आरती, इतनी बड़ी इतनी गर्मी है, इतनी तपती हुई गर्मी है, और हम इस गर्मी की चपेट में आ ही रहे हैं, है ना। तापमान भी धीरे धीरे बेतहाशा बढ़ ही रही है, और सभी लोग एकदम त्राही त्राही हो रहे हैं, एकदम गर्मी से बेचैनी बढ़ रही है सभी की। और हमारे जो श्रमिक है, खासकर उनके लिए तो ये गर्मी और भी खतरनाक है उनके लिए, क्योंकि उन्हें चाहे जैसी भी मौसम हो काम करना ही पड़ता है, और इतनी गर्मी में उन्हें काम करना पड़ रहा है, उनके लिए परेशानी हो रही है। और उत्पादन भी ज़रूरी है, अगर उत्पादन वो नहीं करते हैं तो हमारे देश का विकास रुक जाएगा, जो कि हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे श्रमिकों का ऐसी गर्मी में काम करना बेहद ही ज़रूरी है। लेकिन साथियों, आपको कुछ विशेष बातों पर ध्यान भी देना है।
0: बिल्कुल साथियों, आप इस तपती हुई गर्मी में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। हर थोड़ी देर में घड़ा का पानी या अन्य तरल पदार्थ का सेवन ज़रूर करें। खाना बिल्कुल हल्का खाएं, और अपने आहार में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज जैसे मौसमी फल को ज़रूर शामिल करें। और हाँ, सूती कपड़े ही पहने, और कच्चा प्याज और कच्चा आम का सेवन हर दिन करें किसी भी फॉर्म में, जिससे आप लू और गर्मी से अपने आप को बचा पाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरती। और ये जो आहार है ना साथियों, आपको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, क्योंकि आपको पर्याप्त पोषण इनसे मिलेगा। क्योंकि गर्मी के मौसम में आप जितने तरल यानी रसदार सब्जियां ले, या फल ले, या फिर खीरा ककड़ी ले, तो वो आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वो भी गर्मी के मौसम में खासकर, है ना आरती। गर्मी के मौसम में जितना आप पानी वाली चीज़ें ले, चाहे वो ORS हो, चाहे नींबू पानी हो, नारियल पानी हो, या फिर सत्तू पानी हो, या फिर गन्ने का जूस हो, वो सभी आप अपने खाने में शामिल करें, तो आपको उचित पोषण मिलेगा। और साथियों, अगर पोषण युक्त भोजन नहीं लेते हैं तो उनका उचित विकास नहीं होता, यानी कि आपका या फिर आपके बच्चों का उचित विकास नहीं होगा।
0: साथियों, ये आहार जो हमने बताया ना अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए, वो पर्याप्त तो पोषण भी उससे मिल ही जाता है। और बात अगर बच्चों की करें तो उन्हें अगर पोषण युक्त भोजन नहीं मिलेगा तो उनका उचित विकास नहीं होगा, क्योंकि आहार से ही हमें सारे विटामिन्स मिलते हैं। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा मुश्किल है बच्चों को पोषण युक्त भोजन खिलाना, क्योंकि जंक फूड का प्रचलन इस तरह हावी हो गया है कि बच्चे फल और सब्जी खाना ही नहीं चाह रहे हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ऐसे आहार का सेवन कर उनके आंखों में चश्मा लग रहा है। बहुत कम उम्र में ही वो मधुमेह और ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे, कोलेस्ट्रॉल उनके बढ़ रहे, जो बहुत ही चिंता का विषय है।
1: बिल्कुल, तो साथियों, बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें नियमों का पालन हर हाल में करना ही होगा, जैसे सुबह जल्दी उठना है, समय से खाना खाना है,
0: और शाम
1: के वक्त भी आपको खूब खेलना है, क्योंकि आज के दौर में बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, जिससे वे बाहर खेलने नहीं चाहते,
0: और ये बहुत बड़ी चुनौती आन पड़ी है सभी पेरेंट्स के लिए, क्योंकि माता पिता की अहम जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कार्यों में भी पारंगत बनाया जाए, जिससे वो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तभी तो उनका अच्छे

0: विकास हो पाएगा, जाहिर सी बात है कांक्षा।
1: बिल्कुल। इसके अलावा आरती, हमें अपने श्रमिक साथियों को यह भी कहना चाहेंगे हम कि जैसा आपने कहा कि स्मार्टफोन की वजह से बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बच्चों में, लेकिन बड़े भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चे या बड़े, जिसके पास भी खाली वक्त होता है, वो अपना सारा समय फोन पर ही देते हैं।
0: बिल्कुल। और कई बार अनजान लिंक को हम क्लिक कर देते हैं, जिससे हमारा फोन हैक हो जाता है, अकाउंट से सारे पैसे निकालने में हैकर्स कामयाब हो जाते हैं। इसलिए साथियों, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, सावधान रहें, सचेत रहें, तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं। और अमूमन देखा गया है आकांक्षा कि जब हम स्मार्टफोन, अभी जो साइबर कैफे वाला, जो साइबर का क्राइम, साइबर क्राइम जो बढ़ गया है ना, वो इतनी बुरी तरह से बेतहाशा उसमें वृद्धि हो रही है। हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लाख अपने आप को सचेत कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हम कर जा रहे हैं। हाँ, और ये जो पैसे जब हमारे निकल जाते हैं ना, उसको पैसे को वापस ला पाना बहुत मुश्किल होती है। हाँ, तो इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से रहना है। हाँ, तो चलो अब वक्त है एक ब्रेक का, सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: तो हमारे साथियों का मनोरंजन तो हमने कर दिया। और आकांक्षा, ये कहते हैं ना कि फैशन जो है, हर कोई फैशन करना चाहता है और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको हमेशा अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखना चाहिए। आप जब अपने आप को स्मार्ट और साफ सुथरा और अच्छे तरीके से रखेंगे ना, तो एक अच्छा सा वाइब्स आता है। कहीं भी आप किसी से बातें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई, फैशन की दुनिया में महिलाओं को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसमें महिलाओं के लिए रोजगार का जो साधन है वो बुटीक का व्यवसाय यानी

0: पार्लर्स के जो बिजनेस होते हैं
1: बिल्कुल
0: वो हैं। तो चलो इस पे ही हम जानते हैं, वार्ताकार हैं छवि कुमारी, तो ये हमें बताएंगी कि कैसे वो अपना बुटीक व्यवसाय कर सकती हैं।
2: जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोग आजकल सबसे ज़्यादा ध्यान अपने कपड़ों पर देते हैं, साथ ही जगह और माहौल के हिसाब से लोग अपने कपड़ों का चयन करते हैं। अगर कोई ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस के हिसाब से कपड़े पसंद करेगा। यदि कोई शादी विवाह या फिर किसी पार्टी सेलिब्रेशन में जाने की बात आए तो उसी हिसाब से लोग अपने कपड़े खरीदते हैं। अगर आपके दिमाग में बुटीक का बिजनेस शुरू करने का विचार आता है तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस हो सकता है। अगर आप एक घरेलू महिला हैं और आपको कपड़ों के डिज़ाइन के बारे में अच्छी जानकारी है, आप कपड़ों में अच्छे डिज़ाइन बनाने का हुनर रखती हैं, तो आप बुटीक बिजनेस आसानी से शुरू कर सकती हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पैसा कमाने का कारोबार हो सकता है, क्योंकि बुटीक की ज़रूरत तो हर जगह पड़ती है, चाहे वो कोई गांव हो फिर छोटा शहर हो। फैशन बुटीक ये एक ऐसा स्टोर होता है जहां पे आपको कपड़े, एक्सेसरीज़, ज्वेलरी, हैंडबैग्स और दूसरी फैशन की वस्तु प्रीमियम दाम में मिलती है, क्योंकि बुटीक में क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए दाम भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बुटीक वह जगह है जहां पे आप अपने मनपसंद ड्रेस बनवा सकते हैं। ठीक ऐसे ही अगर आपने कारीगरी से एक अच्छी सुंदर ड्रेस डिज़ाइन करके, तरह तरह का वर्क करके, उसकी सुंदरता बढ़ा के अपने घर या मार्केट के एक छोटे से कोने में दुकान के माध्यम से बेचें, तो ये बन जाता है आपका एक बुटीक बिजनेस। अब आप इसे अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे कि बुटीक किसे कहा जाता है। इस बुटीक बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले कपड़े सिलने और इसे डिज़ाइन करना आना चाहिए। बुटीक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अच्छा चलने वाला मार्केट देखकर वहां अपनी एक दुकान रेंट पर लेना चाहिए। एक ऐसी जगह का चयन करें जो काफ़ी ज़्यादा आसानी से पहुंचने लायक हो और लोग वहां जा सके। जो जगह आपने चुनी है वो किसी अच्छी जगह पर होनी चाहिए जिसके बारे में लोगों को ढूंढना ना पड़े। जिस दुकान पे आप अपने पैसे और वक्त लगाने जा रहे हैं उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा आकर्षक होनी चाहिए और पहली नज़र में ही ग्राहकों को अपनी ओर खींच ले। अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करें, अपने सामान का मूल्य सही से निर्धारण करें और ग्राहकों को अपनी ओर खींचने वाला दाम रखें। ग्राहकों की डिमांड पे खास ध्यान दें। बुटीक में सबसे पहले अपने मार्केट रिसर्च करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि नया ट्रेंड क्या चल रहा है, लोगों को किस तरह के कपड़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सा फैब्रिक चलन में है, इसके लिए भी बाजार जाकर रिसर्च करनी होगी। इसके बाद आपको अपने बुटीक के लिए कुछ मशीनें खरीदनी होंगी, जैसे कपड़े सिलने के आधुनिक मशीन, कढ़ाई करने की मशीन, इस्त्री, कैंची, इंच टेप, सुई धागे इत्यादि। फिर अपनी दुकान में फर्नीचर का काम करवा लें ताकि आप अपने कपड़े आदि को व्यवस्थित तरीके से रख सकें। कुछ फर्नीचर ग्राहकों के बैठने के लिए रखें ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको ड्रेसेस बनवाने के लिए अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदने होंगे। अगर आप शादी में पहनने के लिए कपड़े डिज़ाइन करते हैं तो आप उसी हिसाब से कपड़ा खरीदें। ध्यान रहे, शुरुआत में कपड़ा कम बजट में ही खरीदें, उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लाते रहें। वो बाज़ार ढूंढें जहां कपड़े थोक में सस्ती रेट में मिलती हों। आप जो भी फैशन के कपड़े तैयार करें उन सभी के कैटलॉग्स बनवा लें और बाज़ार से कैटलॉग्स भी खरीद कर रखें ताकि ग्राहक को डिज़ाइन पसंद करने में आसानी हो। सभी संसाधनों की व्यवस्था हो जाने के बाद आपको वर्कर्स की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ आपको हम यही सलाह देंगे कि हो सके तो शुरुआत में आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद लें। इसके बाद अगर आपका व्यवसाय अच्छा चलता है तो आप ज़रूरत के हिसाब से अपने वर्कर्स और संसाधनों में वृद्धि कर सकते हैं। बुटीक में ऑर्डर लेने का दिन निर्धारित करें। जब आपको ऑर्डर मिलता है और आपको लगता है कि आप ये ऑर्डर 2 दिन में पूरा कर लेंगे, तो ग्राहकों को 3 दिन का समय दें ताकि अगर कोई कमी रह जाए तो उसे 1 दिन में पूरा कर लें। प्राइस में पारदर्शिता बरतने की ज़रूरत है। कुछ भी हिडन चार्ज यानी छुपा हुआ खर्च ना रखें, मतलब ये कि जितना भी खर्चा उस ड्रेस पे होगा आप उसका सही अनुमान लगा कर ही पहले बता दें। ऐसा ना करें बाद में अगर ज़्यादा खर्च आया हो तो पैसा बढ़ाकर बता दिया, इससे ग्राहक का बजट बिगड़ेगा और आप पे भरोसा नहीं करेगा। अगर आपने शुरू से ही काम अच्छा करना शुरू किया है और आपके ग्राहक बार बार आपके पास ऑर्डर के लिए आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका काम लोगों को पसंद आ रहा है, तो आप बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करें और काम पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करें। सीधी सी बात है कि जब बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपको मुनाफा भी उतना ही अच्छा होगा। आप शुरू में 15 से 20 हज़ार महीने के आराम से कमा सकते हैं। आप अपनी कारीगरी से 50 रुपये का सामान लगाकर उस पर 200 से 300 रुपये कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 दिन में एक ड्रेस बनाई जिसमें आपका खर्च 1500 रुपये लगा है, लेकिन यदि आपकी कारीगरी आकर्षित करने वाली है तो आप उसे 3 से 4 हज़ार रुपये तक बेच सकते हैं। यही नहीं, यदि आप उसे ऑनलाइन बेचते हैं तो हो सकता है कि कोई आपको उसकी मुँह मांगी रकम भी दे दे। कहने का मतलब है कि शुरुआत में आप 15 से 20 हज़ार ही कमा पाएं, लेकिन ये जब चल जाएगा तब आप 40 से 50 हज़ार रुपये हर माह कमा सकते हैं। बुटीक के बिजनेस में अपना एक ब्रांड भी बनाना चाहिए, क्योंकि ब्रांडिंग एक अहम रोल निभाता है। शुरुआत के दिनों में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ग्राहक बनाने पर देना होगा और अपने ग्राहकों की रुचि को समझना होगा कि उनको किस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं और कितने महंगे कपड़े वो खरीद सकते हैं, कौन से डिज़ाइनर उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके बाद आप अपने बुटीक को ऑनलाइन और ऑफलाइन का ब्रांडिंग बनाएं। ऑफलाइन के लिए आपको अपनी दुकान के बारे में पोस्टर कार्ड वगैरह बनवाने होंगे और लोगों को बांटने होंगे। वहीं ऑनलाइन में आप अपनी एक वेबसाइट बनाकर अपने डिज़ाइन और कपड़ों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो फैशन मैगजीन होती हैं उनमें भी अपनी ऐड दे सकते हैं और वेबसाइट पर जाकर लोगों से फीडबैक ले सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अपने ग्राहकों से उसी के ज़रिए, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आप उपयोग करने का निर्णय करते हैं उस पर अच्छे से काम करें। आपका अच्छा काम ही समाज में आपकी पहचान बनाएगा। इसी काम के बलबूते आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। आगे चलकर आप इस क्षेत्र में और भी लोगों को जोड़ने का काम करें ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिले। तभी आप एक दिन गर्व से कह पाएंगे कि बुटीक उद्योग रोजगार में सहायक है। सचमुच बुटीक का व्यवसाय काफ़ी फलदायक है।
0: तो भाई, बहुत ही अच्छी जानकारी दी छवि कुमारी ने कि आप को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो काम बहुत सारे हैं, बस आपको लगन और उत्साह के साथ काम करना है। और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो साथियों, जो हम विशेषकर उन महिलाओं को भी कहेंगे कि जिन्हें लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो आपके अंदर जो भी हुनर है अपने हुनर को तराशिए और उसको आगे बढ़ाइए। और आकांक्षा, हम अपने साथियों को हमेशा अपने कार्यक्रम में नई जानकारी देना नहीं भूलते। तो भारत में नए संहिता के तहत 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 सरल कानूनों में समेकित किया गया है, तुम्हें पता है, और जिनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा शामिल है। भारत में इन श्रम सुधारों का उद्देश्य रोजगार को बहुत ज्यादा संरक्षित, पारदर्शी और राज्यों में एक समान बनाना है।
1: बिल्कुल, नए श्रम संहिता के तहत सबसे बड़े बदलाव में से एक वेतन की परिभाषा में परिवर्तन करना है। पहले कंपनियां मूल वेतन कम रख सकती थी और भत्तों पर अधिक पैसा खर्च कर सकती थी, लेकिन नए नियमों के तहत न्यूनतम मजदूरी सभी श्रमिकों पर लागू होगी। जिससे निर्धारित रोजगार सूचियों की पूर्व अवधारणा समाप्त हो जाएगी।
0: बिल्कुल, ये कितनी अच्छी बात है साथियों, भत्तों की सीमा तय की जाएगी ताकि छूट कुल वेतन के लगभग 50% से अधिक ना हो सके। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन के लिए जो नियम है ना, और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा और एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाएगा। और एक बार अधिसूचित होने के बाद राज्य इस सीमा से नीचे वेतन निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कुल मिला के श्रमिकों के लिए बहुत ही फायदा की चीज है।
1: बिल्कुल, सभी श्रम कानूनों में मजदूरी की एक समान और सख्त परिभाषा लागू की गई है। समय पर भुगतान के प्रावधान सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे।
0: बिल्कुल, क्योंकि समय पर भुगतान नहीं होता ये बहुत बड़ी और जटिल समस्या होती है श्रमिकों के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि उनके लिए समान वेतन और समय पे उन्हें जो भी मिलना है मिलेगा। और हम काम भी करते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं ताकि हमारा जीवन यापन अच्छे से हो। लेकिन साथियों, हमें भी कुछ नियमों को विशेष रूप से धारण करना होगा। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें समझाते हैं कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, जिसका तात्पर्य है कि आप अपनी आय के अनुसार ही खर्च करें। और यह आर्थिक अनुशासन का मूल मंत्र है जो भविष्य को सुरक्षित करने और कर्ज से बचने में मदद करता है।
1: अपनी आमदनी के अनुसार हम कुछ बेहतरीन और व्यवहारिक तरीके अपनाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं साथियों। जैसे अपनी आय को 3 हिस्से में बांटें, जैसे अपने बेसिक नीड्स जो हैं, अपनी ज़रूरत, और फिर तीसरा हिस्सा सेविंग्स का। इमरजेंसी फंड बनाएं, अपनी सेविंग्स को किसी सुरक्षित जगह रखें ताकि आपको जब मेडिकल इमरजेंसी हो तो, या फिर एजुकेशन के लिए चाहिए तो उस समय अचानक से ये आपका जो सेविंग्स है ना वो काम आ जाए, यानी कि आपको कर्ज लेना पड़े।
0: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चों को आगे पढ़ाना होता है और आपके पास इतने पैसे होने चाहिए साथियों कि आप पैसों की वजह से बच्चे की पढ़ाई ना रुके। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो इमरजेंसी फंड बना रहे हैं ना, तो उसमें कुछ पैसे हर महीने मैंडेटरी कर ले, एकदम सख्त से सख्त अपने अंदर में दिमाग में डाल ले कि नहीं हमें डालना है, मतलब डालना है। तो साथियों, कोई भी गैर जरूरी महंगी चीजें खरीदने से पहले सोचें कि क्या आपको सच में इसकी जरूरत है। बेवजह कहीं बाहर घूमने जाने की आवश्यकता नहीं है और दूसरे की नकल कभी ना करें, क्योंकि कई बार होता है कांक्षा कि हम जाते हैं, आज के दौर में EMI का बहुत ही आसान सा साधन हो गया है कि हम लोन लेके चीजों को खरीद लेते हैं। उस समय तो खरीद लेते हैं, लेकिन जब लोन चुकाने की नौबत आती है तो बहुत ही परेशानी होती है। तो साथियों, आपको ये सोचना कि इसकी जरूरत हमें कितनी है, जरूरत के हिसाब से ही आपको उस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। और कोशिश करें कि जब आपके पास उतने पैसे हैं तभी उस पर हाथ लगाए, ये नहीं कि बस लेना है तो ले लिए, दिखावे की तरफ बिल्कुल भी ना जाए। और दूसरे की नकल तो नहीं करनी चाहिए, जैसा हमने कहा, जैसे पड़ोसी ने कुछ फर्नीचर या अन्य कोई सामान खरीदा है तो हमें भी ले लेना, ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ हाँ, तो क्योंकि बेवजह जो लोन कटवाने की जब नौबत आती है ना, तो ये बहुत ही मुश्किल होती है। तो पूरा सार यही है कि हमें बचत की आदत डालनी है ना। तो अब ये भी देखो आकांक्षा कि ये तो हमने अपनी बातें बताई अपने श्रमिक साथियों को, और चलते चलते हम यही कहेंगे कि साथियों, गर्मी का मौसम है, फिर से आप अपना बहुत ध्यान रखें और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। और काम पे जब भी निकले ना तो पूरी बांह के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने और छाता लेकर निकले। हाँ हाँ, और पर्याप्त पानी अपने साथ जरूर रखें,
1: बोतल भी लेकर, पानी का बोतल।
0: बिल्कुल, और ये भी होता है कि जब आप घर आए तो तुरंत में फ्रिज का पानी ना पिए, एकदम बाथरूम में नहाने ना चले, थोड़ा देर अपने शरीर को आराम दें उसके बाद ही जाए। और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। तो आकांक्षा, क्या ख्याल है, हमने बातें तो बात कर ली,
1: और अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही है। हाँ हाँ, हमें अपने साथियों से विदा लेने का वक्त हो चला है।
0: तो चलो, इस वादे के साथ कि हम अपने साथियों से फिर से मुखातिब होंगे अपनी दोस्त आरती और
1: आकांक्षा के साथ,
0: दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे श्रमिक लोक, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। शाम के 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से देश की आबादी के ढांचे में हो रहे बदलावों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। गिरिडीह में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पानी, बिजली और शहर की सफाई का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। बकरीद त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इस सिलसिले में खूंटी नगर भवन में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में DC मोहम्मद जावेद हुसैन और SP ऋषभ गर्ग ने सभी समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। गुमला में आज उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन सौंपे। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तय नियमों के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खूंटी जिले की कर्रा थाना पुलिस ने 18 मई को पदमपुरा गांव में हेरमेन होरो को गोली मारकर घायल करने वाले दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के निशानदेही पर पदमपुर के जंगल से हथियार और कारतूस समेत कई चीजें बरामद की हैं। सरायकेला जिले के कपाली क्षेत्र अंतर्गत फॉरेस्ट एरिया में आज एक युवक का अधजला शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कर ली गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने आज अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। उपायुक्त ने जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की फरियाद सुनी और उनके निदान की पहल की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर जोहार।
0: ई कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो भाई का हालचाल है से बताओ।
1: एकदम नगदे है रावरे कर कहो कैसन हाल समाचार है।
0: देखो गर्मी तो इतना बढ़ जाए है नहीं कि सब जो है से मनुख तो मनुख पशु पक्षी जानवर ये सब एकदम तबाह है
1: एकदम। और ये सब कर कारण भी हमरे ही काले कि हमरे मन जे एखन महुआ कर बीछे समय में जंगल के भी आग लगाए देवल गिलक है तेले गाछ मन के भी खूब काटन है। तो का हुई है सब हुई
0: पहले देखो ऐसा मौसम तो नहीं रहत रहे खास करके जब चारों करे जे हरा भरा कुछ दिन पहले मने रहे हमरे कर जैसे याद हो गया बाप दादा मन कर समय में तो देखो इतना गर्मी भी नहीं लगत रहे
1: एकदम।
0: और रात के जो है हमरे गज कर नीचे जो है से खटिया लगा कर कितना बढ़िया सूतत रहे और हवा आवत रहे खूब निंदात रहे और आंबा कर मौसम में याद है
1: हाँ।
0: आंबा गिरत रहे और मैंने बहुत मैंने लालटेन लेके और बीच बीच के और खात भी रही
1: एकदम एकदम।
0: तो वो सब जो है से अब कहाँ देखे मिलत
1: एकदम नहीं दिसत है।
0: आप जैसे एगो बात और है कि जैसे मौसम जो है उतार चढ़ाव हुआ थे
1: एकदम
0: तो एखन कर मौसम का है सके बता दो।
1: एखन जे मौसम विभाग वट से भेटार सूचना कर मुताबिक आज कर जे तापमान रहे वो ई तरी रह कर अनुमान लगाल गलक है जेकर में झारखंड राज्य कर राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस सेल न्यूनतम और 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहे कर अनुमान लगाल गलक है और रामगढ़ कर अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और लोहरदगा कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और सिमडेगा कर 41 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और गुमला कर अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस।
0: तो जैसे हमरे अखन बात कर ली कि जैसे बढ़िया अंबामन गिरत रहे तो खात रही तो वो सब फलदार वृक्ष जो है से एखन तो बहुत कम है
1: एकदम।
0: तो आज हमरे विशेषज्ञ से जानकारी करब कि फलदार पौधा कर नर्सरी कातिर करब से कर बारे में और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर महबूब आलम और इनकर से बतियात हैं मनोज कुमार।
1: तो चलो सुनीला।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जानेंगे फलदार पौधों की नर्सरी के बारे में। इसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर महबूब आलम वैज्ञानिक उद्यान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची। आलम सर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं फलदार पौधों की नर्सरी के बारे में तो सबसे पहले हमारे किसान भाई को बताएं कि हम नर्सरी कैसे तैयार कर सकते हैं।
3: देखिए पहले नर्सरी तैयार करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि हम नर्सरी तैयार कौन से भाग से तैयार कर सकते हैं। पहले जो हम कर सकते हैं वो है लैंगिक जनन या फिर जिसको हम कह सकते हैं बीज से पौधा तैयार करना जिसमें एक मादा पौधा होता है एक नर पौधा होता है और जो बीज से पौधा तैयार होगा उसमें ये दोनों पौधा का गुण उसमें रहेगा। तो बीज से जो पौधा हमें मिलेगा वो पौधे में दोनों का गुणवत्ता हमें देखने को मिलेगा और अलैंगिक जनन या फिर कायिक जनन जिसमें बीज के अतिरिक्त अन्य किसी भागों से हम जनन कर सकते हैं प्रवर्धन कर सकते हैं जिसमें कोई शाखा हो सकता है तने या फिर मूल और पत्ता भी शामिल हो सकता है। उससे जो हमें पौधा मिलेगा उस पौधा पैतृक जो पौधा होगा उसके अनुरूप गुणवत्ता हमें मिलेगा देखने को मिलेगा। तो उदाहरण के तौर पे अगर हम बताएंगे कि हिमसागर का कोई आम होगा पौधा होगा हिमसागर का तो उसमें से अगर हम उसके शाखाओं से हम पौधा तैयार करते हैं तो उसमें जो गुणवत्ता देखने को मिलेगा वो हिमसागर का मिलेगा। लेकिन हम उसमें अगर बीज से पौधा तैयार करते हैं हो सकता है उसमें कोई गुणवत्ता पैतृक अनुरूप हो या फिर कोई नया गुणवत्ता उसमें दिखने को मिले जो खराब भी हो सकता है अच्छा भी हो सकता है। तो दोनों के दोनों जो पद्धति है उसमें हमें कुछ अच्छाई और बुराई देखने को मिलेगा। हमें तय करना है कि किसी में कौन से पौधों में क्या इस्तेमाल करना है।
2: तो दोनों में अलग अलग लाभ हैं क्या?
3: हाँ,
2: तो क्या क्या लाभ हैं दोनों को तैयार करने में?
3: तो जैसे देखिए, कुछ पौधा ऐसा है जिसमें हम अलैंगिक जनन या फिर कायिक जनन नहीं कर सकते, जैसे कि केला हो गया, पपीता, जिसमें ऐसा कोई पद्धति नहीं है जिसमें हम उसका तने से प्रवर्धन करें, तो उसमें हमें वही करना है, बीज से नहीं कर सकते। तो उसका कंद है, जैसे इसका केला का कंद हो गया, या फिर पपीता का बीज से हमें प्रवर्धन करना है। और जिसमें कोई कोई पौधा है जिसमें हमें बीज से करना है और हमें दूसरा पद्धति नहीं कर सकते, हम दूसरा पद्धति से नहीं कर सकते हैं।
2: तो जैसा कि आप दोनों पद्धति के बारे में बता दी, अब बताएं कि नर्सरी को हम कब कब तैयार कर सकते हैं?
3: नर्सरी तैयार करने का सबसे अच्छा समय होता है बारिश के टाइम में, जब नमी अच्छा हो और तापमान थोड़ा सा कम हो, वो अच्छा रहता है पौधा तैयार करने में। क्योंकि अगर बहुत सूखापन होता है तो ज़्यादातर पौधा जो तैयार करते हैं वो मर जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और जब पौधा हम जहाँ पे रखेंगे पैकेट में या नर्सरी बेड में, वो थोड़ा सा छायादार जगह में होना चाहिए, ताकि वो जो सूर्य किरण है वो खराब ना कर दे ज़्यादा सूखापन होने से, या फिर वहाँ पे ज़्यादा तापमान होने की वजह से।
2: तो जैसा कि आपने बताया कि अब कब कब कर सकते हैं, और इसे हम कहाँ तैयार कर सकते हैं नर्सरी के रूप में, अगर हम पौधा को तैयार करते हैं तो?
3: नर्सरी तैयार हम कहीं पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी थोड़ा सा छायादार जगह होगा वहाँ पे कर सकते हैं, खुली कोई भी मैदान में हम कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जगह में थोड़ा सा छाया रहे, और इसमें हम नेट हाउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी नर्सरी हैं

0: मिश्रण बना के उसको हम तैयार करके फिर उसमें पैकेट में हो या नर्सरी बेड में हो वो डाल के फिर पौधा को उसमें रख सकते हैं। हम उसके अतिरिक्त कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ स्फैग्नम मॉस है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो मीडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नमी बरकरार रहे और पौधा का जो मूल है अच्छे से बन के आए।
1: अगर हम सिंचाई की बात करें तो कितने दिनों के अंतराल पे हम लोग अगर सिंचाई भी कर सकते हैं तो?
0: नर्सरी में सिंचाई का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि उसमें पौधा बहुत छोटा होता है और उसमें पानी की बहुत ज़रूरत है, तो हर एक दो दिन या तीन दिन अंतर अंतर हमें पानी या सिंचाई देने की आवश्यकता है।
1: मतलब उससे जो तैयार होगा पौधा वो मतलब अच्छा होगा,
0: अच्छा होगा और उसमें मूल भी अच्छा बन के आएगा।
1: आलम जी, एक और चीज बताएं कि कौन कौन से फलदार पौधों की हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं?
0: कोई भी फलदार पौधों की नर्सरी हम तैयार कर सकते हैं, खास करके यहाँ के जलवायु अनुकूल कोई भी फल हो, ये लीची हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, कटहल, ये सब हम तैयार कर सकते हैं। लेकिन कौन से भाग से हम तैयार करेंगे, उस हिसाब से कहाँ पे करेंगे और कैसे करेंगे, इसका थोड़ा सा हम बात करते हैं। जैसे कि हम कलम से एक पौधा तैयार करते हैं, तो कलम से जब तैयार करेंगे तो पौधा के शाखा को हम अलग करके, पौधा से अलग करके फिर हम उसको मीडिया में रखते हैं, मिट्टी में या मिट्टी वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण पे रखते हैं, तो उसमें मूल तैयार होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं बडिंग या चश्मा, मतलब उसमें क्या होता है, दो पौधा का मिश्रण होता है, एक पौधा को हम जो सायन बोलते हैं और दूसरा होता है रूटस्टॉक जिसमें मूल रहता है। तो सायन को उसमें एक बड रहता है, उस बड को हम रूटस्टॉक के ऊपर बांध देते हैं। तो इस तरीके से एक पौधा तैयार हो रहा है दो पौधा से, तो इसमें ग्राफ्टिंग और बडिंग दोनों आते हैं, जिसमें हम आम में ग्राफ्टिंग करते हैं, एप्पल और जो नाशपाती हो गया इसमें बडिंग करते हैं, तो ऐसे ऐसे करके कटिंग हम जैसे नींबू में कटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे विभिन्न जो फल होता है उसमें विभिन्न तरीके के जो प्रवर्धन प्रक्रिया है वो हम कर सकते हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई लोग सब्जियों की फसल तैयार करने के लिए जो हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं और ये हम लोग फलदार वृक्ष के लिए तैयार कर रहे हैं, तो दोनों में क्या कुछ अंतर है कि दोनों का प्रोसेस वगैरह सब कुछ सेम है? वो
0: प्रोसेस सेम है, जो सब्जियां होता है वो ज़्यादातर बीज से बनते हैं और जो फलदार वृक्ष है उसमें बीज से भी बना सकते हैं और हम बीज के अतिरिक्त अन्य भाग से भी बना सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जानना जरूरी है कि बीज का पौधा, जैसे कि हम पहले बोले कि उसमें पैतृक जो अनुरूप जो गुणवत्ता है वो दोनों मादा और नर दोनों का गुणवत्ता उसमें रहेगा बीज से जो बनाते हैं, और जो हम कटिंग से, कलम से, ग्राफ्टिंग से या बडिंग से बनाते हैं उसमें पैतृक अनुरूप जो गुणवत्ता होगा जिससे बना रहे उसका गुणवत्ता हमें वहां पर मिलेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर कमर्शियल जो नर्सरी होता है, फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं, वो अलैंगिक जनन या फिर कायिक जनन प्रक्रिया फॉलो करते हैं, जिसमें जो वैरायटी जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है उसका पौधा तैयार करते हैं, क्योंकि उसका गुणवत्ता, उसका क्वालिटी, उसका जो पेड़ पौधा का जो वृद्धि सब अनुरूप रहेगा।
1: तो जितने सारे हम नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, तो जैसे कटिंग के बारे में बात की, ग्राफ्टिंग के बारे में बात की, तो जड़ का हिस्सा कौन सा सबसे अच्छा सुटेबल होता है, कौन सा पौधा का?
0: जड़ सभी पौधा का सुटेबल होता है, लेकिन जो प्रोसेस जैसे कि कटिंग और लेयरिंग हम कर रहे हैं तो उसमें एक ही पौधा का इस्तेमाल होता है, जिससे शाखाएं अलग करके हम मीडिया में रख देते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग और बडिंग में क्या हो रहा है, दो पौधा का मिश्रण हो रहा है, एक में रूटस्टॉक है और एक सायन है, तो रूटस्टॉक का मूल रहता है और सायन का बड रहता है, तो मूल जिसका रहता है वो हम लेयरिंग या कटिंग से कर सकते हैं या फिर बीज से भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन बीज से अगर वो रूटस्टॉक बनाते हैं तो उसका जो अपना पानी या फिर जो खाद लेने का क्षमता है वो बढ़ जाता है और अधिक वृद्धि या फलन उसमें देखने को मिलता है।
1: अंत में हमारे किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए?
0: फलदार पौधों की नर्सरी तैयार करके

0: बहुत ही एक लाभजनक एक व्यावसायिक कृषि पद्धति अपना सकते हैं हर किसान भाई। इसको करके बहुत सी डिमांड जहाँ पे है, जो वैरायटी का डिमांड है, उस हिसाब से विभिन्न जगह में केवीके में या फिर उद्यान विभाग विभिन्न कृषि विषयक इंस्टीट्यूट में इसका ट्रेनिंग होता है, वो सीख करके अपना पौधा तैयार कर सकते हैं और इसको आगे ले जाकर वो एक नर्सरी भी अच्छे से तैयार कर सकता है।
1: तो डॉक्टर महबूब आलम जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी फलदार पौधों की नर्सरी के बारे में, तो आपका इस कार्यक्रम में आया बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद
1: किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, दूसरे दिन फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक जोहार, नमस्कार।
2: बड़ा बढ़िया जानकारी भेटालक फलदार पौधा के नर्सरी के बारे में बतात रहे डॉक्टर महबूब आलम और इनकर से बतियात रहे मनोज कुमार।
3: हाँ, तो अब हमारे मन रीज रंग बटे जाइल और पंच परगनिया लोकगीत सुभाष कोयरी और संगीम उनकर गावल के सुनील।

0: बड़ा सुंदर गीत रहे, कृषि विकास गीत एखन हमरे मन सुनली, सुभाष कोइरी और संगी मनकर गावल रही।
1: तो चलो एगो और एगो जानकारी कर ले विला, नई उम्र कर नई फसल में एगो मधुपालक किसान से भेंट, और किसान हैं संतर सिंह और इनकर से गोठिया हैं हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
0: किसान भाई बहन मने खेती बाड़ी कर काम तो रिन करबे करील, संगे संगे गाय भैंस मुर्गी बतख मछरी ये सब कर भी पालन रविन करील और अपन आमदनी के बढ़ावी ल। लेकिन इकरे संगे एगो आमदनी बढ़ावे कर बहुत बढ़िया जरिया है मधुपालन। मधु खाएक में जितना बढ़िया लागेला उतने उकर में बहुत गुण भी पावल जाएला, जे सेहत कर खातिर बहुते लाभकारी होएला। मधुपालन करके रावण खेती बाड़ी कर संगे संगे ऊपरी आमदनी कर सकील। एह मधुमक्खी पालन कर बारे में बतावे खातिर आज हमारे स्टूडियो में एगो प्रगतिशील किसान है संतर सिंह। संतर भाई रौर के जोहार कर थी।
2: जोहार भाई।
0: रौरे रहेक वाला कहाँ कर है?
2: भाई मैं रहेक वाला ग्राम लोखमहन कर है को, बिलिंगमीरा पंचायत थाना पालकोट गुमला झारखंड कर, और काफी दिन से मैं मधुमक्खी पालन करो ना।
0: मधुमक्खी पालन रौरे कितना दिन से कर थे?
2: लगभग 15 साल से करते आओ थो।
0: 15 साल से रौरे मधुमक्खी के पालन कर थे है ने?
2: हाँ।
0: तो ये बताओ कि रौरे कहीं से प्रशिक्षण ले रही कि कैसे कैसे सीख ली?
2: शुरुआत मैं प्रशिक्षण नहीं ले रहूं, अपन निजी अनुभवी ज्ञान से पालन करत रहूं, लेकिन जे कृषि विज्ञान केंद्र है गुमला उस संस्था के माध्यम से जानकारी होलक, और 2018-19 में प्रशिक्षण लेकर हमरे मन के मौका मिलत, तो उस प्रशिक्षण में हमें भाग ले करके फिर मधुमक्खी पालन के डेवलपमेंट करे के लेकिन और जानकारी अधिक होलक हमरे के।
0: मधुमक्खी पालन के जैसे शुरुआत रौरे कैसे कर ली?
2: मधुमक्खी पालन कर शुरुआत चलते फिरते हमरे मन के मधुमक्खी मिल जात रहे जंगल में। हमरे मन विचार कर ली कि इस मधु के हमरे अपन पालतू बनाती तो कैसे होतक। इस विचार के हमरे मन मंथन कर ली और मधु कर झुंड के लाने कर प्रयास कर ली, और लगभग पहले हमरे मन के मौन पेटी कर ज्ञान नहीं रहे तो गगरी में पाले शुरू कर ली, लेकिन उकर में हमरे मन के कमी ये होलक कि छत्ता बिगड़ाए पड़त रहे, और एक वर्ष में लगभग दो बार निष्कासित करे होत रहे। उकर बाद में फिर हमरे और डेवलपमेंट कर मुद्दा में आली तो बक्सा कर निर्माण कर ली मौन पेटी कर, उकर में फ्रेम सजाल गेलक और छत्ता के फ्रेम में सजाई करके और मौन पेटी में उके डाल के फिर मधुमक्खी के पालन करे शुरू कर ली, तो उकर में छत्ता बर्बाद नहीं होला।
0: जंगल झाड़ लता मन में जो मधु रहे ला,
2: हाँ हाँ,
0: इस सब के रवरे लाइन के बक्सा में रख ली है नहीं?
2: हाँ हाँ।
0: तो एखन रवरे कितना बक्सा है?
2: एखन घटते बढ़ते रहेला, कभी 20-22 कर संख्या में हो जाएला मोन पेटी, और कभी बरसात कर मौसम में कभी जे के मक्खी मर जाए ना या तो भाग जाए ना, तो इस वजह से अभी वर्तमान में करीब 20-25 पेटी हमर मनक समूह में आए।
0: मधुमक्खी कर जैसे बक्सा कर बात कर ली, कैसे कैसे बक्सा लान ली और कैसे कैसे उकर प्रबंधन कर ली से कर बात?
2: पहले मौन पेटी कर ज्यादा ज्ञान नहीं रहे, लेकिन प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र गुमला ट्रेनिंग दिलक, तो उस ट्रेनिंग कर दौरान में हमरे मन के 15-20 भाई मन ट्रेनिंग कर ली, उकर में से फर्स्ट पीरियड में हमरे मन के 4-4 मौन पेटी दिल, तो उसी आधार पर हमरे मन मौन पेटी कर निर्माण कर ली, और पावल कर बाद में फिर उसे क्वालिटी कर बनवाई के और उकरे में पालन कर चालू कर ली। मौन पेटी के बनाए के वास्ते पटरा फाड़ के लकड़ी के चिरवाई के पटरा बनाई के फिर उकर जे साइज बाई साइज मौन पेटी कर तैयार करल गेलक, उकर बाद उके पालक चालू कर ली।
0: बक्सा में जैसे रवरे मधुमक्खी पालत थी, तो ये बताओ कि मधुमक्खी कर कई गो किस्म हुए?
2: मधुमक्खी कर जो प्रजाति है मुख्य रूप से 4 प्रकार कर मधुमक्खी पावल जा है, लेकिन हमर मनकर इस भारतीय जो मधुमक्खी है जे 3 प्रकार कर मधुमक्खी है उके पालतू नहीं बनाए बनेला, जेके भौरा कहिला उके पालतू नहीं बनाई सकीला, उकर बाद में और एक दो मधुमक्खी है उके भी पालतू नहीं बनाई जा सकेल, लेकिन खैरा मधुमक्खी है जे गुफा कर अंदर में माड़ा कर अंदर में या तो ढोढ़री में रहेला, वो मधुमक्खी के पालतू बनाए के लिए आसानी से बनेल।
0: मधुमक्खी कर परिवार कर रचना कर बारे में कुछ बता सकी ल?
2: मधुमक्खी कर रचना है जे रानी मधुमक्खी है ला बड़ा संख्या जे एक परिवार में एक ही मधुमक्खी कर रानी रहेला और उकर साथ में सैनिक मधुमक्खी रहेला जे अपन समूह के देख रेख के लिए दरवाजा पास रहेना कोई क्षति करे के योग्य कोई जंतु है उकर अटैक करेल। और तीसरा है श्रमिक मधुमक्खी जे फूल से पराग रस लाने में वो काम करेला।
0: अब ये बताओ कि खास समय में इकर पालन करे खवेला कि बारह मास?
2: वैसे बारह मास मधुमक्खी के पालन कर सकेला लेकिन मुख्यतः इकर समय जो है ये समय है फरवरी मार्च अप्रैल इस समय में बंटवारा कर सीजन रहेला और बंटवारा कर सीजन में अपने रानी मधुमक्खी फिर रानी कर निर्माण करेल और वो अपने परिवार के खुद के विभाजन करे के लिए सक्षम होला। और ऐसे तो हर समय मधुमक्खी पालन कर सकेला पर बंटवारा कर सीजन केवल 2 महीना ही होला मई और जून कर।
0: बंटवारा मतलब कि वो मैंने अपन दल बनाए के
2: दल निकल जाए ना? हाँ निकल जाए ना।
0: तो जैसे एक बक्सा में 2 रानी नहीं रह चाहिए है
2: ना? नहीं
0: अगर 2 हो गए
2: तो अलग हो जाए
0: दल बनाए के
2: दल बनाई के निकल जाए।
0: बरसात कर समय में मधु कर पालन कैसे करे चाहिए?
2: बरसात कर समय में मधु कर पालन विशेष खास करके 3 महीना बहुत गहन उकर लगिन साधन जुटाए पड़ेला। बरसात कर सीजन है पानी जब पड़ेला तो मधुमक्खी कभी नहीं निकलेन निकलने कर कारण यह है कि उकर लेकिन खाए कर जोगाड़ करे पड़ेला। तो उकर खाए कर जोगाड़ यह है कि चीनी कर इस्तेमाल करल जाला चीनी कर चाशनी बनाई के ठंडा करके और कुछ गुनगुना अवस्था में मौन पेटी में ही छत्ता के ऊपर डाल देवे खोल तो उकरे से उमन कर भोरन पोषण हैला उकर से उमन के आहार प्राप्त होला।
0: मधुमक्खी जो है जो मधु लाने ना हाँ। इमन तो कोई खास फूल ही सबसे लाने ना रस खातिर कौन कौन सा फूल बढ़िया होवेला?
2: एकर में हर महीना अलग अलग फूल कर इस्तेमाल होला फूल फूलेला लेकिन विशेष करके जे समय है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई इस मई कर महीना में लगभग लगभग जो है करंज कर फूल एक साथ फूलेला उकर साथ साथ में लाह रस भी आई जाएल उकर साथ साथ में कुसुम कर फूल भी आई जाएला तो ये आसान से अधिक मात्रा में मधुमक्खी शहद के लाइन के इकट्ठा करें।
0: मधुमक्खी में कुछ रोगमन भी लागेल का?
2: हाँ रोगमन लागेल।
0: का रोग लागेल और इकर उपचार कैसे करे चाहिए सके किसान भाई बहन उनके बताए?
2: इकर में कुछ ऐसा समय आवेल जे बरसाती समय पार होला उकर बाद में ठंडक समय आवेल उस समय में जलिया वाला कीड़ा हो जाएला छत्ता के बर्बाद करेल तो उस समय कर अवस्था में हमरे मन जो उपयोग करेल छत्ता के निष्कासित करके या तो फ्रेम बदले पड़ेल और नहीं तो एक कीटाणु मार दवाई आवेला जो सहज रूप में मिलेल कीटाणु मार दवाई के देल जाएला है ब्लीचिंग पाउडर कर भी इस्तेमाल कर सकीला उके ब्लीचिंग पाउडर के चीनी कर चाशनी कर रूप में निर्माण करके और ब्लीचिंग पाउडर के कुछ घोल के और उकर साथ में मिलाई के और मधुमक्खी के देल कर बाद में फिर जे कीड़ा कर संख्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएला।
0: आखिरी में रहे किसान भाई बहन उनके कुछ आपंदन से कहे चाह मधुपालन कर बारे में?
2: मधुमक्खी पालन कर बारे में मैं किसान भाई के है कहबू कि जे खैरा मधुमक्खी पालन करे के लेकिन जे जंगल झाड़ से जहाँ कहीं भी मिली उके सहज रूप से लानबे और अपन मौन पेटी कर व्यवस्था अगर नहीं है तो घाड़ा में भी पाल के अपन इस्तेमाल करबे लेकिन मौन पेटी इस्तेमाल करे के लेकिन हमर मन से संपर्क करबे तो दिलवा कर प्रयास करब।
0: किसान भाई बहन मने एखन रवन सुन ली मधुमक्खी पालन कर बारे में संतर सिंह जी से मधुमक्खी कर पालन करू खेती बाड़ी कर संगे संगे अपन अतिरिक्त आमदनी के बढ़ाऊ। संतर भाई किसान भाई बहन मन के मधुमक्खी पालन कर बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दिली इकर खातिर और के बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
2: जोहार भाई जोहार।
1: तो एखन हमारे मन सुनत रही मधुपालक किसान से भेंट और किसान रहे संतर से और इनकर से गोठिया रहे हमरे कर संगी कृष्ण जीवन।
0: तो भाई इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक। ई कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।

0: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के एक बार फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर जोहार। और कहो का हाल समाचार है?
0: हाल समाचार तो बढ़िया है और आसरा करे ला कि हमार सुनोया भाई बहन बहन मन भी बढ़िया से हुए। काले कि एखन तनिक ना जे ये बहुत ज़्यादा जे गर्मी पड़त है, लू चलत है, कभी हवा भी चलत है, कभी तूफान भी आवत है और कभी ठंडा और गर्म जो होत है ना, तो इकर में तनिक ना बाइच के रहे है, लू से भी बाचे है और कोशिश करे है कि कहीं भी अगर जाओ तो भरपूर कपड़ा पहन के जाओ, संगे जैसे पानी कर बोतल मन के ले लो है ना, और शरीर में पानी कर कमी होवे देवे के नखे, खाली पेट रहे के नखे और कोशिश करो कि अगर निकलत ही अगर बहुत जरूरी काम है तबे घर से निकलो।
1: एकदम नगद बात के कह ली। और अगर रावरे मोटरसाइकिल में ही गाड़ी में चलत थी तो हेलमेट जरूर पहने के चाहिए और संगे जो बैठ हैं उखो हेलमेट पहने के चाहिए।
0: अब पूरा जैसे मुँह माने कान के लुगा से ढाँप लो और गला के भी लुगा से ढाँप लो ताकि लू नहीं लगे।
1: एकदम नगद बात के कह ली। तो हमारे जे गांव घर में रहिला तो हमारे के बहुत जरूरत पड़ेला कखनो कोनो बड़ बीमारी हो जाएला चाहे खेती कर नुकसान हो जाएला, तो इकर में हमारे के एगो जे स्वयं सहायता समूह होला एनजीओ होला उकर माध्यम से हमारे के मदद मिल सकेला और मिलेला भी। काले कि इकर में जे समूह बनाए ना इकर में 10 से 20
0: महिला
1: मन रहे ना, तले उमने संगठन बनाए कि उमने नियम से मतलब बैठक कराए ना, फिर तनी मनी राशि के बचाए ना, तो इकर में उनके ऋण मिलेला, मतलब कोनो ऋण दे के उनके सही से पैसा भी मिलेला और इके समय से वापस भी करे के होला। एकर में जैसे कुआं भी मिल जाएला, फिर सोलर जे लागेला पैलेट उ मने भी स्वयं सहायता समूह से मिलेला।
0: और एखन महिला मने के तो देखिल गाँव गाँव में बहुते बढ़िया से और एकजुट हो के जे है से स्वयं सहायता समूह के चलावत हैं।

0: अपन जे है से मने जे तत्काल जे जितना जरूरत है उतना पैसा निकला लें फिर जमा कर लें, बहुत बढ़िया चीज है ना। इसलिए स्वयं सहायता समूह से जुड़े के चाहिए और जैसे अपन बचत करे के चाहिए और अपन काम के भी जैसे बनावे के चाहिए।
1: तो आज पसंद कर लोकगीत भी है, मंगल के दिन है नहीं
0: तो अब पसंद कर लोकगीत में सबसे पहले हमारे नागपुरी लोकगीत से कार्यक्रम के शुरू करा थी और इके गावत हैं सरिता देवी और संगीमन।
1: तो चलो सुनी ला।

0: भाकपा माओवादी के भाइयों और बहनों, सरकार आपके पुनर्वास के लिए लगातार प्रयासरत है। अतः आपसे आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों का आकलन करते हुए सही निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौट आइए। भयमुक्त जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ लीजिए। साथियों, समय रहते विचार कीजिए और मुख्यधारा में लौट आइए। साथियों, आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जल, जंगल, जमीन की रक्षा मात्र हिंसा से ही हो सकती है? इतने सालों की प्रयास के बाद क्या हमारा आदिवासी समाज सुरक्षित हो पाया? आज सैकड़ों पूर्व माओवादी साथी हिंसा को पीछे छोड़कर समाज के बीच एक अत्यंत गरिमापूर्ण और कुशल जीवन बिता रहे हैं। प्रशासन आपकी सुरक्षा और गोपनीयता की 100% गारंटी देता है। हिंसा और कठिनाइयों का जीवन छोड़े और अपनों के पास लौट आए। मुख्यधारा में आने के उपरांत आपको पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको जेल जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी और आपकी सहायता की जाएगी। मुख्यधारा में आने के बाद आपको सारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्वरोजगार के लिए भी आपको उचित अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुनर्वास हेतु कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 9863475217। नंबर एक बार फिर नोट करें 9863475217।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तो आज पसंद कर लोकगीत हके तो और एगो रिज रंग करब का
7: एकदम।
6: तो कुरमारी लोकगीत में अजीत कुमार महतो और संगीतकार गावल, चलो सुनीला।

आप सुन रहे थे हमारी दुनिया कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये रांची केंद्र है। शाम के 6:55 और 15 सेकंड हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए की बड़ी पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे पर खतरों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की महत्वपूर्ण बैठक। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं का भी लिया जायजा। राज्य के 11 जिलों में कल तेज आंधी और बारिश, वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट। 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना। और राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 हॉकी टीमें एशिया कप के लिए जापान रवाना। महिला टीम में 6 और पुरुष टीम में राज्य के 2 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से देश की आबादी के ढांचे में हो रहे बदलावों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इस समिति में जनगणना आयुक्त सहित कई पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और अर्थशास्त्री शामिल किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अप्राकृतिक रूप से बदलती आबादी देश की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए एक गंभीर चुनौती है। गिरिडीह में आज जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पानी, बिजली और शहर की सफाई का मुद्दा मुख्य रूप से छाया रहा। केंद्रीय मंत्री ने जिले में चल रही विकास योजनाओं में तेजी लाने और अधूरी सड़कों के मामले की जांच करने के निर्देश दिए।
2: लगभग 7-8 सड़क और ये कई बार ये चर्चा हुई है और इसके तहत कमेटी इस बार जैसे डीसी को कहा गया है कि इसकी जितना जल्द हो सके जांच करके आप भेजें रिपोर्ट। जो काम नहीं कर रही है वैसे जो कॉन्ट्रैक्टर है निश्चित रूप से उसे ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए और वैसे लोगों को आइंदा से भविष्य में काम न मिले इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
1: बैठक के बाद राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि विकास कार्यों की कमियों को जल्द दूर किया जाएगा।
3: तमाम योजनाओं की समीक्षा की गई, उस योजनाओं की प्रगति संतोषप्रद है। तमाम विभागों को निर्देशित किया गया और मैं यह मानता हूं कि इस बैठक के फलाफल जिले के लिए बेहतर है।
1: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉरपोरेशन में नियमों को ताक पर रखकर चहेते अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया गया है। उन्होंने वर्ष 2026 में हुए 80 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस टेंडर में भी भारी गड़बड़ी का दावा किया है। श्री मरांडी ने ट्रेजरी घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि जांच के बावजूद बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है।
4: राज्य में जो बैठे हुए सरकार है काम नहीं करती बल्कि सरकार कमाने में लगी। आप सबके ध्यान में है ट्रेजरी घोटाला जो लगातार जिसके चलते पैसे की जो निकासी हो रही है। सरकार जांच करा रही है, फलाफल क्या निकलेगा नहीं पता है क्योंकि उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से। क्योंकि ये जो वर्तमान सरकार जब वही सारे पदाधिकारी पदस्थापित रहेंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर करप्शन कैसे समाप्त।
1: रांची में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। संगठन ने झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल में फैले भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि काउंसिल में छात्रों से नामांकन और परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है।
5: फार्मेसी एक्ट अगर 2015 से देश भर में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से लागू हुआ है तो आखिर झारखंड में वो एक्ट क्यों नहीं लागू, इसका भी जवाब राज्य सरकार को देना चाहिए। और जिस प्रकार से झारखंड में जो चल रहा है, झारखंडी बच्चों के जो सपने बेचने का काम कर रहे हैं, हम उनकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और नए वर्ष की 2026-27 की कार्य योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने और सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की संख्या बढ़ाकर 5000 करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन योजनाओं का लाभ समय पर जरूरतमंदों तक पहुँचाया जाए। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के तहत चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड की औलंजा पंचायत में इस योजना ने गरीब महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई है।
6: हमको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, उसमें हमको गैस सिलेंडर मिला है, चूल्हा भी मिला है, उस पर हम लोग खाना बनाते हैं। और अब है कि गैस पे खाना बनाते हैं तो हम लोग का समय भी बचता है, बच्चे लोग को टाइम पर हम लोग कुछ भी बना के दे सकते हैं, लंच वगैरह भी देते हैं।
7: गैस अब मिल गया तो उससे समय भी बचता है, खाना जल्दी बनता है, बच्चा सबको समय से खाना दे पाते हैं।
8: जाते थे पहले लकड़ी झुड़ी तोड़ के आना पड़ता था, अब गैस मिल गया तो बहुत ही आराम है खाना बनाने में, बना के आराम से खा सकते हैं, खा रहे हैं।
1: इधर रांची में भी इस योजना के बाद महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे की परेशानियों से बड़ी राहत मिली है। अब गैस पर खाना बनाने से महिलाओं का समय आधा से भी कम लग रहा है। इस बचे हुए समय का उपयोग महिलाएं अन्य कार्यों और स्वरोजगार में कर रही हैं।
9: पारो देवी और गैस भी उठाते हैं और सरकार घर दिया है, राशन देता है, सब सुविधा है। हम गैस उठाते हैं हर महीना, गैस पर खाना उना बनाते हैं, लकड़ी में नहीं बनाते हैं, जब से गैस मिला है गैसे बनाते हैं।
1: खूंटी पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एसपी ऋषभ गर्ग ने कुल 56 लोगों को उनके गुम हुए मोबाइल फोन सौंपे। जन शिकायत सेल और टेक्निकल टीम की मदद से इन फोनों को खोजा गया था। बकरीद त्योहार को शांति और भाईचारे के साथ मनाने के लिए राज्य भर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खूंटी नगर भवन में आयोजित जिला शांति समिति की बैठक में उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन और एसपी ऋषभ गर्ग ने सभी समुदायों से संवाद किया। प्रशासन ने मस्जिदों में बिजली, पानी और साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर पाकुड़ में उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। और अब मौसम का हाल। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण राज्य के कई जिलों में बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग ने कल राज्य के 11 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 महिला और पुरुष हॉकी टीमें एशिया कप 2026 में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हो गई है। जापान में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट में भारतीय टीमें खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। आपको बता दें कि भारतीय महिला टीम में झारखंड की 6 प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों और पुरुष टीम में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ और आबादी में बदलाव की जांच के लिए की बड़ी पहल। राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे पर खतरों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। गिरिडीह में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई दिशा की महत्वपूर्ण बैठक, विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने की शिक्षा विभाग की समीक्षा, सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस की संख्या बढ़ाने के निर्देश। महिला और बाल विकास विभाग की योजनाओं का भी लिया जायजा। राज्य के 11 जिलों में कल तेज आंधी और बारिश वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी, 28 मई से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। और राज्य के 8 खिलाड़ियों के साथ भारतीय अंडर 18 हॉकी टीमें एशिया कप के लिए जापान रवाना, महिला टीम में 6 और पुरुष टीम में राज्य के 2 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित

0: रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन ने बीते दिनों रामगढ़ व्यवहार न्यायालय में शिरकत किया। न्यायालय परिसर पहुंचने पर जिला प्रशासन एवं न्यायालय परिवार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया तथा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। मौके पर जोनल जज रामगढ़ सह एडमिनिस्ट्रेटिव जज रामगढ़ न्यायाधीश दीपक रोशन, न्यायाधीश हाईकोर्ट झारखंड ने बताया कि वनरेबल विटनेस जो होते हैं वैसे केस जिनको सोसाइटी के सामने लाने से मना किया जाता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही आदेश निर्गत किए थे।
2: यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज का अभाव था जो वल्नरेबल विटनेस जो होते हैं, ये उस तरह के विटनेस होते हैं एक जो सोसाइटी के सामने जिसको लाने से मना किया गया, जैसे पॉक्सो एक्ट के विक्टिम्स या 376 जो ओरिजिनल था उसके विक्टिम्स, जिससे जिस जो अगर आ जाएंगे तो हमारा सोसाइटी अभी भी वो नहीं है जो कि ऊपर माने बहुत ज़्यादा ओपन है, वो अभी भी विक्टिम को ही एक्यूज समझता है।
1: न्यायालय में पेपरलेस वर्क एवं लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन जैसे प्रश्नों के जवाब में न्यायाधीश ने बताया कि पेपरलेस का काम अब न्यायालय में शुरू हो गया है। प्रत्येक जज अपने अपने कामों को अगर करे तो लंबित मामले घटेंगे।
2: पेपरलेस काम तो धीरे धीरे अब हो ही रहा है, शुरू हो गया है। लंबित मामले में मैं यही कहना चाहूंगा, हर एक जज अपना अपना काम करे तो लंबित मामले थोड़े घटेंगे। और दूसरा, केस तो घर से शुरू हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का केस मैट्रिमोनियल 17% है अभी पूरे हिंदुस्तान में, उसका सरकार भी कोई दोषी नहीं है और जजेस भी दोषी नहीं है।
1: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर रामगढ़ के सदर अस्पताल में पिछले दिनों रामगढ़ विधायक ममता देवी एवं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा नर्सों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर रामगढ़ सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हमारे रामगढ़ जिले में प्रतिमा 300 से ज्यादा सीजेरियन ऑपरेशन होते रहते हैं, जिनका स्क्रीनिंग फर्स्ट हैंड में यह हमारी नर्सें ही करती हैं। हमारे अस्पताल को जितने भी पुरस्कार मिलते हैं उसमें इन नर्सों का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
3: विश्व नर्सिंग दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, स्वास्थ्य विभाग अति संवेदना के साथ लोगों से बातचीत करते हुए उनकी तकलीफ में उनकी बातों को सुनना और सेवा देना, तो संवेदना के साथ सेवा देने वाले इस विभाग में जो कुछ भी हमने उपलब्धियां की, उस सेवा में जो सफलताएं मिली उसकी रीढ़, उसकी बुनियाद हमारी बहनें जो ANM है, GNM है, स्टाफ नर्स हैं, ये लोग हैं।
1: मौके पर पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित विभिन्न अपराधों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूरे जिले में प्रहरी पहल की शुरुआत की गई है।
4: इस पहल के तीन हिस्सा हैं, पैदल गश्ती, अड्डेबाजी के विरुद्ध अभियान एवं एंटी क्राइम चेकिंग।
1: रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत के ताबड़तोड़ कार्रवाई एवं विशेष पहल अपराध नियंत्रण में सहायक सिद्ध हुआ है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
0: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: झाड़ी आदिवासी अखड़ा खड़िया लंगोंडोर किते ग्लोरिया बा
1: डोराए मोलम डुंग डुंग या
0: जोहार
1: जोहार।
0: मूसा मांग तो एक के अम्पा खड़िया लंगोंडोर ना बारु नेटा मूसा हाय
1: हाँ
0: नीति
1: हाँ हाँ
0: ला मुसगा मोध कायम है के ओंडोर एनिंग हो या व्यवसाय ठाड़ो ते सोल

0: पैनल लगाना या फायदा ही यही हो जे।
1: अच्छा दागे से उतने
0: अच्छा सोलर पैनल लगाना से ई फायदा होई ता जे को आनिंग ओडो की जो कोंग तेनिंग टोली पौधा ते सोलर लगाना ई फायदा होई ता याने कि बिजली ते जोड़े ना से जुगाए खर्चा होई ता और सोलर पैनल लगाना से कम खर्चा होई ता है नी। लाताम गा ने डाते सोलर पैनल लगाना से अच्छा होई ता नी। बिजली खर्चा जो बनचे ता महीना महीना के चिया तेरम जुगाए जुगाए बिल डकोता
1: तामा सोल इकनो स्मार्ट मीटर लगाए उसमें बिजली लाकर जुगाएगा बिल डलता है नी।
0: ला जहां वो ते जो आनिंग ते हो ओते या तो जहां खेती बाड़ी कराए ते इनिंग हो खोते आनिंग ते अच्छा वो लगाए ना से फायदा यही। इनानो बिजली या कटौती होते बिल जुगाए डकोता और सोलर पैनल गिरिंग ओला को बेस्ट होइता ओ ना
1: सो तो
0: इघा गिरिंग ते होगाएगा पैनल हिनते होकड़ा शक्ति मतलब ऊर्जा बढ़ेता। होकड़ा खर्चा जो कम होइता है नहीं और बिजली ते को जुगाए खर्चा होइता ला बिल जुगाए डकोता ला के चिया होते जुगाए तरना होइता ला आनी या पर्यावरण काम होइता थोड़े होइ गड़ता मतलब बेड़ो अच्छा से गिरिंग ते ला होकड़ा ऊर्जा अच्छा होइता और ला बरसात या तो गिरिंग छकाते इघा गिरिंग ते होगा सोलर पैनल मतलब ऊर्जा जुगाई होइता है नीति
1: ला ई दा डेल्टा भेरे काम होइ गता है नी।
0: ला होजे साफ सुथरा कराय करना है के और जितना साफ सुथरा कराए नगा लंबा दिनो यानी कि जुगाए दिनो
1: जुगाए तो होकर चले ना है नहीं।
0: टिकाओ जुगाए हुई था
1: सोलर पैनल या योना को ना बूं इको कम खर्चा हुई था है नहीं। नेडा नेडा ते साफ़ सुथरा कराए करना चाहिए। हादो ठाड़ो की ते नेट मोटरिंग सुविधा आता जहाँ ओडो होडम बिजली विभाग ते डांग कोन आर्थिक लाभ जो कुने पालते है नहीं। सोलर सिस्टम लगाए यो लाभ व्यवसाय हो या ओडो आकर्षण जो बढ़े गोता है नी। सरकारी सहायता भारत सरकार ओडो होडम राज्य सरकार जो सोलर पैनल लगाए ना थों सब्सिडी ओडो योजना तेरते है नी।
0: योजना जो रो व्यवसाय इघाई कराने हो जे उतुन ते नी। सरकारी मतलब जहाँ ते जो नम ला इघाई कराने ई इघाई उम्बो हो जे की टोला पो दाहिन ते उतुन ते की बताए ते की इघाई कराने या ई ला व्यवसाय कराने खाने इघाई कराए पे ला फायदा होई ना हो जे की उतुन ते की।
1: ला आय पे ओडो मुन कायम ओनोरे पे उ कायम है के पीएम सूर्य घर योजना है नी। उते जो सोलर के लगाना गमते
0: अच्छा
1: पीएम सूर्य घर योजना यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भारत सरकार या मुंग पहल है के है नी।
0: अच्छा
1: उकड़ा लक्ष्य आई नो ओगा तेलों ते सोलर पैनल लगाए कौन मुंग करोड़ परिवार ते हर ले रंग ते 800 यूनिट बोते फ्री बुंग बिजली तेरना है नी। वो योजना सरकारी मदद वो सोचना हम पर बैंक खाता ते जमा हुई था।
0: अच्छा
1: मन किलोवाट क्षमता बोता है 30,000 सब्सिडी और उबर किलोवाट क्षमता बोता है 60,000 सब्सिडी कोई था और 3 किलोवाट चाहे उकड़ा ते जुगे क्षमता बोता है 78,000 सब्सिडी कोई था है नहीं। दागे से मुगांते उतुने उकड़ा लाभ इघाय आई हो जे
0: ओकरा लाभ होइता मतलब तेलों ते इघे माह माह सोलर लगाना से अच्छा होइता और कोनोनिया काम ऊर्जा होइता इघे माह लगाए हो गएगा ऊर्जा ओकरा जुगाई होइता ला फायदा जुगाई होइता है नी ते
1: ला ओकरा कमाईया उघाएगा अवसर है। अगर आम पा सोलर पैनल जरूरत ते जुगाई बिजली बायते है नी। ला आम पे हो जे ग्रिड ते सोंकर मुनाफा कमुना पलते पे
0: अच्छा
1: सहज लोन कोई था। सोलर पैनल लगवाना थों 7% ब्याज दर 2,00,000 रुपया बोते सस्ता लोन कोई था।
0: अच्छा।
1: इकुट सस्ता ही है नी।
0: हाँ।
1: योजना ते आवेदन कराए ना उगे प्रक्रिया आई अम पे ओ ते डोको डोकोगा उकड़ा थों आवेदन कराए ना पालते पे है नी। आधिकारिक वेबसाइट पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना पोर्टल ते चोना पे है नी अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर ते क्लिक करे कौन राज्य यानी अपन आम पे आता राइज ते आता पे हो राज्य यानी लिखा ना है उड़ा बिजली वितरण कंपनी ते चोना पे है नी
0: अच्छा होते फॉर्म डेलता
1: अपन बिजली उपभोक्ता नंबर ओडो मोबाइल नंबर ते जो लिखाना हुई था
0: अच्छा
1: लॉग इन कराए कन फॉर्म भरे पे ओडो तेलों ते की इतने ठाड़ो वाई हो जाए जो उतुन्ना हुई था लगा हो कि सोलर कौनों तेलों आमना लाई है लगे कि है नहीं आवेदन स्वीकृत हुई ना लोडो फाइनल लगवाए पे रो वेंडर विवरण सबमिट कराए कन सब्सिडी लुगे पे दागे से गलो मुगम ते उतुने अब ई गम नहीं
0: लातम गा ने दाते मोबाइल ते का सब चीज को इता है नी ते
1: हां
0: ला होते वेबसाइट तेरते ऐप तेरते मतलब हो जे इघाय कराय नहीं आई होते उतुन ते की गूगल हिंते जो कराय के न उतुन ते मै इघाय कराय ना ओडो फॉर्म इघाय अप्लाई कराय ना हो जे लातम गा ने दाते हो डॉक हो ते का डॉक मतलब डको डको कौन गा
1: फॉर्म
0: भरे ना पालदम ता और जे जो बोरना यही हो जे मोबाइल ताईगा होई गोता
1: हां ला
0: और सेंटर रे चोनाम होईता है ने
1: हां ला उते उघाय आई मोइन किलोवाट या बिजली कनेक्शन ते आम पे मोइन सॉरी लगभग 800 से 900 वाट होता है उपकरण सहज वो चलाय ना पालते पे उते आम पे उफे ई फोन बल्ब उबर ठंग पंखा मोइन टीवी मोइन लैपटॉप मोबाइल चार्जर ओडो मोइन कोनन फ्रिज जो चलाय ना पालते पे ला को सहज गे नो
0: हां सहज गे
1: ओ योजना जारी है सरकार अनिंग ते संग्रह नाथों गा लागू करे सी ला हम पे झाड़ी ते मुगम देना आई रो योजना आइन कानून ते कोन कोन फॉर्म भरे पे रो योजना या लाभ भरपूर लाभ डोना कोनिस करे पे है नी
0: अच्छा
1: ला मुसा को आलंग उंडोर ना दिनु हे के गुलो
0: हां
1: ला आए पे मुगम ते आलंग उंडोर पे आलंग ते आलंग सीमे बुधराम खड़िया रो सांग डोम की उ आलंग ते उंडोर ना लाम ते मै पालकोट कोनकेल ते सुरेश डुंगडुंग कुसुम डुंगडुंग समीर डुंगडुंग अंजम डुंगडुंग रो ओगा झाड़ी लेबू

0: आय पे मुगाम ते ओटो मन्यालों ओनो रे पे उजे आलों सी मैं बिबिया ना डोंग डोंग रो सांगो डोंग किरो बिहार की ओनो नलाम ते मैं
1: उजे ठठाई टांगर ताए ओनो नलाम ते मैं प्रीति वंती केरकेट्टा रश्मि केरकेट्टा पुतुल केरकेट्टा ओटो ओगा लेबू झाड़ीगा।

0: आय पे मुगाम ते ओंडो रे पे ओडो मय आलंग ओ आलंग ते आलंग से मे रेजिना लकड़ा रो सांगो डोमकी
1: रो सिमडाई आ पसंद कराई से कि आलंग ते प्रभा सरेंग मसीधानी सरेंग ज्योति सरेंग और सांगो डोमकी।

यह है पहली प्रस्तुति फिल्म नसीब, आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की, शब्द आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
5: दीवाना, इस फिल्म में आइए सुनते हैं कुमार सानू को, शब्द समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

0: भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
1: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
0: तो क्या करूं?
1: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
0: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
1: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से रजनीगंधा कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म कुली का ये गीत शबीर कुमार की आवाज़ में। बोल लिखे हैं समीर आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म दिलवाले का ये गीत, कुमार सानू की आवाज़ में। समीर के शब्द को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम चर्चा करेंगे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में क्वाड की भूमिका पर और आने वाले समय में क्वाड की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर हर्ष वी पंत, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्रोफेसर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद टीना।
2: दुनिया इस समय एक बड़े जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है, जहां इंडो पैसिफिक सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और साथ ही स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का केंद्र बन चुका है। ऐसे में नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस बैठक में कई बड़े और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव्स की घोषणा की है, चाहे बात हो मैरिटाइम सर्वेलेंस की, क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन्स की, एनर्जी सिक्योरिटी की, सिक्योर टेलीकॉम नेटवर्क्स की या फिर एआई आधारित एग्रीकल्चर इनोवेशन की। चर्चा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले सुनते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने क्वाड की भूमिका और इंडो पैसिफिक को लेकर क्या अहम बात कही।
4: वी जस्ट कंक्लूडेड वेरी सब्सटेंटिव एंड प्रोडक्टिव मीटिंग ऑफ द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स। अंडरस्टैंडेबली मच ऑफ द डिस्कशंस एंड इंडीड द बायलैटरल एक्सचेंजेस वर डिवोटेड टू द करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। बीइंग क्वाड, वी नेचुरली focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. Because we are four maritime democracies located at different ends of the Indo-Pacific, the exchange of perspectives was an exercise of considerable value. The maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including

0: including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, training, capacity building and HADR activities.
1: प्रोफेसर, चर्चा की शुरुआत मैरिटाइम सिक्योरिटी से करते हैं. कुछ अहम अनाउंसमेंट्स इस सेक्टर से संबंधित हुए हैं, जिनमें इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव काफी अहम माना जा रहा है. हमारे श्रोताओं को अगर आप समझा सकें कि ये कितना ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव होगा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से.
2: देखिए, जो हिंद प्रशांत की जब हम बात करते हैं तो ये एक मैरिटाइम ज्योग्राफी है, ये एक समुद्री क्षेत्र है जिसमें एक साझा परिचालन तस्वीर, कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की जब हम बात करते हैं, वो उसकी जरूरत मुझे लगता है चारों देशों को पड़ रही है. क्योंकि जिस तरह से बदलाव आ रहे हैं हिंद प्रशांत में, इतने बड़े भू राजनीतिक बदलाव आए, जियो इकोनॉमिक ट्रेंड्स आए, और उसके बाद मैरिटाइम स्पेस में भी इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बदल रही है, देशों की सोच बदल रही है, और उसके साथ उनकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बदल रही है. तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं पर सबसे पहले अगर हम किसी चीज की बात, देश जो चार देश हैं ये अपनी साझेदारी इनकी बढ़ाने की जब बात करते हैं प्रशांत में, तो सबसे पहले कि ये देश जानना चाहेंगे क्या इनके पास एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर है कि नहीं है, क्या ये चारों देश एक ही तरीके से एक ही असेसमेंट रखते हैं जो हिंद प्रशांत मैरिटाइम स्पेस में हो रहा है. तो उसके लिए सर्वेलेंस की जरूरत है, उसके लिए निगरानी की जरूरत है. और मुझे लगता है ये जो एक इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस फ्रेमवर्क इनिशिएटिव को आज आगे बढ़ाया गया, इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होगा कि ये आपको एक, ये जो देश है इनको एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर देगा इस रीजन के बारे में, ये उसके जो यहाँ पर चैलेंजेस उभर कर आ रहे हैं उसको, उसके बारे में आगाह करेगा और कहाँ पर इकट्ठे तौर पर इन चैलेंजेस को इकट्ठा रहकर टैकल किया जा सकता है, उसके बारे में एक रोड मैप बनाने में और आसान हो जाएगा रास्ता. ये मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा रोल होगा. और इसके साथ जब ऐसा होगा तो इससे न सिर्फ इन चार देशों को मदद मिलेगी बल्कि वो सारे देश जिनके पास कैपेसिटी नहीं है, जिनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मैरिटाइम सर्वेलेंस कर पाए या मैरिटाइम समुद्री निगरानी रख पाए या पूरे जो ये हिंद प्रशांत है इस पर एक अपनी पकड़ बना पाए, तो उसमें इनकी मदद करने में ये पॉड जो फ्रेमवर्क है ये हेल्पफुल होगा. तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं होगा चार देशों के लिए बल्कि पूरे हिंद प्रशांत के लिए एक अच्छी पहल है. और इसको मुझे लगता है इससे जो बाकी देशों को भी फायदा होगा वो भी जुड़ने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय.
1: प्रोफेसर, आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो क्या ये कहा जा सकता है कि कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर को विकसित करने से इंडो पैसिफिक में रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग की क्षमता काफी बढ़ जाएगी?
2: जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग होगी और उसके साथ साथ उस मॉनिटरिंग से आप कैसे आपकी जो एसेट्स हैं उनको आप कैसे ऑपरेशनल यूज के लिए ला सकते. चारों जो देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके पास मैरिटाइम एसेट्स काफी हैं, लेकिन ये मैरिटाइम एसेट्स जो इनके हैं वो अपने क्षेत्र में काम करते हैं. कि भारत जो है वो इंडियन ओशन में डोमिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक में है, जापान साउथ ईस्ट चाइना सी एरिया में डोमिनेंट है. तो इनको इकट्ठा करके, इनकी कैपेबिलिटीज को इकट्ठा करके जब आप कोई तस्वीर बनाएंगे इस रीजन की, तो आपको एक तो पूरी टोटैलिटी में समझ में आएगा कि कहां पर क्या चल रहा है. और उसके साथ अगर आप किसी और देश की कैपेसिटी बिल्ड करने में मदद करना चाहते हैं, सर्वेलेंस उसकी कैपेसिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो कैपेबिलिटीज उनको और ऑपरेशनल बनाना चाहते हैं, तो सबकी जो पहली स्टेज होती है वो सर्वेलेंस होती है. तो मुझे लगता है वो जो एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर की बात हम कर रहे हैं उससे इस जो पहल है इसको और गति मिलेगी और बाकी देशों को जोड़ने का भी अवसर मिलेगा.
1: प्रोफेसर, क्वाड ने इंडो पैसिफिक में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की भी घोषणा की है. आज के दौर में जब रेयर अर्थ मिनरल्स, लिथियम, कोबाल्ट, इनको सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स माना जा रहा है, क्या यह इनिशिएटिव चीन पर दुनिया की निर्भरता को कम करने और एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन सिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कदम है?
2: जी बिल्कुल, मुझे लगता है क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो इस समय सबसे महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है जहां पर सभी देश जो हैं वो, जो पूरी दुनिया है वो इस समय एक तरह से क्राइसिस से गुजर रही है, जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी, उनकी प्रोसेसिंग, उनका यूटिलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है. और जिस तरह से जो डोमिनेंस कुछ देशों की है क्रिटिकल मिनरल्स पर, रेयर अर्थ मिनरल्स पर, वो किस तरह से उसको वेपनाइज कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या देशों के सामने है, खासकर उन देशों के सामने जिनके पास इंडिजिनस मिनरल्स नहीं है, जो बहुत डिपेंडेंट है बाहरी दुनिया के ऊपर. तो मुझे लगता है जो फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ है आज क्रिटिकल मिनरल्स, जिसका कि एम होगा कि कैसे करीब करीब 20 बिलियन यूएस डॉलर्स को मोबिलाइज करें पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जिससे कि सिक्योर और रेजिलिएंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स थ्रू आउट इंडो पैसिफिक, पूरे हिंद प्रशांत में बन पाए, इसकी जो एक कोशिश करेगा, ये मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है दुनिया को और उन देशों को जो क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज

0: चल रहे हैं कि आप की ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बढ़ रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और क्रिटिकल मिनरल्स की जो डिपेंडेंस है अगर वो दूसरे देशों की तरफ से देखें तो वो उसको कम करने की कोशिश, डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरा इसमें अहम बात यह है कि जब आप हम आर्थिक तरक्की की आज बात करते हैं, उसमें जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस तरह का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसमें क्रिटिकल मिनरल्स का रोल सेंट्रल है। तो आप अगर डेवलपमेंट की भी बात हम करें, अगर हम डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हमारी हैं उसकी भी बात करते हैं, तो उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स का क्या रोल होगा और कैसे बाकी देश जो क्वाड के देश हैं, क्वाड मेंबर्स हैं, वो किस तरह से एक अल्टरनेटिव दुनिया को या हिंद प्रशांत के देशों को देने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस इनिशिएटिव में नजर आता है। और इसमें कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है कि कैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, जो उसकी स्टेबिलिटी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि वही जब स्ट्रेंथन आप करेंगे तब आप हिंद प्रशांत की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, जो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, उसको स्ट्रेंथन कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल। एक तीसरा अहम इनिशिएटिव जिसका जिक्र डॉक्टर जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी किया, वो है क्वाड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी। अब प्रोफेसर, मौजूदा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में ये कितना अहम है, और खास करके हम देख रहे हैं कि ये लगातार एनर्जी क्राइसिस हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी एनर्जी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखा गया, और अभी के मौजूदा ग्लोबल सिनारियों को भी अगर देखें तो ऐसे में क्या एनर्जी रिजिलियंस अब सिर्फ एक इकोनॉमिक कंसर्न नहीं है, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से भी एक काफी केंद्रीय मुद्दा बन चुका है?
0: जिस तरह से आपने जिसका जिक्र किया कि रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद और अब जो मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, उसके बाद एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि किसी भी देश के ऊपर अगर आप ज्यादा निर्भर करते हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, तो वो आपको हानि पहुंचाने के लिए काफी होता है। और हमने ये बात अभी हम नोटिस कर रहे हैं कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको कि हम हमेशा ही मानते थे, दुनिया ये मानती थी कि अनइम्पीडेड कॉमर्स के लिए एसेंशियल है और इसलिए हमेशा खुला रहेगा, उसमें जिस तरह का बदलाव आया है, उसमें जिस तरह से ब्लॉकेड हुआ और उसको रोकने की कोशिश की गई, वो मुझे लगता है एक तरह से अलार्म बेल है दुनिया के लिए कि अगर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है जो इनिशिएटिव है ये एक तरह से ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि जो चार जो पिवोटल पावर्स हैं हिंद प्रशांत की, वो इस बात को लेकर सीरियस है कि जो कि कैसे जो प्रत्येक देश के ऊर्जा क्षेत्र के संसाधनों को, उनकी क्षमताओं को पहचाना जाए और उनका लाभ उठाया जाए, साथ ही उनसे संबंधित जो रणनीतिक पेट्रोलियम प्रणालियां हैं उनको मजबूत कैसे किया जाए। तो कहीं पर जब हम चार देशों की बात करते हैं तो ये अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको इकट्ठा करके आगे बढ़ने की जो कोशिश इसमें है वो नजर आ रही है।
1: प्रोफेसर, फ्यूचर टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एआई एंगेज इनिशिएटिव के तहत एग्रीकल्चर इनोवेशन और फूड सिक्योरिटी पर सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि क्वाड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ साथ अब डेवलपमेंटल पार्टनरशिप की ओर भी बढ़ रहा है?
0: जो हम देख रहे हैं अभी क्वाड में जो हो रहा है, उसमें मुझे लगता है एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि क्वाड न सिर्फ स्ट्रेटेजिक मुद्दों के ऊपर, सामरिक मुद्दों के ऊपर अपनी एक पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि एक तरह से डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उसको वापस किस तरह सेंटर में लाया जाए, कैसे इस डिस्कोर्स के सेंटर में लाया जाए, इसकी पहल काफी ज्यादा हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को किस तरह से डेवलपमेंटल प्रायोरिटी से जोड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि इससे आपकी सामरिक जो क्षमताएं हैं वो उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश, पर उससे किस तरह से इकोनॉमिक रेजिलियंस और डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साधा जाए, इसकी कोशिश हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि ये जो कोलैबोरेशन है, इसमें हमने ये कोशिश देखी है इन चार देशों की कि एक अल्टरनेटिव मॉडल सेट करने की कोशिश है कि हम कि क्वाड जो कर रहा है वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने हितों को साधने की कोशिश नहीं, बल्कि जो क्वाड कंट्रीज के एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी कैपेसिटीज हैं, उनकी कैपेबिलिटीज हैं, उसको कैसे रीजन के लिए लेवरेज किया जाए, मुझे लगता है उसमें ये जो धारणा है इस क्वाड के इनिशिएटिव्स में। और जब हम एआई एंगेज इनिशिएटिव की बात करते हैं तो उसमें भी क्या कैसे एआई को इमर्जिंग टेक को एग्रीकल्चर सेक्टर में लेवरेज कर पाएंगे, इसके ऊपर जिस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, जिस तरह के फंड्स आने चाहिए, जिस तरह से इसको आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको सशक्त बनाना है, काफी सारी जो इकोनॉमीज हिंद प्रशांत में है वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है, तो अगर हमको उन इकोनॉमीज को रेजिलियंट बनाना है, डेवलपमेंट को अपने सेंटर में रखना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स की जरूरत बहुत ज्यादा है। और

0: ये जो अल्टरनेटिव है कि क्वाड का मॉडल वो वाला मॉडल नहीं है कि जहां पर दूसरे देश आते हैं, पैसा देते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसोर्सेज और चले जाते हैं। क्वाड का मॉडल अल्टीमेटली एक ऐसा मॉडल है जो कैपेसिटी बिल्ड करने की कोशिश है दुनिया भर में, हिंद प्रशांत में, खासकर उन देशों में जो जिनके पास अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज कम है या जिनको हेल्प की जरूरत है। तो मुझे लगता है उस मामले में AI एंगेज इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। और AI और इमर्जिंग टेक से आप कैसे अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को साध सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा नमूना क्वाड देशों ने पेश किया।
1: प्रोफेसर, एक आखिरी सवाल क्वाड के भविष्य को लेकर अगर बात करें, और जिस तरह से हमने देखा कि आज फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद जिस तरह से मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, एनर्जी कनेक्टिविटी, इन सब क्षेत्रों में देखा गया कि कोऑर्डिनेटेड इनिशिएटिव्स सबने मिलकर लॉन्च किया है, कई ऐसे नए क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई है जिसमें सहमति बन सकती है आने वाले समय में, क्या ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संकेत था क्वाड के द्वारा कि आने वाले समय में इस ग्रुपिंग की इंस्टीट्यूशनल डेप्थ और बढ़ सकती है?
0: बिल्कुल, मुझे लगता है जितना विस्तृत क्वाड का एजेंडा आज हम देख रहे हैं और जिस तरह से क्रिटिकल एरियाज में क्वाड इंटरवीन करने की कोशिश कर रहा है, एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की तरफ इशारा है, उसमें ग्रेटर एंगेजमेंट की तरफ इशारा है, उसमें इशारा है कि कैसे आप ज्यादा क्लोजली काम कर सकते हैं एक साथ अगर आप आए, चार बड़े देश आए और उसके बाद वो न सिर्फ अपने लिए काम करें बल्कि दूसरे देशों को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट करें, मुझे लगता है उसकी तरफ इशारा है। तो एंगेजमेंट है, एक्सपीरियंस शेयरिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है और उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बढ़ेगा आगे मुझे लगता है। ये बात कही गई शुरू में जब ये समिट शुरू हुआ कि कैसे क्वाड आइडियाज से निकलकर ऑपरेशनल इश्यूज पर प्रैक्टिकल इश्यूज की तरफ मूव कर रहा है और मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है क्योंकि इससे जो भी डेवलपमेंट्स होंगे ऑन द ग्राउंड ज्यादा कॉन्फिडेंस बनेगा क्वाड मेंबर्स में और वो देश जो क्वाड की ओर उम्मीद भरी निगाहें लगाए बैठे हैं कि क्वाड अगर अच्छा करेगा इन सेक्टर्स में तो उससे उनका भी फायदा।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है आज की बैठक से ये बड़ा संदेश दे दिया गया है उन सभी को कि ये चार देश अभी सिर्फ वर्तमान की चुनौतियों का ही जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं बल्कि भविष्य की इकोनॉमिक रियलिटीज क्या होंगी और जियो पोलिटिकल रियलिटीज को भी शेप करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोफेसर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर बाद हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: में घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद
1: प्रशांत। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडवी

0: इंडिया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
6: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ

वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4,000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। अमित शाह ने कहा है कि एंटी ड्रोन निजाम 6 महीने के अंदर अंदर नसब कर दिए जाएंगे। क्वाड मुल्कों ने भारत बहरुल काहिल समंदरी निगरानी ताउन का आगाज किया है। उन्होंने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। खेलकूद के वजीर मनसुख मांडविया ने मुस्तकबिल के ओलंपिक गेम्स में योग आसन को शामिल करने पर जोर दिया है। अहमदाबाद अगले महीने पहले आलमी योग आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्रमोहन ने वियतनाम में मर्दों के फ्री स्टाइल मुकाबले में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात के बाइस होने वाली आबादियाती तब्दीली के चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज करने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी।

0: है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में मरकजी वजीरे दाखला अमित शाह ने आज बताया कि इस कमेटी की सदारत सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रभाकर नौलेकर करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा प्रसाद मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर माशियात डॉक्टर शमिका रवि को कमेटी के रुकन की हैसियत से मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में ज्वाइंट सेक्रेटरी गैर मुल्की एक कमेटी में मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दिगर वजूहात गैर कुदरती आबादियाती तब्दीली का बाइस बन रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं। उन्होंने कहा कि आबादियाती तब्दीली एक संजीदा मामला है, जो न सिर्फ इकतदार आला बल्कि कौमी सलामती, अमन कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली माशरे के तहफ्फुज़ के लिए भी एक संजीदा मामला है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये आला सतही कमेटी पूरे भारत में होने वाली आबादियाती तब्दीली का जामे तौर पर जायजा लेगी, जो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर गैर फितरी वजूहात के बायस हो रही है। ये कमेटी मजहब और समाजी कम्युनिटीज की सतहों पर होने वाली गैर मामूली आबादी की मुंतकली के तौर तरीकों का भी जायजा लेगी और इसके लिए एक मनसूबाबंद और मुकर्रर वक्त में हासिल होने वाले हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता साल लाल किले से यौम आज़ादी की अपनी तकरीर में आबादियाती तब्दीली से मुतालिक आला सतही कमेटी के बारे में ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर जरूरी हुआ तो इस कमेटी की मुद्दत कार में 6 महीने तक की तौसी की जा सकती है। आकाशवाणी से विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज कहा कि हुकूमत ड्रोन्स के जरिए मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को खत्म करने की गरज से आइंदा 6 महीनों के अंदर अंदर एंटी ड्रोन निजाम नसब कर रही है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए वजीर दाखला ने कहा कि सरहद पार से उभरने वाले खतरात तो अहमियत के हामिल हैं ही, अलबत्ता मुल्क के अंदर इस तरह के खतरात की मदद करने वाले अंदरूनी अनासिर पर भी इतनी ही तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो इस तरह के मामलात में मुलविस हों उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ के रोल की आज ये कहते हुए सताइश की है कि फोर्स ने न सिर्फ मजबूती के साथ सरहद की हिफाजत की है बल्कि सरहदी अजला में रहने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद किए हैं। उन्होंने सरहदी सलामती को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की खातिर बीएसएफ, फौज, इंतजामिया और मुस्तैद शहरियों पर मुश्तमिल एक 4 सतही ग्रिड कायम करने पर जोर दिया। जनाब शाह आज राजस्थान के बीकानेर के नजदीक बीएसएफ की सांचू पोस्ट पर प्रहारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस 4 सतही ग्रिड से सरहदी हिस्से में दरपेश खतरात से पूरी ताकत के साथ निपटा जा सकेगा। क्वाड के वज़राए खारजा की मीटिंग के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि क्वाड ममालिक ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया और खित्ते में देरपा अमन कायम करने के सिलसिले में जारी सिफारती कोशिशों की हिमायत करने का इरादा किया। क्वाड ममालिक ने आबनाए हुरमुज और बहर अहमर के रास्ते जहाज रानी के हकूक, आज़ादी, सलामती और आलमी तजारत के बिला रुकावट जारी रहने के ताल्लुक से बैन अलाक़वामी कवानीन की पाबंदी की अहमियत को दोहराया, जिसकी अक्कासी अक़वाम-ए-मुत्तहिदा के समंदर के कानून से मुतालिक कन्वेंशन में होती है। میٹنگ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ

0: में एडिशनल सेक्रेटरी के नागराज नायडू ने कहा कि मीटिंग में आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल के सिलसिले में क्वाड के अहद को दोहराया गया है। आज क्वाड ममालिक ने भारत बहरुल काहिल बहरी निगरानी के सिलसिले में इश्तराक का भी आगाज किया, जिसका मकसद बहरी सलामती के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करना है। जनाब नायडू ने कहा कि वज़राए खारजा ने सरहद पार दहशतगर्दी समेत हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मुश्तरका बयान में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज सिक्किम पहुंची हैं। उन्होंने तैप्तोलोगी के ऑर्किडोरियम और नामग्याल इदारे का दौरा किया। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने सदर जमहूरिया का खैरमकदम किया। कल सदर जमहूरिया नाथुला पास जाएंगी और सिक्किम यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में भी शिरकत करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने प्याज की कम अज कम यकीनी खरीदारी की कीमत MAPP को 1,270 रुपये फी क्विंटल से बढ़ाकर 1,580 रुपये फी क्विंटल कर दिया है। नजरसानी शुदा MAPP रियासी सरकारों की दरख्वास्त पर की गई है। इसका इतलाक आज से होगा। इस सिलसिले में सार्फीन के उमूर, खुराक और अवामी निजाम तकसीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में सार्फीन के उमूर के महकमे और भारत की कौमी जरी कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड नेफेड और भारत की कौमी कोऑपरेटिव सार्फीन की फेडरेशन NCCF के हुक्काम के साथ एक मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जोशी ने कहा कि ये मीटिंग मियारी प्याज के जखीरों की मुआसिर खरीदारी की राह हमवार करने और किसानों को बेहतर आमदनी हासिल करने को यकीनी बनाने के लिए की गई थी। शाहराहों और नकलो हमल के वजीर नितिन गडकरी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हासिल शुदा रिपोर्टों पर मबनी कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों के मैार और देखरेख की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिसमें पंजाब में 4,000 किलोमीटर से ज्यादा और दिल्ली और हरियाणा में 3,000 किलोमीटर से ज्यादा शाहराहों का अहाता किया गया है। नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब गडकरी ने हाईवे प्रोजेक्टों के जमीनी कामकाज को तेज करने की जरूरत और काम को वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने तमाम प्रोजेक्टों वाले हिस्सों पर मानसून की पेशगी तैयारी के इकदाम करने के लिए भी हुक्काम को हिदायत दी। नौजवानों की उम्र और खेलों के महकमे के वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि 2036 तक खेलों की मेजबानी की भारत की दावेदारी को जहन में रखते हुए आइंदा ओलंपिक्स खेलों में योगा आसन को शामिल किए जाने पर जोर दिया जाएगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि आइंदा माह की 4 से 8 तारीख तक अहमदाबाद पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो मुल्क के सेहत के सिलसिले में इस रवायती तरीक़ेकार को खेलों के आलमी डिसिप्लिन के तौर पर कायम करने की जानिब एक अहम कदम होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि योगा आसन से मुल्क की सॉफ्ट पावर की अक्कासी होती है और यह दुनिया भर में जिस्मानी तंदुरुस्ती, जहनी सेहत और सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देने के एक अहम वसीले के तौर पर उभर रहा है।
1: 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप का आयोजन भारत में अहमदाबाद में हो रहा है। 75 से अधिक देश के 500 से अधिक एथलीट्स उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा। भारत में कॉमनवेल्थ का जब आयोजन करा जाएगा तब उसमें स्वदेशी स्पोर्ट्स के रूप में योगासना को भी स्थान दिया जाएगा।
0: उन्होंने कहा कि तकरीबन 75 मुल्कों ने योगा आसन चैंपियनशिप के लिए इंदिराज कराया है और दुनिया भर से 5,000 से ज्यादा शुरका के हिस्से में हिस्सा लेने का इम्कान है। तकरीब के दौरान वजीर मौसूफ ने पहली आलमी योगा आसन चैंपियनशिप 2026 के लिए मास्कट, जर्सी और चैंपियनशिप फिल्म का भी आगाज किया। भारत समेत दुनिया भर के लाखों आजमीन हज अहम तरीन मनासिक हज की अदायगी के लिए आज सऊदी अरब के मैदान अरफात में जमा हुए। तमाम आजमीन हज सफ़ेद अहराम बांधे हुए थे, जिन्होंने खुतबे हज की समात की और मस्जिद निबरा में एक साथ जुहर और असर की नमाज अदा की। अब तमाम हुजाज कराम मुजदलफा के लिए रवाना होंगे और एक साथ मगरिब और ईशा की नमाज अदा करेंगे। हुजाज कराम रमी जमरात के लिए कंकरियाँ भी इकट्ठा करेंगे। वो मुजदलफा में खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। इसके बाद वो कल सुबह मीना वापस पहुंचेंगे, چاہوں قربانی کا فریضہ انجام دیں گے اور رمی جمرات کریں گے۔ اس سال 1,75,000 سے زیادہ بھارتی حجاج کرام فریض حج ادا کر رہے ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے کل مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودھرب میں شدید سے بہت شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، راجستھان، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، جموں اور کشمیر، لداخ، جھارکھنڈ، اڈیشہ، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت نے چین اور پاکستان کے مشترکہ بیان میں جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے سے متعلق بے بنیاد حوالوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ ان بے بنیاد حوالوں سے متعلق میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ متعلقہ فریقین کے لیے بھارت کا موقف قطعی، واضح اور اچھی طرح جانا پہچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ بھارت کے اٹوٹ حصے تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ صورتحال پر تبصرہ کرنے کا کسی بھی دوسرے ملک کو کوئی حق نہیں ہے۔ آج ویتنام کے دنانگ میں 23 سال تک کی عمر کی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی کشتی کھلاڑیوں نے اپنی شاندار کارکردگی کا سلسلہ برقرار رکھا اور مردوں کے فری اسٹائل زمرے میں سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا ایک تمغہ جیتا۔ 65 کلو گرام زمرے میں موہت کمار نے کرغستان کے کھلاڑی کو 12-4 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ 79 کلو گرام کے زمرے میں چندر موہن نے بھی قزاقستان کے کشتی کھلاڑی کے ساتھ ایک سنسنی خیز مقابلے میں اسے 7-6 سے شکست دی۔ اس دوران 92 کلو گرام کے زمرے میں پنیت کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا۔ 125 کلو گرام کے زمرے میں بھی بھارت کو چاندی کا تمغہ ملا۔ بیڈمنٹن میں آج اولمپک میں 2 بار تمغہ حاصل کرنے والی PV سندھو اور بھارتی مردوں کی ڈبل کی جوڑی ستوک سائراج، رانکی ریڈی اور چراغ شیٹھی سنگاپور اوپن کے 16ویں راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ خواتین کے سنگلز مقابلے میں سندھو نے انڈونیشیا کی پتری کسوما واردانی کو 21-17 اور 21-18 سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے 2رے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ مرکز نے دراندازی اور دیگر وجوہات کے باعث ہونے والی آبادیاتی تبدیلی کے چیلنجوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک اعلی سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ اینٹی ڈرون نظام 6 مہینے کے اندر اندر نصب کر دیے جائیں گے۔ کواڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل سمندری نگرانی تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ حکومت نے پیاز کی کم از کم یقینی خریداری کی قیمت MAPP کو 1,270 روپے فی کوئنٹل سے بڑھا کر 1,580 روپے فی کوئنٹل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: Mann kann.
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। भारत में पोषण से स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में हाल ही में सेहत मिशन की शुरुआत हुई और आज हम सेहत मिशन के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम सेहत मिशन पर दो विशेषज्ञों से विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक डॉक्टर डी के यादव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रियंका बंसल। तो हाल ही में लॉन्च हुए सेहत मिशन पर हम बात करने के लिए अब सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर डी के यादव, फसल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम में आपका।
2: धन्यवाद।
1: साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सेहत का पूरा फुल फॉर्म है और इसमें जो हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि हम किस तरह से खेती के जरिए, फसलों के जरिए सेहत में पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं सेहत मिशन में खेती के रोल को और किस तरह से इसमें आपकी भूमिका है?
2: सेहत मिशन का जिस तरह से आपने भी जो इलोबरेट करके बताया कि साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप जानते हैं भली भांति जो हमारा भोजन का जितना भी सप्लाई है उसमें कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हम विभिन्न खाद्य फसलों में, जो बागवानी फसलों में किस्मों का विकास करते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा बनती हैं, तो उनके द्वारा किस तरह से हम हमारे हेल्थ को सुधार सकें, किस तरह से आम जन का जो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सी, जैसे हम बात करें कुपोषण की समस्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, तो एक बड़ी भारी, ना कि भारत में पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को कृषि के द्वारा किस तरह से हम एक तरह से उसको एड्रेस करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोषण कार्यक्रमों के द्वारा और जिस तरह का सेहत पर जो आम जन के असर पड़ता है, तो उससे देश को काफी, जो जीडीपी में काफी नुकसान होता है, और उस नुकसान को किस तरह से कम करें, और जो भी हमारे आम जन है, चाहे वो खेतिहर मजदूर है चाहे किसान है, सभी को कहीं ना कहीं इम्बेलेंस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, कुपोषण की वजह से उनकी जो क्षमता है या बीमारी पकड़ने की जिस तरह की एक टेंडेंसी रहती है वो अधिक रहती है। तो इस मिशन का मेन मुद्दा यही है कि जैसे जो कृषि में हमने जिस तरह से पोषण युक्त विभिन्न किस्में उत्पन्न की, उन किस्मों को किस तरह से हम आमजन तक ले जाएं और उसको ले जाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सेहत मिशन के द्वारा जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, तो उन दोनों का जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसमें एक तरह से हमने 4-5 मुद्दे उसमें रखे हैं, जिसमें एक जो मुख्य मुद्दा है, इसमें एक कंपोनेंट है कि पौधों और पशुओं से मिलने वाले बायोफोर्टिफाइड प्रोडक्ट का स्वास्थ्य पर असर। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो बायोफोर्टिफिकेशन का कार्य सिर्फ फसलों में ही नहीं है, जैसे खाद्य फसलों और बागवानी में, उसमें हम पशुओं में, मछलियों में भी उस पर कार्य कर रहे हैं, और उससे किस तरह से हमारे दिन प्रतिदिन के भोजन में जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, तो उसके लिए इसमें अध्ययन हम ICMR के साथ मिलकर करेंगे। तो उसमें जो हमारा मुख्य जो उद्देश्य होगा कि किस तरह से हम ज्यादा बायोफोर्टिफाइड किस्में पैदा करें और इन किस्मों को किस तरह से हम आम जन तक जो हमारी फूड चेन में ले जाएं। उसके बाद जो ICMR का जो मेन मुद्दा, जो उनके रिसर्च के कंपोनेंट रहेंगे, उसमें एक बायो अवेलेबिलिटी का इश्यू होता है कि आपने किसी किस्म में आपने कहा कि जो प्रोटीन है वो 12% है, गेहूं में जैसे हम कहते हैं 12.5% है, और आमतौर पर जो गेहूं में प्रोटीन 8-9% होता है, तो 12.5% की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है कि भाई वो जो भी कंज्यूमर उसको खाता है उसका एक्चुअल में अवेलेबिलिटी उसको कितनी होती है, उस तरह की स्टडी हमारे सिस्टम से हम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से बायोमार्कर का रिस्पॉन्स क्या आता है और उसका ओवरऑल हेल्थ पर उनके नतीजे जो आते हैं उनका मूल्यांकन कैसे करें कि आपका नॉर्मल भोजन करता है और उसमें जो बायोफोर्टिफाइड जो भोजन करता है तो उससे कितना उसके हेल्थ पर उसका असर पड़ता है, उसकी स्टडीज हम आईसीएमआर के साथ मिलकर साइंटिफिक तरीके से करेंगे।
1: जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि वो कौन सी किस्में या फसलें हैं जिन पर काम हो रहा है जिससे कि ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है, और बायोफोर्टिफाइड फसलों के उन किस्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, और खास तौर पर किसान उन फसलों को पैदा करने की ओर प्रोत्साहित हों इस बारे में भी क्या कुछ आईसीएआर की तरफ से कुछ काम हो रहा है?
2: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने ये प्रश्न पूछा। अभी हम हाल में जो है 16 खाद्यान्न फसलों में और 16 ही बागवानी फसलों में बायोफोर्टिफिकेशन पर कार्य कर रहे हैं। तो जो उसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि जिन जिन फसलों में, जैसे जो आमतौर पर जितने भी पोषक तत्व, जैसे प्रोटीन है, आयरन, जिंक है, और कुछ एक में जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं उनको भी रिमूव करने का, क्योंकि उनका भी स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो अभी तक हमने पिछले जो 11 वर्षों में 203 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया, जिसमें जैसे मैंने बताया 16 खाद्य फसलों की 187 किस्में हैं, जिसमें चावल की 16 किस्में हैं, गेहूं की 70 हैं, जौ की 1 है, मक्का की 43 हाइब्रिड्स हैं, बाजरा के 18 हाइब्रिड्स हैं, रागी के 4 हैं, कुटकी की 2 किस्में हैं, कंगनी की 1 है, और मसूर की 2, तथा चना और फावाबीन की 1-1 किस्म है।
1: अंत में थोड़ा सा ये भी बताएं कि किसानों तक इनके बीजों को पहुंचाने के लिए, किसान इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित हों, इस मामले में क्या कुछ किया जा रहा है?
2: इस मामले में हमने निश्चित रूप से पिछले, ये माननीय आपके 8-9 वर्षों में काफी प्रयास किए।

0: तो बीज का जो किसान तक बीज जाता है उसकी पहली श्रेणी होती है प्रजनक बीज का उत्पादन, जो कि हमें विभिन्न राज्यों से और सीड प्रोडक्शन की एजेंसी से उसको ICAR में प्राप्त होता है मिनिस्ट्री के द्वारा, कृषि मंत्रालय के द्वारा। तो उनको हम जितनी भी बायो फोर्टिफाइड किस्में हैं, जब हम इसका स्टेट का सीड रोलिंग प्लान बनाते हैं, जो ब्रीडर सीड के लिए जब डिस्कशन होता है स्टेट्स की सीड एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर और जितने भी जो बीज उत्पादक होते हैं, पब्लिक NGO है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं और हमारा एक यही प्रयास रहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बायो फोर्टिफाइड किस्मों के इंडेंट दें ब्रीड सीड उत्पादन के लिए। उसके अलावा जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, उसमें भी NFSM में भी जो बायो फोर्टिफाइड किस्मों के लिए एक विशेष उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घटक रखा गया है, ताकि किसानों के पास ज्यादा से ज्यादा उसका बीज पहुंचे। फार्मर्स के लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी दूरदर्शन के द्वारा, रेडियो के माध्यम से और हमारे KVK जो काम करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, कृषि विश्वविद्यालय, ICAR के इंस्टीट्यूट, तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बायो फोर्टिफाइड किस्मों के बारे में किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें और उनका बीज पैदा कर किसानों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल। तो ICMR और ICAR की जो ये संयुक्त पहल है प्रिवेंटिव हेल्थ की, कि पोषण के जरिए हम अपने स्वास्थ्य को मजबूत करें देश भर में, तो इस पहल के हमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में वो सकारात्मक नतीजे जरूर दिखेंगे। जिस तरह से अभी हमने डॉक्टर डीके यादव के साथ चर्चा की कि किस तरह से बायो फोर्टिफाइड फसलों के जरिए हमारे शरीर तक पोषण को पहुंचाने का काम अब तेजी से हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डीके यादव, आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को सेहत मिशन के जो एग्रीकल्चर का पहलू है, खेती का पहलू है, उसके बारे में विस्तार से बताया।
0: धन्यवाद।
1: हम बात करने जा रहे हैं इस सेहत मिशन पर डॉक्टर प्रियंका बंसल के साथ। डॉक्टर प्रियंका बंसल ICMR में सीनियर साइंटिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर प्रियंका बंसल, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सेहत मिशन में प्रिवेंटिव हेल्थ पर ज्यादा फोकस किया गया है, कि बीमारी से पहले ही देश इतना स्वस्थ हो जाए कि पूर्ण पोषण के जरिए गंभीर बीमारियों तक हम ना पहुंचे, तो कैसे आप देखती हैं इस मिशन के मकसद को?
2: आपने बिल्कुल सही बोला है कि सेहत मिशन पे हम प्रिवेंटिव की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लोग जहाँ बीमार होने से पहले ही हम किस तरीके से उनके लाइफस्टाइल में, उनके जीवन के तरीके में हम चेंजेस ला पाएं जो उनको हेल्थ की तरफ ले जाए।
1: जी
2: तो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो जो ये सेहत मिशन है इसकी सोच बहुत सरल है, जो कहती है कि जैसा भोजन वैसा मन और वैसा तन। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आम जनता के लिए, जो हमारे देश के लोग हैं, हम उनकी थाली को अधिक पौष्टिक कैसे बना पाएं। तो जो हम खाना खाते हैं, हम उसी खाने को, उनको कुछ अलग से नहीं करना पड़े, मगर हम उसी खाने में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषण तत्व हैं, उसको कैसे बढ़ा पाएं। और इसी सोच के साथ ये सेहत मिशन स्टार्ट किया गया है। एक संयुक्त राष्ट्र का मिशन है जिसमें ICAR जो है वो अपने बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स और अपनी फसलें
1: जी
2: बनाएंगे जिनमें पोषक तत्व ज्यादा हैं, और उन्हीं चीजों को हम, उनका जो वैज्ञानिक प्रमाण है कि उनका स्वास्थ्य पे लाभ क्या होता है, वो ICMR टेस्ट करेगा, और जिससे कि हमारे को पता चले कि कौन सा खाना, कौन सी क्रॉप, कौन सा इनोवेशन जो एग्रीकल्चर में हुआ है, हम उसको बेहतर हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर प्रियंका बंसल, कुपोषण के हमारे सामने पहले बड़े आंकड़े आते रहे थे, और अब सरकार के पोषण अभियान पहल और तमाम पहलों के जरिए कुपोषण को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। सेहत मिशन भारत में कुपोषण को खत्म करने में किस तरह से भूमिका निभाएगा, और साथ ही जो देश में हम सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, इस तरह की समस्या को दूर करने में भी सेहत मिशन की किस तरह से भूमिका होने वाली है?
2: सरकार के जितने भी उन्होंने प्रयत्न करे हैं, उससे हम धीरे धीरे कुपोषण के अगेंस्ट लड़ पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं और उसको कम कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ ये भी एक सच बात है कि हमारे देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज है,
1: जी
2: हाइपरटेंशन है, मोटापा है, ये सब बढ़ रहा है। तो इन्हीं चीजों के लिए ये सेहत मिशन बना है। जैसे मैंने बोला कि इसमें हम क्या करेंगे, जो पोषक फसलें हैं, बेहतर आहार प्रणालियां हैं, इन सबको हम टेस्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि इनको हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से कैसे शामिल कर सकते हैं। जो हमारे देश में इतने राष्ट्रीय कार्यक्रम है, चाहे वो कुपोषण को लेकर है, अनीमिया को लेकर है, उनमें हम क्या बदलाव ला सकते हैं फूड से रिलेटेड, जो कि सेहत हमें बताएगा और इससे हम अनीमिया, कुपोषण कुपोषण और गैर संचारी रोगों की रोकथाम में हमें मदद मिलेगी। तो सरल शब्दों में स्वस्थ

0: खेत से स्वस्थ भारत हमारा मिशन है।
1: जी, तो जो स्वास्थ्य के मानक हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले सालों में सेहत मिशन के जरिए उसमें हम सुधार देख पाएंगे, जिससे कि सूक्ष्म पोषण लोगों तक जब इस मिशन के जरिए पहुंचेगा तो क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है भविष्य में?
0: मुझे पक्का यकीन है कि इस मिशन से और इससे जो हम डेवलप कर पाएंगे फसलें या मॉडल, हम किस तरीके से फार्मर्स की हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं, किसान भाइयों की हम हेल्थ पे भी इस मिशन के अंडर काम कर रहे हैं, तो इससे जो मुझे लगता है कि एक तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जिसकी आपने भी बात की थी, चाहे वो आयरन हो, विटामिन डी है, कैल्शियम है, जिसमें हमारे देश में कई लोगों में कमी पाई जाती है, हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। और अनीमिया या जो भी आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की बात करते हैं, वो हमें उस तरीके से दिखती नहीं है, मगर वो हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी, हमारा जो डेली का रहना सहना काम, इन सबको इफेक्ट करता है, उसको कम करता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हम ये मानते हैं कि इस मिशन से हम उसको रोक पाएंगे, उसको कम कर पाएंगे डेफिशिएंसी को, दूसरा कुपोषण को हम इससे देख पाएंगे, और तीसरा जो हमारा बड़ा एक इसमें हम जो देख रहे हैं वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को, हम इसमें इस तरीके का देख रहे हैं कि क्या कोई फसल ऐसी है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आपका जो खून में शुगर की मात्रा
1: जी
0: है वो पता चलती है, वो आपकी कम रेज हो उसको खाने से, या फिर आपका जो रक्तचाप है वो कम हो उस चीज को खाने के लिए। तो हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हमारे देश में अभी बढ़ते हुए की तरफ है, वो हम किस तरीके से कम कर पाए।
1: हमने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी ICAR के उप महानिदेशक, जिन्होंने हमें बताया था कि किस तरह से फसलों के जरिए पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जाएगा। हम ICMR की भूमिका के भी बारे में थोड़ा संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि तकनीक के स्तर पर या चिकित्सा के स्तर पर ICMR की क्या भूमिका होने वाली है इस मिशन में?
0: देखिए, जैसे कि आपको यादव सर ने बताया कि ICAR ने क्रॉप्स बनाए हैं, फसलें बनाई हैं जो कि नॉर्मल फसलों से ज्यादा पौष्टिक हैं, मगर उनका जो हमारे देश में और हमारे देश के राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है उसमें वो नहीं आ पाए हैं अभी तक। उसका रीजन ये है कि उसके साथ वैज्ञानिक प्रमाण नहीं जुड़ पाया है कि इसका स्वास्थ्य में लाभ क्या है, कि फसल तो बन गई मगर उनको लोगों को खिलाकर उसका जो असर देखना है कि क्या असर हुआ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे, कुपोषण पे, वो हमारे पास अभी सीमित है। तो इस मिशन में ICMR का रोल है वो वैज्ञानिक प्रमाण को निकालना, उसको एविडेंस को जनरेट करना कि इसका स्वास्थ्य लाभ क्या है। तो हमारी जो भूमिका है, क्योंकि ICMR का जो रोल है वो यही है कि हेल्थ का, स्वास्थ्य का एविडेंस जनरेट करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कितना खाना चाहिए, ये हम सेहत में इसी उस पे चलेंगे।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रियंका बंसल, आप कार्यक्रम में जुड़ी।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: मंथन
3: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गूंजे झारखंड।

स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई, पवित्रता और शुद्धता। यह न केवल हमारे शरीर और घर तक सीमित है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण, समाज और पूरे देश से भी जुड़ी हुई है। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें स्वस्थ और सुखी रहने में सहायता करती है। कहा जाता है कि स्वच्छता ही आधा स्वास्थ्य है, अर्थात यदि हम साफ सफाई का ध्यान रखें तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज सुनिए स्वच्छता से संबंधित कुछ लोकगीत। सबसे पहले हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। रोज स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, दांत साफ करना और हाथ धोना बहुत ही आवश्यक है। इससे हम कीटाणुओं से बच सकते हैं और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। विशेष रूप से खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है।

यदि हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तो हम स्वयं भी बीमार पड़ सकते हैं और दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा घर की स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और उसे सही जगह पर डालना चाहिए। रसोई घर को साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गंदगी से खाने में कीटाणु फैल सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। घर के आसपास गंदगी होने से मच्छर और मक्खियाँ पनपती हैं जो कई खतरनाक बीमारियाँ फैलाती हैं जैसे डेंगू मलेरिया आदि।

सामाजिक स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान भी हमारे ही हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और साफ सफाई का ध्यान रखे तो हमारा समाज और देश स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। स्वच्छता का महत्व केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और संस्कृति को भी दर्शाता है। एक स्वच्छ वातावरण में रहने से मन प्रसन्न रहता है और काम करने की ऊर्जा बढ़ती है।

स्वच्छता से हमारे देश की छवि भी बेहतर होती है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए स्वच्छता को अपनाना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। यह अभियान तभी सफल हो सकता है जब हर नागरिक इसमें अपना योगदान दे। ये कहा जा सकता है कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, हमें इसे

एक आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर स्वच्छता का पालन करें तो हम एक स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वयं भी स्वच्छ रहेंगे और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे।

पेड़ पौधे और जंगल प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं और वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। ये हमें खुशियाँ देते हैं। प्रदूषण, वनों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने, पानी बचाने और प्लास्टिक का उपयोग कम करके प्रकृति

श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज आपने सुना स्वच्छता संबंधी कुछ लोकगीत। कलाकार थे उराव में रायसन उराव और साथी, मुंडारी में छोटराय मुंडा और साथी, सोमरा लोहरा और साथी, खोरठा में करुणा देवी और साथी, नागपुरी में रूना देवी और साथी। वाचन स्वर था संध्या नीलिमा तोपनो का और प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के आयोजन में आइए सुनते हैं अभिराम पाठक से राग बहार में आलाप और धमार गायन। तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप चटर्जी, हारमोनियम पर हैं गायत्री चक्रवर्ती।

शास्त्रीय संगीत के आयोजन में अभी आप सुन रहे थे अभिराम पाठक से राग बहार में आलाप और धमार गायन। तबले पर संगत कर रहे थे संदीप चटर्जी और हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का आयोजन यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में

0: केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली पटना नरमी बरते जाने किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सच्चे फैसले दिए। न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की
1: घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The Center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
4: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द